फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 9 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा का प्रसारण अब आरंभ होता है।

आप हमें सुन रहे हैं इस वक्त फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के

0: ये प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाजी वाडे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे दिशकान, स्वर था स्वतंत्र कुमार ओझा का, गीतकार थे रामबाली, और इसी के साथ दिशकान अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति की धारा बहे, मन में श्रद्धा के दीप जले, प्रभु के पावन नाम से जीवन के हर पल में सुकून मिले। सुनिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अशित और हेमा देसाई द्वारा गाए इस भजन को।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति

0: टीवी ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: संदेश से पहले आपने सुना अशित देसाई द्वारा गाए भजन को। अगला भजन सुनिए जसपिंदर नरूला के स्वर में।

0: जसपिंदर नरूला द्वारा गाए भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, जिसमें आज चर्चा का विषय है फसल अवशेष प्रबंधन की आवश्यकता। वार्ताकार हैं अभिषेक पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़।
1: जय जोहार किसान संगवारियों। फसल अवशेष के बारे में बताना चाहता हूँ। फसल अवशेष का होते? फसल अवशेष जो होते, फसल कटाई के बाद खेत में जो बचे हुए जो पदार्थ रहते और जो खलिहान में जो बचे हुए पदार्थ रहते, ओला हमन फसल अवशेष कथन। जैसे कि पैरा, मक्का के तना, डंठल, कपास के डंठल, इमल्ला हमन फसल अवशेष कथन। अब फसल अवशेष प्रबंधन हमला बहुत ही जरूरी है। फसल अवशेष प्रबंधन करे बर बहुत सावधानी रखना पड़ते। अब मशीनीकरण के युग में फसल अवशेष ज्यादातर खेत में ही छोड़ देते हैं। तेकर बर फसल अवशेष जो होते प्राकृतिक संसाधन से भरपूर रहते, उनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ते, सूक्ष्म जीव की मात्रा बढ़ते, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ते। फसल अवशेष हमला काबर जरूरी है? फसल अवशेष प्रबंधन एकर बर जरूरी है।

0: काबर की एकर से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ते, पर्यावरण में सुधार होते, मानव स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ते वो हानि होए, मिट्टी के जल धारण क्षमता बढ़ते, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ते जेकर से सूक्ष्म तत्व, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से सूक्ष्म तत्व हर एक्टिव होते, सक्रिय होते, जेकर वजह से आने वाले फसल के विकास और बढ़वार पैदावार बहुत अच्छा होते, मिट्टी के कटाव रुक जाते, एक आवरण मिट्टी के परत में एक आवरण बन जाते जेकर वजह से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव कीड़े मकोड़े जो लाभदायक कीट रहते उमन ला आश्रय मिलते, उमन वर्ग के आवास होते। वायु प्रदूषण के दृष्टिकोण से फसल अवशेष जो जलाए जाते ओला नहीं जलाना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव जला ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल हमन के बढ़त जाते, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो जेकर दुष्परिणाम हमन देखत जाते, हमन के टेम्परेचर बढ़त है, समुद्र के जल स्तर बढ़त है, असामयिक वर्षा होते, समय में वर्षा नहीं होते, तापमान ज्यादा होते, उमस के मौसम पैदा होते, कई प्रकार के जैव विविधता वाला जो कारण है, यह सब अवशेष जलाए से जो तापमान में बढ़ोतरी होते ओकर ओला रोकना है। फसल अवशेष जैसे हमन जला देते हैं तो जंगल झाड़ी मन जल जाते हैं, पूरा जंगल जल जाते, गांव जल जाते, ओकर से अग्नि संबंधी दुर्घटना हो जाते, ओकर से हमको हमला बचाव करना है। बहुत बार देखे बार मिलते कि फसल अवशेष ला जला देते हैं तो हमन के जो जमीन में मौजूद नाइट्रोजन जो रहते 80-90% नष्ट हो जाते, फास्फोरस 25% नष्ट हो जाते, पोटास 20% नष्ट हो जाते, उसी तरह से सल्फर 50% नष्ट हो जाते, और ओकर जो जले से गैस के रूप में और जो कण तत्व के रूप में जो हानि होते वो तो अलग से होते ही होते। जैसे आप मतलब बताएं कि मिट्टी के तापमान बढ़ जाते तो मिट्टी ठोस हो जाते तो जल जो पानी गिरते तो जल बह जाते, जल धारण की क्षमता नहीं रह पाए। एक टन पराली अवशेष ला हमन जब जलाथन तो 13 किलोग्राम धुएं के कण वातावरण में मिलते, 1500 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते, 90 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 किलोग्राम मीथेन गैस, 3.5 किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में प्रदूषित हो जाते, जेकर से हमला बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ते। आप मन देखे होगा कि दिल की बीमारी और सांस की बीमारी वाला मन पर बहुत तकलीफ है। दिल्ली जैसे शहर में पराली मत जलाओ, वहाँ का जो देखे के डेंसिटी क्षमता है वह कम हो जाते, तो वो सब चीज रोके बर अवशेष प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। फसल अवशेष प्रबंधन पर्यावरण ले लाभ जो होते ओकर किसी प्रकार से होते, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जैसे बढ़ते, मिट्टी में जो सूक्ष्म तत्व रहते ओहर अगर मिट्टी में मौजूद रही तो हमन के आने वाला जो फसल अच्छा बढ़वार होते उनमें उर्वरक जैसे रासायनिक उर्वरक हमन ज्यादा डालथन, तो अगर मिट्टी में मिला के ही अवशेष के प्रबंधन करबो तो हमला कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ी, पौधा स्वस्थ होते तो हमला कम कीटनाशक की आवश्यकता पड़ी। तेकर बाद औद्योगिक क्षेत्र में हमन जैसे ओकर उचित प्रबंधन करके बेलर मशीन के माध्यम से बंडल बना के हमन औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग कर सकत हन, पशु चारा के रूप में पैराकुटी हमन किसान भाई मन पैराकुटी शहरी के क्षेत्र में जो डेयरी उद्योग है तेमन पैराकुटी के माध्यम से मन पशु चारा के रूप में उपयोग करथन। मशरूम की खेती पैरा स्टलाइज करके नमक के घोल में, यूरिया के घोल में, गर्म पानी में मिला के ओला हमन स्टलाइज करके मशरूम की खेती करथन, एकर से हमन ला बहुत आजकल अवशेष प्रबंधन के भी मशीन आ गई से मल्चर के माध्यम से ओला खेत में मिला देथन, सुपर सीडर के माध्यम से ओला खेत में मिला देथन, स्ट्रा रिपर के माध्यम से स्ट्रा अलग बंडल चौकोना विधि से तैयार कर सकत हन। अभी नया लेटेस्ट में से हैप्पी सीडर यंत्र के माध्यम से हमन पैरा ला मिला के डायरेक्ट सीड और खाद के बुआई हमन कर सकत हन। तो इस तरह से फसल अवशेष प्रबंधन पर हमन कर बहुत सारा विकल्प है जिला अपना के हमन फसल के उचित प्रबंधन कर सकत हन। साथ ही साथ कंपोस्ट जैविक विधि में अगर हमन जाबो तो कंपोस्ट तैयार कर सकत हन, नाडेप टांका के विधि में पैराला आधा सड़ा के गोबर और मिट्टी से मिला के ओकर उपयोग कर सकत हन। इस तरह से किसान भाई मन फसल अवशेष नहीं जला के हमन उचित प्रबंधन करके बहुत सारा लाभ ले सकत हन।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, वार्ताकार थे अभिषेक पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रायगढ़। वार्ता का विषय था फसल अवशेष प्रबंधन की आवश्यकता। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। 6:40 पर, 6:50 पर होगा कार्यक्रम चिंतन। हिंदी में समाचार 7:00, 7:05 पर, 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: झरुखा आप सुनेंगे 7:35 पर, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा दूरी घटाए, दिलों को आपस में जोड़े, डाक सेवा, विश्व डाक दिवस। गांधी चर्चा आप सुनेंगे 7:45 पर। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुनेंगे 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9:00, 11:00 और पुनः 12:00। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट, प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। भजन संध्या आप सुनेंगे 5:10 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुने का पहला भाग आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। 6:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर। लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7:00 आप सुनेंगे जन सेवा से देश सेवा अभियान अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। विषय होगा सेमीकंडक्टर मिशन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। चौपाल कार्यक्रम का वक्त होगा 7:30 पर।

कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। एफएम बैंड पर आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं भूपिंदर सिंह, संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं, किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर 4 दिनों में वापस लौटावे। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटे तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ, यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत्र रथ लेकर श्री राम सीता

और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं, किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलिखित से हो चले।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। रामचरितमानस गान संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।
1: जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। मनुष्य के कर्म उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। जब मानव कुछ कार्य करता है तो उसमें लक्ष्य प्राप्ति की कल्पना होती है। लक्ष्य की प्राप्ति में मनुष्य कभी सफल होता है तो कभी असफल। सफलता और असफलता मनुष्य के कार्य करने के ढंग से जुड़ी होती है। मनुष्य जब सफलता प्राप्त करता है तो उसे अपार आनंद की प्राप्ति होती है और मनुष्य दूसरे कार्य करने के लिए दुगने उत्साह से जुट जाता है। ये सफलता उसके जीवन में नई स्फूर्ति, नया उत्साह और नए नए रंग भर देती है। सफलता मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, विचार शक्ति को बढ़ाती है और उसे ऊर्जावान बनाती है। इसके विपरीत जब मनुष्य असफल हो जाता है तो उसका सारा उत्साह, सारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। असफलता उसके आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देती है। मनुष्य के मन में क्षोभ और दुख व्याप्त हो जाता है। कभी कभी स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। कोई सहारा उसे दिखाई नहीं देता। भाग्य को कोसते हुए वो सोचता है कि ईश्वर उससे रूठ गया है। वो जीवन से हताश और निराश हो जाता है और अपना जीवन ही समाप्त कर लेता है। सफलता प्राप्त करना किसे अच्छा नहीं लगता। सफलता मनुष्य में सकारात्मकता और गतिशीलता का संचार करती है। अच्छी तरह योजनाबद्ध तरीके से सोच विचार कर सही समय पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रारंभ किया गया कार्य

0: मनुष्य को निश्चित ही सफलता देता है। इसके विपरीत गलत समय, अनिष्ठा, लापरवाही और अनुचित ढंग से किया गया कार्य मनुष्य को असफलता देता है। यही असफलता मनुष्य को निराशा के अंधेरे में ले जाती है। कभी कभी मनुष्य इस निराशा के अंधेरे में इतना खो जाता है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया। जीवन में विराम तो एक बार ही आता है, किंतु निराशा के अल्प विराम न जाने कितने ही आते हैं। एक अल्प विराम से मनुष्य बाहर आया नहीं कि दूसरी कठिनाई घेर लेती है। जिंदगी मानो ठहर सी जाती है। जीवन अच्छा खासा चलता रहता है, एक ही पल में न जाने ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ बिखर जाता है। ऐसे में जरूरत होती है इस निराशा से उबरने के लिए किसी उत्प्रेरक की, जो हमें इस निराशा के माहौल से बाहर ला सके। मनुष्य की स्वयं की दृढ़ इच्छा शक्ति ही उत्प्रेरक का काम करती है। इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं। संकुचित और व्यापक लोगों की सोच, समझ और परिवेश से इच्छाओं का जन्म होता है। अलग अलग लोगों की इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं, किंतु इनका सार एक ही होता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति जिससे जीवन का होना सार्थक हो सके। यही दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य के लिए उत्प्रेरक है, जो निराशा भरी जिंदगी में आशा का संचार करती है। ये मनुष्य को सकारात्मकता की ओर ले जाती है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे समय में मैथिली शरण गुप्त जी की कविता नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, मनुष्य को निराशा के अंधकार से उबरने का हौसला देती है। अगर असफलता मिलती है तो उसके कारण की खोज की जानी चाहिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। भूलों को जानकर ही उसमें सुधार किया जा सकता है। एक चींटी दीवार चौंककर जाती है, कई बार गिरती है किंतु हिम्मत नहीं हारती। मकड़ी जाला बुनती है, कई बार जाला टूटता है पर वो हताश निराश नहीं होती। चिड़िया तिनका तिनका चुनकर घोंसला बनाती है, घोंसला कई बार टूटता है पर वो कार्य में लगी रहती है और अंत में उसकी लगन, मेहनत, निष्ठा और धैर्य उसे कार्य में सफलता दिलाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। ये कार्यक्रम संपन्न होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत व हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे सहभागं करिष्यति। ह्यः आरब्धे अस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने सर्वेषां राज्यानां महिला बाल विकास क्षेत्रैः सम्बद्धानां राजनीतिक नेतृणां अधिकारिणां च सहभागिता भवति। प्रधानमन्त्रिणा परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां शिखायाः इदं द्वितीयं सम्मेलनमस्ति। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारी संघ व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तये सामूहिक दायित्व भावनायाः प्रवर्धनं तथा केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहकारेण कार्य परिणामानां त्वरित साधनमस्ति। सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख विषयेषु ध्यानं केन्द्रितमस्ति: पोषणं, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षणं तथा महिलानां सुरक्षा सशक्तीकरणं च। वस्तु सेवा कर परिषदा नवदिल्ल्यां सम्पन्ने स्वकीयस्य 75वें उपवेशने करदातृभ्यः अनुपालन प्रक्रियां सरलीकर्तुं विविधाः उपायाः अनुमोदिताः। एतेषु निर्णयेषु वस्तु सेवा कर व्यवस्थायाः अन्तर्गतं कराधिकारिणां निगडीकरणं, अधिकाराणां निरसनं तथा अभियोजनस्य सीमायाः 1 कोटि रूप्यकेभ्यः 5 कोटि रूप्यकाणि यावत् वर्धनं सम्मिलिताः सन्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती एतस्य घोषणाम् अकरोत्। प्रत्येकस्मिन् प्रकरणे दण्डस्य निर्धारणं सः अर्थदण्डः भवतु, कारावासः भवतु उत वा उभयं न्यायालयस्य विवेकाधिकाराय त्यक्ष्यते। वित्तमन्त्री उक्तवती यत् उपवेशने वस्तु सेवा करस्य मानेषु किमपि परिवर्तनं न कृतं तथा वर्तमानः मूल्य निर्धारण क्रमः स्थिरः अस्ति। तया सूचितं यत्

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में यह दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के अनुमोदित कर सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा व्यक्त की कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल किए जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अप्रैल से सितंबर की

0: बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिले हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए। सबसे अधिक 7,16,00,000 रुपए कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्त हुए। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर नए मिसाइल हमले करने का दावा किया। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटों सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।
2: इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम, जहां हम आपको सुनाएंगे हिंदी सिनेमा के सदाबहार नगमे। आपके दिन को सुरों से सजाने के लिए हैं तैयार, तो बने रहिए हमारे साथ गीतों के इस सुरीले सफर में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कुबोटा ट्रैक्टर दे रहा है 8 साल का सुपर वारंटी, जिसमें 42 HP से 55 HP

0: के फोर व्हील ड्राइव टू व्हील ड्राइव उपलब्ध है। चेन हार्वेस्टर में 3 साल की सुपर वारंटी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पता माँ अंबिका ट्रैक्टर्स, जोरापाली रोड, रायगढ़। फोन कीजिए 9977056396 पर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली
7: भारती।
8: संदेश से पहले आपने सुना आंखें फिल्म का गीत जिसे गाया था अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने, सुदेश भोसले ने साथ ही इस गीत में अपनी आवाज दी थी। बप्पी लहरी का संगीत था और इंदीवर के बोल थे। अगला गीत सुनिए फिल्म सलामी से, जिसे गाया है शब भोसले और कुमार सानू ने, मदन पाल के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में संदेश से पहले आपने सुना आदमी खिलौना है फिल्म का गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज के स्वर में। समीर के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था। अगला गीत सुनिए मृत्युदंड फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। जावेद अख्तर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है।

0: गीतों के सुरमई सफर को यही समाप्त करते हैं। समाप्त होता है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम संपन्न होता है 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरोखा।
1: Thank you.

श्रोता मित्रों, सुप्रभात। कार्यक्रम चिरुखा में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ हूँ नए चर्चा के विषय के साथ, आपकी रेडियो मित्र डिडनेश्वरी। मित्रों, आप और हम माना कि दूर हैं, लेकिन आप हमसे जुड़े हैं आकाशवाणी के माध्यम से और हम आपसे जुड़े हैं आपके खत और ईमेल के माध्यम से। मीलों दूर होने पर भी ये माध्यम हमें पास लाते हैं। मित्रों, कागज पर लिखे शब्द मीलों की दूरी को पल भर में समेट लाते हैं। छोटा सा लिफाफा किसी के इंतजार को मुस्कान में बदल जाता है। स्याही की खुशबू, कागज पर लिखे इमोशंस और दरवाजे तक आती एक आवाज, डाक आई है। वक्त बदला, संदेशों का अंदाज बदला, लेकिन अपनों तक खबर पहुंचाने की चाह आज भी वही है। मित्रों, आज बात हो रही है डाक सेवा की। कभी चिट्ठी में लिखे शब्द महीनों के इंतजार में पहुंचते थे, आज तकनीक ने रफ्तार बढ़ा दी है। फिर भी डाक सेवा ने समय के साथ अपने स्वरूप को बदला और लोगों तक अपनी पहुंच बनाए रखी है। चिट्ठियां हो, जरूरी दस्तावेज हो, या अपनों के लिए भेजा गया कोई पार्सल, हर डाक के साथ जुड़ा होता है। हर

किसी का भरोसा और उस भरोसे को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं डाककर्मी। धूप हो या बारिश, शहर हो या दूर दराज का इलाका, वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए संदेशों को उनके पते तक पहुंचाते हैं। मित्रों, आज है 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि डाक व्यवस्था सिर्फ चिट्ठी या पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथियों, रास्ते बदलते रहे, माध्यम बदलते रहे, लेकिन रिश्तों तक पहुंचने वाली डाक की अहमियत आज भी कायम है। विश्व डाक सेवा दिवस पर उन सभी डाक कर्मियों को सलाम है जो शिद्दत से अपना काम करते हैं। और मित्रों, डाक सेवा की खूबसूरत पहचान यही है, दूरी घटाकर दिलों को आपस में जोड़ना। अब वक्त है एक गीत सुनने का, आपको सुनाते हैं ये गीत।

अब कार्यक्रम झरोखा से रिडनेश्वरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। 7:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए गांधी चर्चा।
3: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
4: प्योर एंड सेफ गरिमा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: गांधी चर्चा में आज प्रस्तुत हैं प्रार्थना की महत्ता पर बापू के विचार।
1: मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक प्रार्थना में दिलचस्पी न होने का एक कारण व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता का अज्ञान हो सकता है। व्यक्तिगत प्रार्थना से ही सामाजिक प्रार्थना की व्यवस्था हुई है। व्यक्ति को प्रार्थना की भूख न हो तो समाज को क्यों कर हो सकती है। सामाजिक प्रार्थना का उपयोग भी व्यक्ति के लाभ के लिए है। व्यक्ति के आत्मदर्शन में, आत्मशुद्धि में सामाजिक प्रार्थना सहायक होती है। अतएव यह आवश्यक है कि सब कोई व्यक्तिगत प्रार्थना के महत्व को पहचान ले। जहां बच्चा समझने लायक होता है वहां माता तुरंत ही उसे प्रार्थना सिखाती है। सारे धर्मों के लिए यह सामान्य वस्तु है। इस प्रार्थना के लिए दो समय स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं, अर्थात सवेरे उठते समय उस अंतर्यामी को याद किया जाए और रात को सोते समय उसका ध्यान किया जाए। इस बीच जागृत स्त्री पुरुष अपने प्रत्येक क्रिया को करते समय अंतर्यामी को याद करेंगे, उसे साक्षी रूप मानेंगे। ऐसा करने वाले व्यक्ति से बुरा कृत्य तो हो ही नहीं सकता और अंत में उसको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वह अपने प्रत्येक विचार का साक्षी ईश्वर को मानेगा, उसे स्वामी बनाएगा। यह शून्यवत होने की स्थिति हुई। इस तरह जिसके समक्ष सारा समय ईश्वर विद्यमान रहता है उसके हृदय में राम वास करता है। ऐसी प्रार्थना के लिए खास मंत्र अथवा भजन की जरूरत नहीं होती। हालांकि प्रत्येक क्रिया के आरंभ और अंत के लिए मंत्रों का विधान किया गया है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। हमें तो चाहे किसी भी नाम से, किसी भी तरह, चाहे किसी भी स्थिति में ईश्वर को

याद करना है। ऐसा करने की आदत बहुत कम लोगों की पड़ती है। यदि बहुतों को ऐसी आदत हो तो जगत में पाप कम हो जाए, मलिनता क्षीण हो जाए और पारस्परिक व्यवहार शुद्ध हो जाए। ऐसी शुभ स्थिति को प्राप्त होने के लिए प्रत्येक मनुष्य को, जैसा कि मैंने कहा है, दो समय तो निर्धारित करने ही चाहिए और उसे इसके लिए अन्य समय भी निर्धारित कर लेना चाहिए और उसमें नित्य इजाफा करते जाना चाहिए, जिससे कि अंत में हर सांस में राम का नाम निकलने लगे। इस व्यक्तिगत प्रार्थना में तनिक भी समय नहीं लगता, उसमें समय की नहीं जागरूकता की जरूरत है। जैसे आंख मूंदने में समय नहीं लगता, वैसे व्यक्तिगत प्रार्थना में भी समय नहीं लगता। अपितु जिस प्रकार हम जानते हैं कि पलक अपना काम करती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी निरंतर प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले को याद रखना चाहिए कि जिसका हृदय मलिन है, वह उस मलिनता के रहते हुए प्रार्थना नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि प्रार्थना के समय उसे मलिनता का त्याग करना ही होगा। जैसे कोई मनुष्य किसी के सामने कोई मलिन कार्य करने से शर्माता है, उसी तरह उसे ईश्वर के समक्ष भी मलिन कार्य करते हुए शर्माना चाहिए। लेकिन ईश्वर तो सदैव हमारे प्रत्येक कार्य को देखता है, विचार को जानता है, अतः ऐसा एक भी क्षण नहीं जब उससे छिपकर कोई भी काम अथवा विचार किया जा सकता हो। इस तरह जो मनःपूर्वक प्रार्थना करेगा वह अंततः ईश्वरमय हो जाएगा, अर्थात निष्पाप हो जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभा सुबह 8 बजे, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुनेंगे 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध भारती प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9 बजे, 11 बजे और 12 बजे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:10 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का वक्त होगा 10:30 पर।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक होंगे CF वन विभाग सरगुजा। भजन संध्या आप सुनेंगे 5:10 पर। 5:30 पर होगा कार्यक्रम फोन इन। कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का पहला भाग। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:10 पर। लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से शाम 7 बजे आप सुनेंगे जनसेवा से देश सेवा अभियान अंतर्गत विशेष कार्यक्रम सेमीकंडक्टर मिशन विषय होगा। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल जिसमें आज की बात का विषय होगा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यांत्रिकरण अपनाएं। आज की नसीहत में आप सुनेंगे भविष्य के लिए जल बचाएं, सब्जियों के लिए टपक सिंचाई अपनाएं। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर जिसमें आज की बात का विषय होगा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्रीकरण अपनाएं। आज की नसीहत में आप सुनेंगे भविष्य के लिए जल बचाएं, सब्जियों के लिए टपक सिंचाई अपनाएं। साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 8:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये समाचार अनुप्रसारित किया जाएगा। विविध भारती प्रसारण सेवा आप सुनेंगे आकाश

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9 बजे विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीकंधा आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2000

0: 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गाँवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गाँवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु पुदुचेरी

0: और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
1: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आए, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रूपये

0: की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रूपये से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. Government caps trade margins on non-scheduled anti-cancer drugs at 30% of MRP. Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day departmental summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes, including nutrition, early education, child protection, women's safety, and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges, and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery. With Priya Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price or MRP, a report.
4: The Ministry of Chemicals and Fertilizers expects this measure to reduce medicine prices by up to 70%, helping cancer patients save 2,500 crore annually. While essential cancer medicines on the scheduled list are already subject to strict government-set ceiling prices, this new decision extends price protection to non-scheduled cancer medicines by limiting their margins. Once an expert committee under the Directorate General of Health Services finalizes a list of medicines to be covered, the National Pharmaceutical Pricing Authority, NPPA, will issue the official notification. Cancer incidence is rising in India, affecting about 60 people per lakh population. Treatment places a heavy financial burden on patients and their families, who often

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, भारत के परिवहन की बात करें तो हमारे देश का रेलवे परिवहन दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में एक माना जाता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, करोड़ों टन माल ढोया जाता है और रेलवे के इस सफर के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सुरक्षा बल की। और रेलवे की संपूर्ण सुरक्षा में रेलवे सुरक्षा बल भारत में रेलवे की शुरुआत से लेकर अब तक सतत रूप से देश के नागरिकों की सेवा करते आ रहा है। और आज इस कार्यक्रम में हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ हैं रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महानिरीक्षक श्री मुनव्वर खुर्शीद साहब। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आप अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीका में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, राष्ट्रपति जी के पुलिस पदक से सम्मानित हो चुके हैं, उपराष्ट्रपति जी के तकनीकी नवाचार पुरस्कार से भी आप अलंकृत हो चुके हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पदक से भी आप अलंकृत हो चुके हैं, रेल मंत्री पदक, अंतर्राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम पेरिस के डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में भी आप काम कर चुके हैं। इतनी सारी उपलब्धियां आपके इस पूरे सफर के साथ जुड़ी हुई है, तो मुनव्वर साहब, आपसे मिलकर वाकई हमें भी काफी गर्व की अनुभूति हो रही है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है।
1: धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में आने का और रेलवे सुरक्षा बल की जो स्थापना दिवस है इसके संबंध में आपसे वार्ता करने का। मेरा जन्म भागलपुर बिहार में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बोर्डिंग स्कूल से ही शुरू हुई, सेंट जेवियर स्कूल साहेबगंज में। उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में मैंने पढ़ाई की और अंततः मैंने मास्टर्स डिग्री दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। उसके बाद इस सर्विस में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 1993 में मैंने ये सर्विस ज्वाइन की।
0: वर्तमान में आप बिलासपुर जोन में आईजी हैं, इसके पहले आप कहाँ कहाँ पदस्थ रहे?
1: मैंने शुरुआत किया बिहार से। बिहार जो हमारी मेरी जन्मभूमि में थी वो शुरुआत की मेरी कर्मभूमि रही और बिहार में काफ़ी दिनों काम करने के बाद मैंने गुजरात में काम किया, वेस्टर्न रेलवे के इलाके में। फिर उस समय रेलवे के इलाके में काफ़ी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अटैक्स होते थे, तो मेरी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश, उस समय जो नॉर्थ तेलंगाना का इलाका होता था, अब तेलंगाना स्टेट है, वहाँ सिकंदराबाद डिवीज़न में, और उसके बाद फिर विशाखापट्टनम में तकरीबन मैंने 9 साल काम किया, जिसमें मुझे

0: छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा सुकमा जगदलपुर का इलाका है वहाँ काम करने का मौका मिला। इसके अलावा कोरापुट रायगढ़ जो भी अफेक्टेड इलाके थे इसमें तकरीबन मैंने 9 से 10 साल काम किया और फिर छत्तीसगढ़ में नौकरी की। बंगाल में सियालदा में मैं DIG रहा और उसके बाद आज के दिन में दोबारा छत्तीसगढ़ में मैं महानिरीक्षक के पद पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का रेलवे सुरक्षा बल के मुखिया के रूप में कार्यरत हूँ।
1: अब हम आपसे रेलवे सुरक्षा बल के बारे में जानना चाहेंगे कि रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब से हुई है और समय के साथ इसकी भूमिका में अभी किस तरह के परिवर्तन आए हैं।
0: 1854 से ही ये जो निजी रेलवे कंपनियां थी इनको जरूरत महसूस हुई। 1861 में शुरुआत की इसकी ईस्टर्न रेलवे, जो ईस्ट इंडियन रेलवे के नाम से उस वक्त जानी जाती थी, कलकत्ता में थी था इसका हेडक्वार्टर, तो वहां से शुरुआत हुई और ये फिर दो भाग में बटा, एक कंपनी पुलिस और एक गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस से आगे बढ़कर GRP की शुरुआत हुई और जो कंपनी पुलिस थी जो रेल की संपत्ति की सुरक्षा करती थी इससे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की शुरुआत हुई। इसको अमली जामा 1957 में पहनाया गया जब RPF एक्ट पास हुआ और ये भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी फोर्स के तौर पे इसकी वैधानिक मान्यता दी गई।
1: सर, RPF और GRP को लेकर लोगों में एक प्रश्न अक्सर ये उठता है कि दोनों में अंतर क्या है।
0: जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेट पुलिस का अंग है और जैसा कि आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए वहाँ पे राज्य की पुलिस का होना अनिवार्य है। रेलवे सुरक्षा बल पूरे रेलवे के इकोसिस्टम में सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ और मजबूत किया जाए इसका काम करती है। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले भी भारत सरकार की केंद्रीय बल के रूप में एक वाहिद एजेंसी है। कोई और केंद्रीय बल लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट दाखिल करके प्रोसिक्यूशन नहीं कराता। RPUP एक्ट में और रेलवे एक्ट के 26 सेक्शनों में हम ये काम करते हैं।
1: आने वाले समय में रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा को किस दिशा में ले जाना चाहता है इसके बारे में कुछ बताएंगे।
0: हम लोगों ने बहुत सारी चीज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वीडियो सर्वेलांस सिस्टम ये बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है रेलवे स्टेशन पे और इसमें बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति जो पहले रेलवे में अपराध को अंजाम दे चुका है उसका डोजियर, उसकी तस्वीर हम वहाँ पे अपलोड कर दें तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से हम मेरे सिस्टम में जैसे ही वो हमारा कैमरा कैप्चर करेगा तो एक रेड फ्लैग फौरन हमारे पास आएगा।
1: ठीक,
0: इसी प्रकार ट्रेनों में भी हम वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम कर रहे हैं, ये काम बड़े तेजी से हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और सर्वेलांस सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा स्टेशनों पे अब हम बैगेज स्कैनर भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनका रिकॉर्ड तैयार किया, उनको डोजियर अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही हमारे पास सजोया हुआ है और कहीं पर भी भारत में कोई भी हमारी यूनिट हो, कोई भी हमारा थाना हो तो वहाँ से अगर कोई पकड़ाता है, चाहे फिंगरप्रिंट के बेसिस पे, चाहे आइरिस के बेसिस पे, चाहे चेहरे के बेसिस पे, चाहे उसके आधार कार्ड के नंबर पे, या उनकी उनका नाम जो है, या उनके पिताजी का नाम, या उनका एड्रेस, किसी भी फॉर्मेट में हम उसे सर्च करके उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं।
1: ये आपने आधुनिक तकनीक की बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात कही है जिसका इस्तेमाल अब RPF द्वारा किया जाएगा। मुनव्वर साहब, आमतौर पर रेलवे में सफर करते वक्त लोगों के सामान के चोरी हो जाने की शिकायतें अक्सर सुनने और पढ़ने मिलती हैं, तो इन शिकायतों के समाधान के लिए और सामानों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल अब क्या नया कोई कदम उठाने वाला है?
0: जी बिल्कुल, जैसे आपने वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम की मैंने बात की, अपराधियों के रिकॉर्ड कीपिंग की बात की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग की बात की, इसके अलावा हम सर्वेलेंस बहुत और तरीके से रखते हैं लोगों पे कि कौन सा फ़ोन इस्तेमाल इस इलाके में हुआ जहां संभावित चोरी हुई होगी, क्या ये फ़ोन उसी इलाके का है, क्या ये फ़ोन जो उस टावर पे डिटेक्ट हो

0: रहा है, तो क्या ये रिजर्वेशन के बर्थ के साथ जुड़ा हुआ है या कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति अंदर घुसा है जिसका कोई रिजर्व बर्थ नहीं था और उसने फोन उस इलाके में इस्तेमाल किया है, तो उससे हम पिन पॉइंट करते हैं। अगर किसी गाड़ी का इस्तेमाल होता है तो आपको जैसा पता है कि कोई भी टोल प्लाजा में आजकल फास्टैग का ये इस्तेमाल है, तो अगर कोई गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, कुछ कीमती चीज़ें अगर चोरी होकर गई हैं और गाड़ियों से उसको परिचालन करके कोई दूसरे इलाके में ले जाने की कोशिश की गई है, तो हम लोगों ने बहुत जगहों पे उस सर्वेलांस सिस्टम का भी इस्तेमाल करके वहाँ पकड़ा है। पता चला कि जैसे एक छोटे से स्टेशन पे खोडरी में कोई एक नया फ़ोन नंबर मिला, और खोडरी में भी जैसे छोटे स्टेशनों में भी हम लोगों ने वीडियो कैमरे लगा रखे हैं, वहाँ पे एक महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी मिली, उसको ट्रैक किया तो जब वो फास्टैग से गुजरी तो पता चला कि उसका नंबर गलत था, क्योंकि फास्टैग में तो आ जाता है, वो गाड़ी गुजरी है उसके सीसीटीवी पे दिख रहा है लेकिन उसका नंबर गलत है, वो मध्य प्रदेश की गाड़ी थी। तो इस तरह से भी जाके हम लोगों ने चोरी की पकड़ धकड़ की है। दो तरह की चीज़ें हैं, एक प्रिवेंटिव स्टेप रोकथाम, और दूसरा हम लोग डिटेक्ट करके अपराधियों को उनके प्रोसिक्यूट करके, सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करके उनको सजा दिलवाएं।
1: मुनव्वर साहब, वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या क्या हैं?
0: जी, हम लोग अपने स्टेशनों को और सुरक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल को लिमिट कर रहे हैं, लेकिन लिमिट करने में हमारी एक और लिमिटेशन है कि इतनी भीड़ आती है तो हम कहीं पे ऐसा कोई सिस्टम पुट इन प्लेस ना कर दें जिससे एक भीड़ के परिचालन में, आने जाने में, आवाजाही में मुश्किल पैदा हो जाए कोई, और स्टैम्पीड की सिचुएशन हो जाए। इन दोनों के बीच में बैलेंस रखते हुए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि स्टेशन की जो सुरक्षा प्रणाली है वो मजबूत हो। हम लोग एक्सरे बैगेज स्कैनर का वृहद तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, 100% कर पाना रेलवे स्टेशन में प्रैक्टिकली संभव नहीं हो जाता है, लेकिन जैसे भी कोई स्पेशल ओकेजन आता है, फेस्टिवल रश आता है, जहां हमें लगता है कि कोई अवांछित तत्व, कोई एंटी सोशल एलिमेंट इस मौके का, इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर कुछ शरारतपूर्ण काम कर बैठे, तो उस समय हम लोग इसको इंटेंसिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा स्टेशनों पर हमारी सिविल ड्रेस में इंटेलिजेंस की टीमें घूमती रहती हैं, उनके पास रिकॉर्ड भी रहता है और उनके पास हम लोगों ने हैंडहेल्ड डिवाइस दे के रखा हुआ है कि इस प्रकार के कोई अगर व्यक्ति उनको दिखाई पड़ता है तो फौरन उसका रिकॉर्ड चेक करे।
1: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे एक खास मेहमान हैं रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महानिरीक्षक श्री मुनव्वर खुर्शीद साहब। और मुनव्वर साहब, आज के इस कार्यक्रम में वाकई रेलवे की सुरक्षा को लेकर बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं, और आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के पहले अब हम थोड़ा सा बातचीत को मनोरंजन की ओर मोड़ना चाहते हैं और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं।
0: आप रेल से ही संबंध या सफर से ही संबंधित कोई गाना सुना दें, जैसे हमारे बचपन का गाना था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।
1: जी, तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म दोस्त का ये गीत।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही ये खूबसूरत गीत हमने सुना, और ये गीत जिन्होंने अपनी पसंद का हमें सुनवाया है, आप हैं श्री मुनव्वर खुर्शीद साहब, महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। मुनव्वर साहब, इस गीत से पहले आपने आरपीएफ की सुरक्षा संबंधी जो प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब एक और जो खबर अखबार में पढ़ने मिलती है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, मानव तस्करी की जो खबरें पढ़ने मिलती हैं। क्या रेलवे के माध्यम से भी मानव तस्करी होती है, और अगर होती है तो रेलवे सुरक्षा बल किस तरह से इसे रोकने का प्रयास करता है?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये बात सही है कि लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, बच्चों को, महिलाओं को, मजदूरों को, अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रकार की मानव तस्करी होती है
0: जी।
1: तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में 2022 और 23 में हम लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बचपन बचाओ आंदोलन के साथ, जो कि एक कैलाश सत्यार्थी जी का ऑर्गेनाइजेशन है
0: जी,
1: जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है और इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से काम करता आ रहा है,

0: ये दो प्रकार से हमारी मदद करते हैं। एक तो हमारे जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, जो कटिंग एज लेवल पे जो हमारे थाने के कर्मी हैं, चाहे सिपाही हों, ASI हों, सब इंस्पेक्टर हों, इनको ये ट्रेन करती है, ये पहचान की कैपेबिलिटी उनमें बिल्ड करने के लिए कि जो सफ़र कर रहे हैं लोग उनमें से कैसे पहचाना जाए कि ये संभावित तौर पर एक मानव तस्करी का सफ़र हो सकता है। क्या ज़्यादा बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादा महिलाओं के साथ एक पुरुष जा रहा है, क्या ये एक परिवार के शक्ल सूरत से बातचीत से नहीं लग रहे हैं
1: जी।
0: क्या ये ऐसा लग रहा है कि बच्चे असंभावित रूप से बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो एक साइको एनालिसिस बेसिक ट्रेट्स जो है सफ़र करने वाले लोगों का, ये पहचान करने के लिए हम लोग बहुत वृहद रूप से ट्रेनिंग दिला रहे हैं और इसमें बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है। दूसरा उनका फ़ायदा, हम उनसे हम मदद ये लेते हैं, उनके साथ काम करने का फ़ायदा ये मिलता है कि ये बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनके पास इंफॉर्मेशन का एक ज़खीरा है और उनके पास इंफॉर्मेशन का नेटवर्क भी है, जो लोग उन्हें खबर देते हैं कि आज संभावित तौर पे इस गांव से इतनी कम उम्र की महिलाओं को या बच्चियों को या लड़कों को लेके जाया जा रहा है कहीं फैक्ट्री में काम कराने के लिए, या कहीं ज़बरदस्ती एक मजदूरी का कम रेट पे काम कराने के लिए। तो जैसे इनको खबर मिलती है, ये चूँकि इन्फोर्समेंट वो कर नहीं सकते, वर्दीधारी हम हैं, तो इन्फॉर्मेशन वो मुझे देते हैं और हम लोग अपना इन्फोर्समेंट करके लोगों को, जो कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ मिलके हम लोग ये काम करते हैं। मुझे ये आपके साथ बताने में, साझा करने में ये खुशी होगी कि इसमें एक हम लोग अभियान चला रहे हैं आहट, ऐसे तो कहने को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसका फुल फॉर्म है, लेकिन मैं इससे हमेशा कहता हूँ कि आहत दिलों की आहट सुनने की क्षमता हमने बढ़ानी है।
1: क्या बात, क्या बात जी।
0: और इसमें बहुत हम लोगों ने पिछले सालों में, मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो हम लोगों ने 3482 मानव तस्करी पीड़ितों को बचाया और 1048 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
1: क्या बात है, तब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुनव्वर साहब, और जो लोग बचे हैं उन तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं कि आप इस काम को और भी आगे बढ़ाएं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी RPF की होती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह की योजना आपकी होती है?
0: जी, बहुत अच्छा सवाल आपने दोबारा पूछा, इसी में महिलाओं के साथ बच्चों को भी मैं जोड़ देता हूँ
1: जी।
0: तो दो हम लोग अभियान चला रहे हैं, जैसे आहत की बात की मैंने, तो उसी प्रकार से एक बच्चों के लिए है नन्हे फरिश्ते अभियान चलता है, जिसमें वो बच्चे जो घरों से बिछड़ गए हैं, छूट गए हैं, भाग गए हैं, स्टेशनों पे आके रह रहे हैं, कि स्टेशन अपने आप में एक दुनिया है और ट्रेनों में स्टेशनों में इनको खाने पीने की चीज़ें चूँकि मुहैया हो जाती हैं तो ये इनकी दुनिया बन जाती है, लेकिन इनका भविष्य बिल्कुल अंधकार की ओर बढ़ता जाता है और काफ़ी संभावना होती है कि ये उस रास्ते पे चल पड़े जिनमें इन्हें नहीं चलना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में 71,403 बच्चों को बचाया
1: जी,
0: ये तो नन्हे फरिश्ते की बात हुई,
1: बहुत बहुत बड़ी बात
0: जी
1: जी जी।
0: इसके आपका जो मूल सवाल था उस पर मैं लौटता हूँ, इसमें हम लोग एक अभियान चला रहे हैं मेरी सहेली। मेरी सहेली बहुत इंटरेस्टिंग ये है, एक हमारे अधिकारी थे, उनकी उनके तरफ से ये अभियान शुरू हुआ जो फैलते फैलते अब हर बड़ा थाना जो RPF का है, बड़े स्टेशनों पे, उसमें ये अभियान चल रहा है। इसमें हम ज़्यादातर अपनी जो महिला कर्मी हैं, और ये भी मुझे बताने में आपके साथ साझा करने में खुशी हो रही है कि केंद्रीय बलों में, सारे केंद्रीय बलों में हमारे यहाँ हमारे महिला बल कर्मियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हम 9.3% जो हमारे बल के सदस्य हैं वो महिला हैं। तो इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए, फ़ायदा उठाते हुए, हम महिला कर्मियों की ग्रुप बनाते हैं और उनको हम लोगों ने हैंडहेल्ड डिवाइस दिया है, स्पेशल टैबलेट दिया है, और ये टैबलेट जो हैं, जो खास के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है जिसमें रिजर्वेशन करके महिला, खास के सोलो फीमेल ट्रैवलर्स, लेडी

0: ट्रेवलर्स जो अकेले सफर कर रही हैं उनका डेटा आ जाता है कॉन्फिडेंशियल तौर पे, क्योंकि वैसे साझा करना ये मुनासिब नहीं होता। उनके पास जब आता है तो बड़े स्टेशनों पे उनको जाके अटेंड करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई उन्हें तंग कर रहा है, कोई परेशानी है। तो ये अगर मुंबई से कलकत्ता का सफ़र कर रही है कोई महिला सोलो ट्रैवलर, तो उनको कम से कम 7 से 8 जगह पे, कम से कम, रात में हम डिस्टर्ब जनरली नहीं करते, 7 से 8 जगह उनको हम जाके अटेंड करते हैं। और गंतव्य पे पहुंचने के बाद वहाँ पे जो टीम रहती है, और चूंकि हमारे पास महिला कर्मी हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि मेरी सहेली की टीम में यही रहें ताकि जो सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं उनको सहजता महसूस हो उनके साथ करने में। इसके अलावा 139 ये एक रेल मदद का 24 घंटे सालों भर चलने वाला हेल्पलाइन नंबर है। जैसे ही ये जाएगा तो ये सबसे नज़दीक के आरपीएफ यूनिट में ये कॉल आता है कि यहाँ पे किसी का एक डिस्ट्रेस कॉल है, और फौरन हम जाके जो नियरेस्ट स्टॉपेज होता है वहाँ पे कोई ना कोई आरपीएफ का बल सदस्य वहाँ जाके उनको अटेंड करता है।
1: सर एक और जो बात अक्सर पढ़ने सुनने में आती है वो है टिकटों के ब्लैक मार्केटिंग की, तो टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए आरपीएफ की किस तरह की भूमिका होती है?
0: अब ज़्यादातर लोग टिकट काउंटर से कम और इलेक्ट्रॉनिक टिकट को जनरेट करते हैं अपने डिवाइस पे या किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, तो जो ब्लैक मार्केटिंग भी है वो इसी क्षेत्र में बढ़ी है। और इसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को बना के पेनिट्रेट करके सिस्टम को टिकट जनरेट कराने का प्रयास लोग करते हैं ताकि उनको एक प्रीमियम पे इस टिकट को बेचें और उनको मॉनेटरी मुनाफा हो। इसको रोकने के लिए IRCTC जो पूरे टिकट की एजेंसी है, और क्रिस जो रेलवे की सॉफ्टवेयर आर्म है, सॉफ्टवेयर का सारा काम रेलवे का वही देखती है, इन दोनों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है प्रबल। तो प्रबल एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें अगर किसी एक आईपी एड्रेस से या किसी एक डिवाइस से बार बार, चाहे एक सिंगल आईडी से या मल्टीपल आईडी से टिकट जनरेट हो रहे हैं तो ये रेड फ्लैग जनरेट करती है और उस आईपी एड्रेस के लोकेशन के सबसे नियरेस्ट आरपीएफ यूनिट को खबर करती है। तो हमारे थाने वाले जाके वहाँ पे सेक्शन 143 रेलवे एक्ट में हमें अधिकार है उसे गिरफ्तार करने का, मटेरियल सीज करने का, उनके पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सीज करने का, और उन पे अनुसंधान करके चार्जशीट दाखिल करके उनको सज़ा दिलाने का।
1: सर त्यौहार खासकर दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली का बिल्कुल नज़दीक है और इन त्योहारों में रेलवे यात्रियों की भीड़ भी काफ़ी बढ़ जाती है सफ़र के दौरान, तो भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ की ओर से क्या व्यवस्था की गई
0: जी? ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए रहती है, खासकर बड़े स्टेशनों पे जो ट्रेन उस वक्त आ रही है उसी के मुसाफिर वहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुँचें। इसके लिए हम लोगों ने एक होल्डिंग एरिया का कॉन्सेप्ट बनाया है। जैसे आप बड़े हवाई अड्डों पे भी देखते होंगे कि जब उनकी प्लेन का टाइम होता है तभी गेट पे परमिट करते हैं जाने के लिए, तो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए पहले हम लोग उनको स्टेशन के बाहर में बेसिक सुविधाएं देके, कुर्सी, पानी, टिकट की सुविधा, ट्रेन का इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अनाउंसमेंट की सुविधा, पंखा, कूलर, मौसम के हिसाब से वहाँ पर उनको शामियाना लगा के उनको वहाँ पर बिठाते हैं, और जैसे जैसे ट्रेनों का टाइम होता जाता है उनको हम छोड़ते जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के लिए।
1: ये शामियाना क्या सभी स्टेशनों में लगाया जाएगा?
0: नहीं, ये बड़े स्टेशनों पे जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा भीड़ हो। इसी प्रकार से हम फोरकास्ट लेते हैं, पिछली जो हमारा लेगेसी डेटा है उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में फीड किया हुआ है कि अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग फेस्टिवल या अदर सीजन्स में कितनी भीड़ होती है, और आज के दिन में उसको कंपेयर करते हैं कि कितना टिकट सेल है, क्योंकि अब सारे टिकट इलेक्ट्रॉनिक हैं तो हमारे पास एट द क्लिक ऑफ अ बटन हमारे पास टिकट सेल की संभावना आ जाती है। इसी प्रकार से देखते हैं अलग अलग ट्रेनों में कितनी लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है, इससे हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि भीड़ किस ट्रेन में ज़्यादा जाने वाली है।
1: ठीक ठीक जी ठीक। मुनव्वर साहब मन तो कर रहा है कि आपसे

0: भी बहुत से सवाल करें, लेकिन समय की सीमा है। आखिरी में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मांग और पूर्ति वाली जो आपने बात कही है, वो क्या रेलवे सुरक्षा बल को लेकर भी वैसी कोई स्थिति है कि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है, फोर्स की कमी है, इसके बारे में कुछ बताएं।
1: हम लोग इसमें अभी भी भर्ती हुई है, जो बल की कमी थी उसमें भी भर्ती हुई है, और हमारे पास ट्रेन होके जो हमारे नए बल कर्मी हमें कुछ ही महीनों में ज्वाइन कर लेंगे, तो जो कमियां अभी महसूस हो रही है वो थोड़ी उसकी काफ़ी पूर्ति होगी। इसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी को वृहद तौर पे, चाहे ड्रोन से सर्वेलांस हो कि भीड़ कहाँ पे है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाकर, या जो लेगेसी डेटा है उसको कंप्यूटराइज करके और उससे प्रिडिक्टिव एनालिसिस हम लोग करके इसका ज़्यादा तौर पे, बहुत वृहद तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बड़ा असर दिखा रहा है।
0: मुनव्वर साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि रेलवे सुरक्षा बल यूं ही अपनी पूरी फोर्स के साथ, नवीन और आधुनिक तकनीक के साथ, यात्रियों की और माल की सुरक्षा के लिए समर्पित रहें। आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक श्री मुनव्वर खुर्शीद से दीपक हटवार की बातचीत। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आज जरीन दारूवाला यानी जरीन शर्मा का दिवस है, इन्हें हम याद कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन जरीन दारूवाला का जन्म हुआ था। आज के दिन इनका नाम इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि ये सरोद जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान वाद्य पर महारत हासिल करने वाली शुरुआती महिला कलाकारों में से एक है। यह बहुत सुंदर सरोद वादन किया करती थी। इन्होंने मैहर और ग्वालियर घराने से तालीम ली। वादन में गायकी, अंग और द्रुत तंत्रकारी का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया। सिनेमा में अगर इनके योगदान को याद किया जाए तो मदन मोहन, नौशाद और खयाम जैसे संगीतकारों के साथ पाकीज़ा सहित कई सारी फिल्मों में पार्श्व संगीत में सरोद वादन का कार्य इन्होंने किया। इसके साथ ही ये अपने पति सितार वादक पंडित अशोक शर्मा जी के साथ में देश विदेश में कई सारी प्रस्तुतियां भी इन्होंने दी। 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी यह सम्मानित रही हैं। याद करते हैं उन्हें और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत बर्फी फिल्म से। श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और प्रीतम ने संगीत दिया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। किसी ने सही कहा है कि चिंता करने से क्या फायदा, अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर बस मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना वह तोहफा है जो बिना खर्च किए दिया जा सकता है और पाने वाले की पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो फिर हमारे पास दिन की शुरुआत करने के लिए केवल एक चीज बचती है, वह है मुस्कुराना। तो मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए और आधी सफलता तो यही मिल जाएगी।

हम सुन रहे थे रॉकस्टार फिल्म से यह गीत मोहित चौहान एआर रहमान की आवाजों में। इशात कामिल ने इसे बोल दिए और एआर रहमान के संगीत के साथ सुना हमने यह गीत। आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हम सुनते हैं नए गीतों को और उसके साथ याद करते हैं कुछ विशेष लोगों को। आज का दिन एक बार और विशेष हो जाता है क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास का। ये उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। उन्हें उड़ीसा का रत्न यानी उत्कल मणि कहा जाता है। इन्होंने 1909 में साखी गोपाल में गुरुकुल शैली की प्रसिद्ध सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की, जहां पर चरित्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम की शिक्षा दी जाती थी। 1919 में उन्होंने द समाज समाचार पत्र की शुरुआत की, जो जन जागरण का प्रमुख माध्यम बना और आज भी उड़ीसा का प्रतिष्ठित दैनिक है। इसके साथ ही वे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल भी गए थे। बाढ़, सूखे, महामारी के समय उन्होंने पीड़ितों की निस्वार्थ सेवा की। वे लाला लाजपत राय की संस्था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने बंदिर आत्मकथा, कारा कविता और धर्मपद जैसी प्रमुख कृतियां भी लिखी। उनका पूरा जीवन त्याग, लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा और 50 वर्ष की आयु में 1928 में आपका निधन हो गया। हम आपके जन्मदिवस पर आपको हमारी स्वतंत्रता के लिए, आपके किए गए कार्यों के लिए याद करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म सिंघम से सुखविंदर सिंह की आवाज में, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, अजय अतुल ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली

0: हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम है चित्रलोक. आइए चलते हैं चित्रलोक के अंतिम गीत की तरफ. ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और नृत्य से अच्छा व्यायाम क्या हो सकता है. तो मन करे तो सुनिए ये गीत और साथ में ताल से ताल मिला लीजिए.

भारती देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: हस्ती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

का वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद ले पाते हैं।

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जीएल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुईं। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

0: खाने वाले अपना पराया कभी खाएंगे ससुर जी ले जाएंगे।
1: गीत गाता चल।

रविंद्र जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए।

0: कट जाए।
1: रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की

आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसीलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में करहते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार गीत।

0: आज से पहले।
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और

कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्यमालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

0: एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु
1: रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज महिला और बाल विकास विभाग के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सुकमा जिले में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के दौरान हुए हादसे में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल। और 22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। यह सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के दौरान हुए हादसे में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कल सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एला मलडुंग कैंप के पास बोदरा राज नाले के पास करीब एम्यूनिशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंग को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 22 और 23 अक्टूबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल, आवास, स्वास्थ्य और परिवहन की व्यवस्थाएं निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के रायपुर में लोकभवन और बूढ़ापारा स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम तथा जगदलपुर के लालबाग मैदान में मुरिया दरबार और बस्तर दशहरा के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जगदलपुर में आयोजित 2 दिवसीय सहकार से समृद्धि राष्ट्रीय वर्कशॉप का आज समापन होगा। दूसरे दिन आज नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आगामी 5 वर्षों के वित्तीय सहयोग तथा राज्यवार लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही एमपैक्स से उर्वरक तथा अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता और जिला स्तर के सफल सहकारी मॉडल साझा किए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान अधिकारी बस्तर की एमपैक्स लघु वनोपज और जनजातीय सहकारी समितियों का भ्रमण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल में आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत विश्व डाक दिवस से होगी। इस वर्ष की थीम है वन पोस्टल नेटवर्क इन्फेराइट पॉसिबिलिटीज। इस दौरान डाक विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली, रक्तदान शिविर, विद्यार्थियों के लिए डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं डाक चौपाल के माध्यम से बचत योजनाओं, डाक जीवन बीमा और आधार सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। ग्राहकों से संवाद कर मेल और पार्सल सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। राष्ट्रीय डाक सप्ताह का समापन 15 अक्टूबर को प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस के साथ होगा। छत्तीसगढ़ की फुटबॉलर किरण पिस्दा का भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। किरण बालोद जिले के आदिवासी परिवार से आती हैं। वे 11 अक्टूबर को कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में रूस के साथ होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैचों की सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। इनमें से एक मैच 8 अक्टूबर को खेला गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसरशिप या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सुकमा जिले में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के दौरान हुए हादसे में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल। और 22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं, सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी जो आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाएंगे।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 10:10 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। 11 बजे होगा विविध भारती प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और पुनः विविध भारती प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण होगा सुबह 12 बजे। 11 बजे और 12 बजे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 11:55 पर। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुनेंगे शाम 5 बजे। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सिरगुजा। भजन संध्या आप सुनेंगे 5:10 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए आप सुनेंगे 5:30 पर। हिंदी में समाचार शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से शाम 6:10 पर। कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग आप सुनेंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। शाम 7 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे जन सेवा से देश सेवा अभियान अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। विषय होगा सेमीकंडक्टर मिशन। 7:30 पर आप सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम जिसमें अच्छी बात का विषय होगा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्रीकरण अपनाएं। आज की नसीहत में आप सुनेंगे भविष्य के लिए जल बचाएं, सब्जियों के लिए टपक सिंचाई अपनाएं। साथ ही होगा आज का टीप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 8:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9 बजे विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्व

0: विद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी अब जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदु भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदु भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram Geet Desh Mallar Dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein Geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye Geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए सम्मान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 10:10 पर 10:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 11:00 और 12:00 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 11:55 पर। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। FM बैंड पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से हम बोल रहे हैं। इस वक्त 10:10 हुए हैं। सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए फाल्गुनी पाठक को।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल, 22 स्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: भारती।
7: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
8: श्रोताओं, आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से

सुगम संगीत का कार्यक्रम और संदेश से पहले आपने सुना सोनू निगम को। अगला गीत सुनिए जावेद अली के स्वर में।

किसी गीत को सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए और किसी धुन पर कोई किस्सा याद आ जाए, या फिर गाने के वो बोल जिसमें बिना कुछ कहे दिल की बात समझ आ जाए। बस ऐसे ही गीतों की तलाश में आप और हम मिलते हैं सुरों के इस खूबसूरत मुकाम पर, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। और आज कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो दोस्त डिडनेश्वरी। आप सभी को मेरा नमस्कार और कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोता साथियों, कार्यक्रम आपकी फरमाइश शुरू करते हैं और सुनते हैं फिल्म आराधना का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, एसडी बर्मन का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं दत्तरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
4: कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म रॉकी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, आडी बर्मन का संगीत, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है कुल सिटी बरका खाने से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, अफजल मलिक, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं चकर भाठा कैम से रूपचंद सिंहवानी, सपना सिंहवानी, गोविंदा सिंहवानी, जयंत कृपाल, शेरू अंजू और मन्नत सिंहवानी। इसी गीत को सुनना चाहते दर्चूरा से ददवा साहू, भूरी साहू, रेगा और मोतीलाल साहू।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
0: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम आपकी फरमाइश, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, और अगला गीत इस वक्त इंतजार कर रहा है सुनाए जाने का। तो अगला गीत है फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, समीर के बोल है, जतिन ललित का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गौशाला परा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा ईशु और अंशु गुप्ता, आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में गीतों का सफर जारी है और कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म करण अर्जुन से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इंदीवर के बोल है राजेश रोशन का संगीत और इस गीत की फरमाइश आई है हमारे पास इस वक्त श्रृंगेशी महानदी सिहाव पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन का। साथ ही भेजने वाले हमारे और श्रोता साथी हैं मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन, जतुका किशनपुर से, आलम दिल का शबाना नाज, रिजवान राह, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर, गणेशपुर से फिरोज आलम, नाज प्रवीण, अर्शफा अबू असलान बाबू, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अली, आसिफ और नईम राजा, रायगढ़ से श्याम सुंदर घोष, प्रेमलाल लहरी। सुनिए श्रोताओं अपनी पसंद पर ये गीत।

श्वेता साथियों, अब हमें भी कार्यक्रम से जाना होगा क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। और जाने से पहले हमारा ईमेल पता नोट करिए। हमारा ईमेल पता है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड है 9600001। पता एक बार फिर से सुने, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड है 9600001। अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश से डिनेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी केंद्र रायगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइशी। कार्यक्रम संपन्न होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इसी के साथ चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नगर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु

0: मधुरांतकम सीट पर टीवीके और दारापुरम पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। असम की लोकसभा सीट नगांव पर हुए उपचुनाव की गणना में भाजपा उम्मीदवार आगे है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर गिनती के दूसरे दौर के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनगयम से 4000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। अनुराग धारा कार्यक्रम में अब सुनते हैं भोजपुरी गीत। कलाकार है शारदा दुबे।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: अनुराग धारा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ भोजपुरी गीत शारदा दुबे और साथियों से। लीजिए अब सुनते हैं इनसे ये देवी गीत।

अनुराग धारा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी गीत। कलाकार थे शारदा दुबे और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है जीने की राह।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा है गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है अभिलाषा।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हूँ, फिर पढ़ के भुला जाते हूँ।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुरकरा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के।

0: जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा युवाणी माँ तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमार गांव आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने पर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह एक के कार्यक्रम में इतना कुछ तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा तेना 6 तक चलते जेमा तह मंगलवार गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
0: एक संग युवाणी।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म सच्चाई का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को सुरों में ढाला था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर और उषा खन्ना के स्वर में अनजान का लिखा गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है कंगन।

तो सुल्तानपुरी का लिखा गीत जिसे संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने, आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है बुलंदी।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगी। आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है और जगदलपुर में आयोजित 2 दिवसीय साकार से समृद्धि राष्ट्रीय कार्यशाला का आज समापन होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 22 और 23 अक्टूबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल, आवास, स्वास्थ्य और परिवहन की व्यवस्थाएं निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के रायपुर में लोकभवन और बूढ़ापारा स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम तथा जगदलपुर के लालबाग मैदान में मुरिया दरबार और बस्तर दशहरा के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी

0: प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा। आज विश्व डाक दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जनसेवा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल में आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है वन पोस्टल नेटवर्क इन्फेनाइट पॉसिबिलिटीज। इस दौरान डाक विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली, रक्तदान शिविर, विद्यार्थियों के लिए डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं डाक चौपाल के माध्यम से बचत योजनाओं, डाक जीवन बीमा और आधार सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय डाक सप्ताह का समापन 15 अक्टूबर को प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस के साथ होगा। जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय सहकार से समृद्धि राष्ट्रीय वर्कशॉप का आज समापन होगा। दूसरे दिन आज नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आगामी 5 वर्षों के वित्तीय सहयोग तथा राज्यवार लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही एमपैक से उर्वरक तथा अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता और जिला स्तर से सफल सहकारी मॉडल साझा किए जाएंगे। सम्मेलन के दौरान अधिकारी बस्तर की एमपैक्स लघु वनोपज और जनजातीय सहकारी समितियों का भ्रमण भी करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित महिला और बाल विकास विभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन सह चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ की पोषण पहलों की सराहना की गई। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सम्मेलन में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के वजन त्योहार और बाल गृहों में बच्चों के स्वास्थ्य योजना तथा साप्ताहिक आहार चार्ट की विशेष रूप से सराहना हुई। दो दिवसीय सम्मेलन में आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार, मिशन वात्सल्य, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर राज्यों के अनुभव साझा किए गए। छत्तीसगढ़ की फुटबॉलर किरण पिस्दा का भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। किरण बालोद जिले के आदिवासी परिवार से आती हैं। वे 11 अक्टूबर को कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में रूस के खिलाफ होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैचों की सीरीज में भारतीय की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगी। आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है और जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय सहकार से समृद्धि राष्ट्रीय कार्यशाला का आज समापन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा

0: सेना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ईडीएआर, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। सिलसिला फिल्म का गाना है अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल हैं, शिव हरी का संगीत।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही

है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं।

0: खूबसूरत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार राहुल देवबर्मन। विविध भारती से ये है कार्यक्रम यादों की महफिल। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म उमराव जान, आशा भोसले की आवाज, शहर यार के बोल, खयाम की तर्ज।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद

इजाजत फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में गुलजार के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत। ये घर फिल्म का गाना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। गुलजार के बोल राहुल देवबर्मन की तर्ज है।

0: विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।

0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।

अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: सौतन की बेटी इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी सावन कुमार की, संगीतकार थे वेदपाल। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब जब

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका है सुरीला सफर का कंसेप्ट क्या है। इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं एक इबारत, और उस इबारत से आपको शब्द चुनने होते हैं, गाने चुनने होते हैं, और अपनी टिप्पणियां, अपनी यादें, अपनी बातें साझा करनी होती है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने यादें, बातें साझा की हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो अपना मोबाइल उठा ले और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाएं और टाइप करें अपनी बात। तो आज की इबारत हम आप तक पहुंचा देते हैं जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। दरवाजे पर कौन है? डाकिया। इस जमाने में डाकिया डाक लाया? हाँ। चिट्ठी? हाँ। क्या लिखा है? ख्वाब। साथ में है तोहफा। याद है बचपन में माँ, पिता, भाई, बहन को चिट्ठी लिखते थे, कभी घर की खैरियत पूछते,

कभी छुट्टियों में आने का वादा करते, कभी महबूब के नाम खत चुपके से लिखा जाता था, उसे किसी के हाथों पहुंचाया जाता था, रेडियो से गाने गूंजते, खत लिखते समरिया के नाम बाबू और तेरा खत ले के सनम पाँव कहीं पड़ते हैं वगैरह वगैरह, लिखा है तेरी आंखों में लिखे जो खत तुझे। इन गानों को नोटबुक में नोट किया करते थे, फिर कभी इन्हें पत्रों में लिखा जाता, कभी पत्रावली में भेजकर पढ़े जाने का इंतजार भी किया जाता था। आपने किया इंतजार? बहरहाल तो फिर अपनी चिट्ठी वाली याद साझा करो ना। वो खिलखिलाकर हंस दी और बोली, तुमने तो एक बार बिना शब्द लिखे कोरा लिफाफा भेज दिया था। वो बोला, उसमें सारे शब्द थे, बस तुम्हें पढ़ने नहीं आया था, तुम्हें पढ़ने थे वो शब्द। और खत में शेरो शायरी वाला लम्हा, वो फिर खिलखिला दी। आज मोबाइल पर संदेश आते हैं, नीली टिक लगती है, जवाब भी आ जाता है, मगर वो खत की खुशबू, वो लिफाफे को बार बार खोलना, वो लिखावट में किसी को महसूस करना, किसी की छुअन को महसूस करना, सब कुछ कहीं पीछे छूट गया। दरवाजे पर अब डाकिया नहीं आता, मगर मन में आज भी किसी की चिट्ठी का इंतजार होता है। चिट्ठी आ जाए तो दौड़कर लगता है कि वो डाकिया सामने खड़ा है। तो बताइए दोस्तों, आज भी आप पत्र लिखते हैं? और पत्र में क्या कभी गुलाब का फूल भेजते हैं, बनाते हैं ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथों से, ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं किसी खास मौके पर, जन्मदिन पर, दिवाली पर, दशहरे पर, और दशहरा तो करीब है ना, दिवाली भी करीब है, नए साल पर, तो कौन हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं आज के शब्द? अब तक तो आप बूझ ही चुके हैं, और इन शब्दों से जुड़े हुए गाने जरा बूझिए। लिखने से, डायरी लिखने से, किताबों में गुलाब के फूल रखने से, वो एक विद्या की पत्ती रखी जाती थी किताबों में, वो सब, वो सारी बातें आज याद कर डालिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम शुरू करते हैं सिलसिला, देखिए ना डाकिया डाक लाया है, सुनिए और जरा हमें बता दीजिए कि कौन है डाकिया और कौन है अभिनेत्री इस फिल्म में। फिल्म है पलकों की छांव में, तो समझ गए ना, बूझिए डाकिया कौन है, अभिनेत्री का नाम, और साथ में अपनी बातें यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai।

0: किया बाबू।
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवेगा।

डाके डाक लाया भाई किसके यहाँ अभी भी डाके आते हैं और चिट्ठी ले आते हैं, हमारे घर तो आते हैं और हमें तो आज भी इंतज़ार रहता है चिट्ठियों का, पत्रिकाओं का, किताबों का। आपको इंतज़ार रहता है क्या? इंतज़ार कीजिए और आप कुछ ऐसा कीजिए कि डाकिया आपके घर आपके दरवाजे पर दस्तक दे। थोड़ी स्टाइल बदल गई है इस गाने में, डाकिया साइकिल से आ रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, पैदल भी आते हैं, बाइक से आते हैं, ऑटो रिक्शा से आते हैं। बहरहाल इंतज़ार कीजिए तो डाकिया आया करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ चिट्ठियाँ आती रहें तो पहले आप तो लिखिए चिट्ठियाँ। किसको लिखते हैं आप चिट्ठी, और क्या आज भी कभी किसी मौके पर चिट्ठी लिखते हैं? कुछ खास त्यौहार हैं जहाँ पर बगैर चिट्ठी के काम नहीं चलता है, जैसे कि राखी का त्यौहार है, बहन भाई को चिट्ठी ज़रूर लिखती है, भाई बहन को चिट्ठी ज़रूर लिखते हैं, आप कब किन मौक़ों पर लिखते हैं? एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अतीत के गलियारे खोल दिए और मैं हॉस्टल की यादों में खो गई, कैसी चिट्ठियाँ सभी की आती थी और हम सब बेल बजाने का इंतजार करते थे, चिट्ठियां लेने के लिए उत्सुक रहते थे, जिनकी चिट्ठी नहीं आती थी वो निराश हो जाती थी, हॉस्टल वार्डन हमेशा आश्वासन देती थी कि कल जरूर पत्र आएगा। तो अब जरा बताइए कि ये जो इंतजार वाला लम्हा है, बहुत सारी फिल्मों में भी है, किस फिल्म में खत पढ़ने वाला दृश्य है, किस फिल्म में आपने देखी कोई फिल्म जिसमें कि पत्र का इंतजार हो रहा है? और वो गाने भी सुझाते चलिए, वो फिल्में भी सुझाते चलिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे इस फिल्म में, बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने शिकायत लिखी है, भाई पत्र में शिकायतें भी लिखी जाती थी, जैसे कि बहुत सारी बातें, अरे आपने तो चिट्ठी का जवाब जल्द नहीं दिया, इतने दिन हो गए और आप तो आए नहीं, और हमने कितना इंतज़ार किया, और भी बहुत सारी शिकायतें होती है। आप कौन सी शिकायत किया करते थे? हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दो बार डाला कमेंट लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा, शायद आपको भी नहीं दिख रहा है ममता जी, मैं क्या करूं, ऐसा दो तीन दिन में एक बार होता ही है। भाई हमें तो दिख गया, लेकिन शिकायत के अलावा कोई बात भी तो लिखिए कि हम श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचा दें, चिट्ठी से जुड़ी हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरा खत लेके सनम पांव कहीं रखते हैं हम, फिल्म के इस गाने में नायिका चिट्ठी पढ़कर बेहद खुश है, कभी कभी किसी की चिट्ठी आने पर इस तरह की खुशी मिलती है, और दरवाजे बंद कर ऐसे ही हाव भाव हुआ करते थे और किसी के सामने नहीं पढ़ना होता था, उसे छुपा कर ही पढ़ा जाता था, क्योंकि चिट्ठियां भावनात्मक लगाव से जुड़ी होती थी और आंखों को पनीली कर देती थी। तो बताइए जरा कि आपने कौन सा पत्र ऐसा पढ़ा है कि आपको छुपाने की ज़रूरत पड़ी, किसको लिखा था वो पत्र कि आपने छुपाया? हालांकि बहुत सारे पत्र छुपा कर लिखे जाते थे, बहरहाल चिट्ठियों में फूल भी भेजे जाते थे और गुलाब की पंखड़ी चिपकाई जाती थी और एक विद्यापत्ति आती थी वो भी चिपका दिया जाता था जब कुछ पढ़ने लिखने की बात होती थी। आपने कभी गुलाब या कोई फूल चिपका कर भेजा है? ज़रा बताइए, ये तो फिल्म का नाम तो आप बूझ गए सरस्वती चंद्र, इसमें कौन है हीरोइन? हीरोइन का नाम बूझना है आपको, चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं।

फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बहुत सारे श्रोताओं से हमने पूछा कि भाई आपने भी कभी फूल भेजा था, तो अभी तक तो जवाब नहीं आया, लेकिन अगर हाँ आपने कभी पत्र में फूल रखकर भेजा था तो ज़रूर बताइए। और फूल मुरझा जाते थे लेकिन उसकी खुशबू बाकी रहती थी, जब कभी कई साल बाद वो चिट्ठी निकाली तो उसमें मुरझाया हुआ फूल, लेकिन ऐसे लगता था वो ताजगी वापस लौट आई है, वो खुशबू वापस लौट आई है। हमने पूछा था कौन है हीरोइन, नूतन। सभी श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया, और मनीष और साथ में सुलोचना भी है इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही लम्हों के बाद लाजवाब प्रस्तुति में सुरीला सफर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शुरू होगा ममता जी द्वारा पूछे जाने वाले एक से बढ़कर एक दिलचस्प सवालों का सिलसिला। तो हम भी कमर कस के आपके पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर दीजिए उत्तर फटाफट। और जब ये हम पहली पूछते हैं तो पहली का जवाब तो आप फटाफट दे ही देते हैं, साथ में ये भी बताते चलिए कि चिट्ठी आप अभी भी लिखते हैं या नहीं, किसका पत्र आपके नाम आया और बड़ा लंबा हुआ करता था पत्र, क्योंकि कई लोग पत्र लंबे लिखने के आदि होते हैं, कि जैसे किसी के घर में भाई होते हैं लंबा पत्र लिखते हैं, कुछ कविताएँ भी उसमें लिख देते हैं, कुछ थोड़े से किस्से भी बयां कर देते हैं, बहुत तफसील से और फुर्सत से पत्र लिखते हैं। ऐसा कोई पत्र आपके पास है, संभाल कर रखा है, आपने कोई चिट्ठी संभाल कर रखी है तो ज़रूर बताइए। अब जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न शायद यही होगा कि बताइए अपनी पहली बार सबसे पहले खत किसको लिखा था। क्या बात है भाई, ज़रूर बताइए। और अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बताइए आपने विविध भारती में कभी कोई पत्र लिखा है, बिल्कुल ये भी हम पूछ रहे हैं। और हमारी ओर से जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने तो विविध भारती के नाम पत्र लिखे थे, पत्रावली कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था, तो आपकी कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए। और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भी आप पत्र लिखते ही होंगे तो वो भी आप बता सकते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गीत सुनाए जा रहे होंगे और हम भी आनंदित होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और शुरू से आखिरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि डाकिया जो खाकी वर्दी में होते थे, बरोठे की कुंडी खड़खड़ाकर जोर की आवाज लगाते थे, सारे घर के लोग सब काम छोड़कर घर के दरवाजे पर दौड़ पड़ते थे, किसकी चिट्ठी है, किसके नाम आई है, फिर डाकिया एक एक करके जो पोस्ट आती थी दे देकर चले जाते थे, फिर सब पहले चिट्ठी पढ़ते थे, बाद में बाकी काम, और बहुत अच्छी बुरी खबर देने का काम तार करता था, पति या घर के और आदमी जो बाहर काम करते थे तो पहली तारीख को मनी ऑर्डर का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता था, वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी, वो सिर्फ एक डाकिया की वजह से ही संभव होता था।

पर अब वो जमाना कहाँ, एक सेकंड भी नहीं लगते खबर खबर पैसा और हालचाल आदान प्रदान करने में। बिल्कुल सही बात है, रक्षाबंधन में राखी हो या भाई दूज में टीका, सब डाकिया ही बाहर पहुंचाते थे और डाकिया का बड़े बेसब्री से इंतजार होता था। डाकिया का लोग स्वागत करते थे उन्हें, गांव में तो बाकायदा गुड़ की डली ले आते थे, गुड़ और पानी पिलाया करते थे। कई लोग दरवाजे पर अपने खाट बिछाकर उनका स्वागत करते थे। अगर कोई अच्छी खबर ले आते थे तो उनके साथ देर तक गुफ्तगू होती थी, फिर पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सुनते थे पत्र। पढ़ने वाला कोई एक होता था, सुनने वाले सभी, और सबकी आंखें नम होती थी। कोई अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा होता था, कोई रुमाल से। बहरहाल बहुत सारी यादें, आप अपनी यादें साझा कीजिए। और अब अगला गाना ये।

फिल्म का नाम बता दीजिए। आसान सा सवाल है, फिल्म का नाम पूछना है आपको। और ये भी बताते चलिए, किसके पत्र आपके नाम ज्यादा आते थे।

अर्धांगिनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज से मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत था। और श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि हमें फिल्म का नाम नहीं पता, बता दिया हमने। और एक श्रोता ने लिखा है कि लंबा पत्र प्रेमिकाओं और पत्नी को लिखी जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गुलाब फूल दिया और वो फूल एक दिन अपने पिता के सामने मिल गया, खोलते समय मैंने बुक में दिया था, अब वो मेरे साथ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्रों में फूल आदि चिपका कर देने की असफल कोशिश मैंने भी बहुत बार की है, मगर बदले में हर बार मेरे मुंह पर किसी न किसी का हाथ ही चिपका है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी न आने का दर्द बॉर्डर फिल्म में देखा था, और जब चिट्ठी आती है तो पढ़कर सुनाने का वाकया भी बड़ा मजेदार है। गाना बजता है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। सचमुच ये चिट्ठी वाली बातें और चिट्ठी वाले गाने बेहद मार्मिक हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो खुशबू से भरी चिट्ठियां महका देती थी, रोम रोम को संवेदनाओं से भरे शब्द कितने सुकून भरते थे। और हाँ, हर रोज 11 बजे पोस्टमैन का इंतजार सबको रहता था। और एक श्रोता ने बताया है कि उपन्यास गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास से बनी फिल्म थी सरस्वती चंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ज्यादातर खत मामा जी को राखी पर भेजती थी और मुझसे लिखवाती थी। उसमें सबसे पहली लाइन होती थी, आदरणीय मामा जी, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करती हूँ वहाँ भी सब कुशल मंगल से होंगे, मुझे बहुत याद आता है वो सब। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं एक बंगालन हूँ, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के पत्रावली कार्यक्रम में चिट्ठी लिखने के लिए मैं अपने आप बगैर हिंदी की कोई औपचारिक तालीम के हिंदी सीखी, वो भी विविध भारती सुन सुन कर। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जान।

कर। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ज्यादा उस दौर में आने वाले हल्के पीले रंग का पोस्ट कार्ड और उसके साथ जवाबी पोस्ट कार्ड भी साथ में आते थे, जब पोस्ट कार्ड को अन्य व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र जो नीले रंग का चारों तरफ से पैक हो जाता था, उसे दूसरा नहीं पढ़ सकता था। इसके अलावा बैरंग चिट्ठी, ये एक सफेद कागज पर लिखे जाने वाला अपनी व्यथा का पत्र होता था, जिसका पेमेंट पेनल्टी के रूप में जिसके पास पहुंचता था वो अदा करते थे। कई बार बहुत आर्थिक तंगी के कारण भी कुछ चिट्ठियां बैरंग आती थीं, जो आपको अदा करना पड़ता था, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाम अभी भी पत्र आते हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं वो जो चिट्ठी पहुंचाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सगाई और शादी के बीच 6 माह का गैप होने के कारण हम दोनों का पत्रों का सिलसिला चला। वो चिट्ठियां हमने आज भी सहेज कर रखी, उस लिफाफे को हमने दिया है अमोल लेने दी, और 36 बरस हो गए। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अमीन साहनी साहब को पत्र लिखा था। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी बातें, अपने जज्बात। तो आप भी अगर आपने नहीं लिखा तो लिखिए और जरा बताइए फिल्म का नाम और कौन है हीरो हीरोइन।

कन्यादान फिल्म का ये गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन। शशि कपूर और आशा पारेख हैं और सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया है। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर जवाब आने शुरू हो गए। वही साथ में अपनी बातें और यादें भी साझा करते चलिए कि किन के पत्र आपने संभाल के रखे हैं। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमने तो आज भी कुछ चिट्ठियाँ संभाल के रखी हैं, क्या आपने भी रखी हैं? वैसे जब ये बात आती है, संभाल के रखने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब जगह नहीं बची है। भाई, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास जगह है, लेकिन किसी की लिखी चिट्ठी के लिए जगह नहीं है। किसके पत्र आपके पास ज़्यादा आते थे, ज़रा ये बताइए। सहेलियों के पत्र, पिता के पत्र, पति का या फिर किसी और का? क्या एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे को पत्र लिखा है? कई बार एक ज़माना था जब लड़कियाँ बहुत जल्द से घर से नहीं निकलने पाती थी, तो वो पत्रों से अपनी बात एक दूसरे से, अपनी सहेलियों से साझा करती थी। क्या आपने भी ऐसा किया है? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास मेरे पापा जी का पत्र है, अब वो नहीं है पर पत्र में उनकी यादें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ के एक डाकिये की याद आ गई जो ठीक 11 बजे आया करता था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने विविध भारती के नाम पत्र लिखे मनचाहे गीत में, अब तो पोस्ट कार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं और पत्र वाला डब्बा भी नहीं मिलता है, मतलब पोस्ट बॉक्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं। भाई, अगर शौक है तो विविध भारती के नाम तो आप पत्र लिख ही सकते हैं। वैसे भी अभी लंबी तादाद में श्रोताओं के पत्र आज भी आते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो पहली बार और सिर्फ एक ही खत मेरी दीदी ने मेरे लिए भिजवाया था, मेरी छोटी बहन के हाथों। वो खत आज भी मेरे पास है, पर अब न ही मेरी दीदी मेरे साथ है न छोटी बहन। मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ आंखें नम हो जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपका खत मिला फिल्म शारदा रामेश्वरी पर ये फिल्माया गया हुआ है, मतलब जो मैंने पूछा था कि कोई फिल्म की सिचुएशन जहाँ पर खत है, पत्र पढ़ा जा रहा है, हकीकत फिल्म में भी एक दृश्य आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात बहुत हंसी की है, मैं आप सबको लेकिन बताऊंगा। उस समय 16 बरस का रहा होऊंगा, मैंने एक लड़की को चुपके से एक पर्ची में कुछ लिखने के बाद उस पर्ची को किसी बच्चे के हाथों उस लड़की को देने के लिए कहा, लेकिन वो पर्ची लेकर उस लड़की की मम्मी को दे आया। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे विषय को आज आपने छेड़ दिया है जिससे 90% श्रोताओं का अतीत जुड़ा हुआ है, अतः सभी अपने अतीत को खंगाल अनुभवों को साझा करने में जुटे हुए हैं। तो जरा जल्दी अतीत को साझा कीजिए, क्योंकि अब घड़ी की ओर देखिए 1:30 हो रहे हैं, तो अब आधे घंटे और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी अपनी अतीत की बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है पत्र, गांव से शहर पढ़ने आया तब घर वालों से खत के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान होता था और तब उन संदेशों का बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको पूछना है एक बार फिर, कौन है हीरो कौन हीरोइन?

तीन देवियां फिल्म का गाना था और सभी श्रोताओं ने सही बूझा है, देव आनंद और नंदा पर फिल्माया गया था ये गाना और सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत था। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें साझा कर रहे हैं, सचमुच हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी यादें और बातें पढ़ते हुए और आपको पढ़कर सुनाते हुए। ऐसे लग रहा है कि हम भी कोई पत्र लिए हैं, पढ़कर सुना रहे हैं और आप सभी हमारी आंखों के सामने, माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए हैं विविध भारती के स्टूडियो में। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो काफ़ी पत्र उनको लिखा है, मतलब हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये लिखी है ये बात बहुत पहले, पर वे उन्हें संभाल कर रखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एक डैश डैश डैश रहा है। भाई पता कर लेना चाहिए था ना चिट्ठियों के माध्यम से। एक श्रोता ने लिखा है कि आर्मी में ड्यूटी के दौरान अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली इलाकों में घर वालों की चिट्ठियां बहुत देर से मिलती थी, पढ़ने के बाद सुकून मिल जाता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि फरमाइशी कार्यक्रम में एकमात्र पत्र लिखा गया जो शामिल भी हुआ था आकाशवाणी ग्वालियर में। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेरे साथी दोस्तों के पत्र ज्यादा आते थे, हम जब पढ़ाई करते हुए स्कूल से कॉलेज गए तब बिछड़ गए थे, इस समय हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मेरी शादी होकर राजस्थान गई, दिल्ली से मम्मी पापा खत लिखते थे, मैं भी उन्हें लिखती, मेरी माँ बाबूजी के खत आज भी मेरे पास संभाल कर रखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक मेरे कमेंट ना पढ़ें कोई बात नहीं, पर विविध भारती से शिकायत वाला पत्र तो पढ़िए, दो अन्य बहनों ने भी विविध भारती के अक्षम्य लापरवाही बताई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये शिकायती प्रोग्राम नहीं है, अगर आपको विविध भारती के किसी कार्यक्रम से शिकायत है तो कृपया मेल पर आप शिकायत भेज सकते हैं। ये तो सुरीला सफ़र इसका नाम है, सुरीली बातें सुरीली गाने। अगर हाँ इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई बात है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम शामिल करें ना करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात हम जरूर शामिल करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने आज भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर संभाल कर रखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अब कोई पत्र नहीं भेजता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमने तो सबसे ज्यादा पत्र लिखे अपने दादाजी को, वो बहुत रोते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैंने प्यार किया फिल्म देखी थी तो वो कबूतर वाले गाने को देखकर हमने पोस्ट कार्ड को कबूतर के आकार में काट कर चाचा चाची को पत्र लिखते थे। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, खत के बारे में मेरी एक याद है जो बहुत ही मजाकिया है। एक लड़के ने मुझे खत लिखा था और मैंने पढ़ने के बाद उसको जमीन में दबा दिया था, उसके बाद मैं भूल गई वो जगह कहाँ थी। क्या बात है भाई, लगता है घर वालों से छुपाई होगी बात। बेहतर बात ये होती कि आप घर वालों को बता देती कि ये पत्र आया है फलाने की ओर से या जो भी नाम था। बहरहाल चलिए, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं और हम गानों के बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। जरा ये गाना सुनिए और बूझिए कौन है हीरो कौन है हीरोइन। फिल्म का नाम तो बता ही सकते हैं आप।

शक्ति फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है इसका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, अब जमाना और है, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ही मोहब्बत का इजहार हो जाता है, लेकिन उसमें वो रूह नहीं। आज भी हम खत पर विश्वास करते हैं, माँ पिता का पत्र, प्रेमी या किसी सहेली का पत्र, क्योंकि उन पत्रों के शब्दों में होती है आत्मीयता, लिखावट से पता चलती है प्रेषक की तन्मयता, और पत्र पढ़ते समय पत्रों में से झांकता है चेहरा लिखने वाले का। क्या बात है भाई, अब तो मोबाइल के जरिए अगर प्रेम का इजहार होता है तो तुरंत इमोजी के जरिए पता चल जाता है, या तुरंत शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए। तब जब पत्र लिखे जाते थे, प्रेम पत्र, तो इंतज़ार होता था, इंतज़ार में रात भर आँखें तकती थीं कि कब वो उस पत्र का जवाब आएगा। कभी ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा, और ये इंतज़ार होता था कि लिखने वाला कब लिखेगा, क्या लिखेगा, जाने कौन सी बात होगी, ये भी जिज्ञासा हुआ करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं होते थे, उनमें लिखने वाले का प्यार, आशीर्वाद, भावनाओं और स्नेह का स्नेह छिपा होता था। उन पत्रों का इंतजार और उन्हें पढ़ना भी कितना खूबसूरत होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में एक ऐसा शब्द है जो बरसों जैसे लगते हुए इंतजार की घड़ियों को खत्म कर देता जरूर है, पर आगे इंतजार को बहुत पीड़ादायक बना देता है। खत को लिखते हुए हर उस शख्स के उंगलियों का स्पर्श, उनके ख्वाब, उनके भाव और प्यार, सभी उस लिफाफे में बंद होकर हम तक पहुंचाया जाता रहा है, जिसके आते ही धड़कनें बढ़ जाती थीं। सचमुच कुछ पत्र पढ़ते हुए दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या आपने इस गाने के बारे में सोचा था। और हाँ, आगे कुछ श्रोता अगर गाने सुझा रहे हैं तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे। सुनिए ये गाना और बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

फिल्म थी आए दिन बहार के आशा भोसले की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। आशा पारिख हीरोइन होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि डाक प्रणाली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि इसका विकास प्राचीन सभ्यताओं के साथ धीरे धीरे हुआ है। और बहुत सारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक गजल याद आती है, प्यार का पहला खत लिखने में देर तो लगती है। सच में ऐसा ही होता था, कई पन्ने फाड़कर खत लिखे जाते थे, सचमुच संतुष्टि नहीं होती थी दोबारा तिबारा। अब तो ऐसा धीरज बचा ही नहीं है, जैसे तैसे एक पत्र लिख दिया बस काफी है, फिर ये समझ में नहीं आता दो लाइन लिखने के बाद कि अब क्या लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र की शुरुआत हम करते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। बहुत सारे लोग ऐसे लिखा करते थे, हम भी ऐसे ही शुरुआत करते थे, पहले सामने वाले का नाम और संबोधन, प्रणाम नमस्कार, उसके बाद ये। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे दादा ने अपने ही घर के एड्रेस पर शुभकामना का पोस्ट कार्ड भेजा था ताकि पोस्ट कार्ड पर जो तारीख का स्टैंप लगाया जाता है ये प्रूफ अपने पास रहे। क्या बात है भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने हेलो फरमाइश आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में अपनी बातचीत और अपनी पसंद शामिल होने पर हर बार व्यक्तिगत आभार के पत्र लिखे थे, पर हाँ एक बात जरूर की थी कि किसी महिला प्रस्तुतकर्ता को पत्र लिखा था, तब पते में उनका नाम नहीं पर अन्य कोई साथी उद्घोषक का नाम लिखकर उनको पहली लाइन में विनती की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक इस रक्षाबंधन पर हमने 100 से ज्यादा पोस्टकार्ड अपने सैनिक बंधुओं को लिखे और राखी भेजी थी। क्या बात है भाई, सलाम करते हैं आपकी इस बात को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहली बार जब पत्नी का खत मेरे कॉलेज के पते पर आया, दरअसल शादी के कुछ महीने बाद पत्नी की विदाई हो गई, वे मायके चली गई थी, मैं कॉलेज में

पढ़ने में व्यस्त हो गया। अचानक एक दोस्त ने एक खत एक दिन दिया, तुम्हारा खत मेल काउंटर पर रखा है, ले आता हूँ। खत को ले जाकर लाइब्रेरी में कोने में बैठकर पढ़ने लगा। तमाम शायरी दोहे पढ़ते ही मन ही बदल गया, उनकी याद ने माहौल ही बदल दिया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही बढ़िया लगा, सुरीला सफ़र का आज, खतों की बात, मुझे तो गाने भी बहुत सारे याद आ रहे हैं और गानों की फेरिस्त इन्होंने लिखी है। अब चलिए अगला गीत सुनते हैं, बूझिए जरा फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम भी बूझना है आपको।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी दुल्हन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ नियुक्ति पत्र ही संभाल के मैंने रखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है निदा फाजली का शेर, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत बढ़िया लग रहा है। खतों की बात है, मुझे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और गानों की लिस्ट इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम खास है क्योंकि बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम मेरे घर आ रहे हैं चिट्ठी डाकिया डाक लाया, एक डाक और डाकिया एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को देखकर चेहरे पर चमक आ जाती थी। और मेरे घर आ रही चिट्ठी आए या ना आए, लेकिन हमें इंतज़ार रहता था, डाक वाले का पूरा शहर सम्मान करता था। अब वो ज़माना गुजरे ज़माने में सालों में तब्दील हो गया। दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड, शादी के निमंत्रण,

कुशलता का समाचार, कोई अन्य खबर, नौकरी से संबंधित सूचनाओं के पत्र भी, और भी बातें, बहुत कुछ यादें ताजा हो गई जब लोग चिट्ठी लिखने को कहते और आई चिट्ठी को पढ़कर सुनाया करते थे। तो ऐसी तमाम चिट्ठियां होती थी जब, और ये भी आपको याद होगा कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जब, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जिन्हें पत्र पढ़ने नहीं आता था, वो पत्र लेकर आती थी घर में और कहती थी कि ज़रा ये पत्र पढ़कर सुना दो। और उसमें कई बार मजाक भी होता था, बच्चे शरारत भी करते थे, चिट्ठी लेकर भागते थे इधर उधर, वो दादी काकी दौड़ती थी पीछे पीछे, वो भी एक अलग आनंद था। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या वो खूबसूरत दौर था जब किसी अपने के नाम चिट्ठी लिखना अपने ही मन के आंगन में उतरने जैसा हुआ करता था। कलम की नोक से कागज़ पर उतरते शब्दों में न जाने कितनी भावनाएं घुल जाया करती थीं। शब्द केवल पढ़े नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। आज तो डिजिटल युग में उंगलियों के एक स्पर्श से संदेश पहुंच जाते हैं, पलक झपकते ही जवाब आ जाते हैं। लेकिन वो चिट्ठी वाली स्पर्श कहाँ मिलती है? चलिए अब सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम, और गीतकार और संगीतकार का नाम भी पूछिए।

0: हिना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था नक्श लालपुरी और संगीतकार रविंद्र जैन, और आज उनकी याद का दिन है रविंद्र जैन साहब का। तो आज का ये प्रोग्राम का आखिरी गाना उन्हीं के नाम था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और अभी भी टिप्पणियां आ ही रही हैं श्रोताओं की, पढ़े देते हैं, थोड़ा सा वक्त है। चिट्ठी लाने वाले डाकियों को हर बड़े त्यौहार जैसे होली दिवाली पर विशेष उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने आकाशवाणी जलगांव से प्राप्त ग्रीटिंग कार्ड कुछ दोस्तों के पत्र संभाल कर रखे हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने कुछ पुराने खत अभी रखे हैं संभाल कर, मेरी जेब में पड़ा मोबाइल बहुत जलता है इस बात से। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चिट्ठियों का इंतजार रहता था, अब जमाना बदल गया है, विश्व डाक सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक श्रोता ने लिखा है, गाने की लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु से होती थी शुरुआत पत्र की, और चिट्ठी महज कागज का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हृदय की धड़कनों और आपसी प्रेम का लिखित जीवंत दस्तावेज हुआ करता था, जो प्रेम प्रतीक्षा धीरे के रंगों से जुगलबंदी करता हुआ एक भावुक और दिल से दिल को जोड़े रखने के एहसास लिए होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रियतम प्रियजनों से भी ज्यादा प्रतीक्षा डाकिये की होती थी, पोस्टकार्ड अंतरदेशीय लिफाफों में सिमटे संवादों का आदान प्रदान ने डाकिये को प्रत्येक घर का सदस्य बना दिया था। गांव में माँ की सुनी आंखें, पत्नी की पलकों, पिता की आशा को, इंतजार को, खुशी और मायूसी दोनों डाकिये से ही होती थी। क्या बात है भाई, आप सब ने आज अपनी यादें खंगाली और ताज़ा की हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब प्रोग्राम का ये सुरीला सफ़र यहीं ख़त्म होता है। सुरीला सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 49वीं कड़ी।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह राष्ट्र मंत्र अपना सा लगा। क्रांतिकारियों से लेकर सत्याग्रहियों तक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर किसी में वंदे मातरम शब्द के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया। इससे यहाँ के कलाकार भी अछूते नहीं रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर, राव बहादुर धुरंधर, दीननाथ दलाल, रघुवीर मुड़गांवकर और अल्लाह बख्श जैसे अनेक चित्रकारों ने भारत माता के चित्र बनाकर वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। फिर संगीत क्षेत्र का इसमें पीछे रहना संभव ही नहीं था। संगीत क्षेत्र के दिग्गजों को राष्ट्रीय आंदोलन का आकर्षण होने लगा। इस क्षेत्र के अनेक कलाकारों की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की शुरुआत वंदे मातरम से ही हुई। वंदे मातरम के निर्माण से लेकर पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत क्षेत्र के लगभग सभी नामी कलाकारों ने वंदे मातरम का गायन किया है या उसे संगीतबद्ध किया है।

0: इसमें शास्त्रीय संगीत के नामी घरानेदार गायकों से लेकर आज के रॉक, पॉप, आधुनिक संगीत तक के सभी संगीतकर्मी शामिल हैं। वंदे मातरम ने जिस तरह इतिहास रचा है, उसी तरह वंदे मातरम की संगीत यात्रा भी हैरान करने वाली है।
1: इन सभी रिकॉर्डिंग्स को कालक्रम के अनुसार सुना जाए तो इसमें पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत के बदलते स्वरूप को सुना जा सकता है। एक ही गीत की इतनी संगीत रचनाएं और इतनी बड़ी संख्या में नामी कलाकारों द्वारा गाया गया वो गीत, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व के संगीत इतिहास में किसी अन्य गीत के बारे में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा संगीत में सौभाग्य और एकमात्र अद्वितीय गौरवपूर्ण स्थान केवल वंदे मातरम गीत को ही प्राप्त हुआ है। वंदे मातरम की ये संगीत यात्रा मनोरंजक और रोमांचक है। ये कलाकारों द्वारा देश प्रेम के लिए दिखाए गए स्वाभिमान का प्रतीक है।
0: इस गीत को लिखने वाले ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अंग्रेजों की सेवा में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे न्याय विभाग के उच्च पद पर काम कर रहे थे। उसी समय साहित्य के क्षेत्र में उनका काम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। उनके उपन्यास बेहद लोकप्रिय हो रहे थे। बंकिम चंद्र की गिनती बांग्ला के श्रेष्ठ लेखकों में होने लगी थी। उन्हें संगीत में भी अच्छी रुचि थी। वे उत्तम हारमोनियम बजाते थे, ऐसा उनके मित्रों ने लिख कर रखा है। 1875 में यह गीत लिखा गया। उस समय बंकिम चंद्र जी को संगीत सिखाने के लिए आने वाले यदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम की पहली संगीत रचना की। जिस आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम पिरोया गया है, उस आनंद मठ के पहले संस्करण में इस रचना का उल्लेख राग मल्हार ताल कव्वाली के रूप में किया गया है। दुर्भाग्य से इसकी स्वर लिपि उपलब्ध नहीं है। यही यदुनाथ भट्टाचार्य आगे चलकर रविंद्रनाथ के भी संगीत में मार्गदर्शक बने।

उसी दौरान बंकिम चंद्र की तरह ही सरकारी अधिकारी रहे उनके संगीतज्ञ मित्र क्षेत्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी वंदे मातरम की एक संगीत रचना की थी। 1882 में नेपाल चंद्र धर नामक युवा गायक ने राग देश और राग मल्हार के मिश्रण वाले देश मल्हार राग में वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। 1882 में ही आनंद मठ नाटक में तिलक कामोद राग और छपताल में निबद्ध वंदे मातरम भवानंद की भूमिका करने वाले देवचंद्र बागची इस अभिनेता ने गाया था। संगीत रचना भी उन्हीं की थी। रंगमंच पर हुआ ये पहला सार्वजनिक गायन था। बंकिम चंद्र के निधन के दो ही साल बाद 28 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में हुए राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन की शुरुआत रविन्द्रनाथ द्वारा गाए गए वंदे मातरम से हुई। वंदे मातरम का ये सार्वजनिक कार्यक्रम में पहला गायन था। सन 1900 से राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में नियमित रूप से वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। 1905 में रविन्द्रनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम का पहला रिकॉर्डिंग जारी हुआ। के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधुरानी द्वारा गाया गया वंदे मातरम बहुत प्रसिद्ध हुआ।

1905 से 1910 के दौरान नरेंद्र चंद्र मुखर्जी, आर एन बोस, नारायण चंद्र मुखर्जी, हेमचंद्र सेन और सत्यभूषण गुप्ता जैसे बंगाली गायकों की आवाज में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स जारी की गई। विशेष आश्चर्य की बात यह है कि इसी काल में राष्ट्रीय सभा के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की आवाज में भी वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग निकाली गई। दुर्भाग्य से समय के साथ आज ये रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध नहीं है।

वंदे मातरम के उपलब्ध ध्वनि मुद्रणों में सबसे पुरानी नारायण चंद्र मुखर्जी की आवाज में 120 साल पहले की दुर्लभ रिकॉर्डिंग ये है।

0: वंदे मातरम की संगीत यात्रा को देखते हुए पिछली सदी के भारतीय संगीत के बदलते प्रवाह उसमें सुनने को मिलते हैं। वंदे मातरम के प्रसार में बंगाल जितना ही महाराष्ट्र का योगदान भी बड़ा रहा है। जैसे शास्त्रीय संगीत के घराने दिखते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र और बंगाली ऐसे दो संगीत प्रवाह इस यात्रा में स्पष्ट दिखते हैं।
1: बंगाल शैली। वंदे मातरम के संदर्भ में बंगाल शैली को हम बंगाली स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम का निर्माण जैसे बंगाल में हुआ, वैसे ही वंदे मातरम के संगीत प्रचार की शुरुआत भी बंगाल से यदुभट्ट और रविंद्रनाथ के रूप में ही हुई। रविंद्रनाथ ने संगीत क्षेत्र में जो काम किया है वो उनके नाम से यानी रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम के बिल्कुल शुरुआती दिनों में वंदे मातरम गाने वाले सभी बंगाली गायकों पर रविंद्रनाथ की शैली की छाप स्पष्ट दिखती है।
0: १९२० के बाद भी अनेक बंगाली संगीतकारों ने वंदे मातरम की संगीत रचनाएं की। हरिपद चटर्जी, भवानी चरण दास, कमल दास गुप्ता, आर एन भट्टाचार्य, सूर सागर, जगमोहन, राजन सरकार, अनादि दस्तीदार जैसे बंगाली संगीत निर्देशकों ने अपने अपने तरीके से वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया, फिर भी उसमें रविंद्रनाथ के संगीत की छाप को कोई भी ज्यादा मिटा नहीं पाया। इसमें अपवाद रहे संगीतकार हैं तिमिर बरन भट्टाचार्य, सुबल दास गुप्ता और हेमंत कुमार मुखर्जी। कमल दास गुप्ता के मातृसेवक दल के नाम से प्रकाशित इस रिकॉर्डिंग में बंगाली खोल और पखावज जैसे वाद्यों का उपयोग करते हुए ध्रुपद गायकी का प्रभाव दिखता है।

विख्यात बंगाली संगीत निर्देशक पंकज मल्लिक द्वारा की गई संगीत रचना तो तत्कालीन फिल्मी रचना जैसी है। उसके वाद्य वृंद के कारण फिल्मिस्तान कंपनी के फिल्मी गीतों की याद आती है। अत्यंत बड़े संगीतकार होने के बावजूद वंदे मातरम की उनकी यह रचना राष्ट्रगीत को न्याय देने वाली नहीं बन पाई है।

इसके अलावा 1950 के दशक की विख्यात गायिका गीता दत्त का जीएम दुर्रानी के साथ गाया हुआ रिकॉर्ड भी कुछ अलग है। इसका संगीत ज्ञान दत्त का है।

0: वंदे मातरम को अत्यंत अलग संगीत रचना में प्रस्तुत करने वाले हेमंत कुमार और तिमिर बरन भट्टाचार्य भी बंगाली ही हैं। वंदे मातरम की संगीत यात्रा में बंगाली संगीतकारों के समान ही मराठी गायकों और संगीतकारों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 49वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मिलिंद सबनीस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है।

0: पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रूपये से घटकर 8 रूपये से भी कम रह गई है।
3: 550 million users.
4: भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है

0: कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जुड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों

0: को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। फिल्म थी वो कौन थी और संगीतकार थे मदन मोहन।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गाना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही
4: पार्वती। पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नागिन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम धवन का लिखा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म थी सावन।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।
3: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
1: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुमराह फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये महुआ फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी दोस्त मंजरी वर्मा का कीजिए नमस्कार स्वीकार। हम सभी के जीवन में बचपन की प्यारी यादें जैसे दादी बाबा माता पिता के साथ बिताया वक्त यादों में जुड़ा होता है, और दादी बाबा से सुनी कहानियां या सीख, वही माँ के हाथ का बना खास व्यंजन जो आज तक आपको याद है, आपकी माँ को क्या पसंद है और पिताजी को क्या पसंद है, उस दौर के गलियारों में चलते हैं जहाँ अपनों की यादें आज भी दिल में बसी हैं, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या नम आंखें हो जाती हैं। अब फोन की घंटी बज उठी है, लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं किस सखी से होंगी बातें। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद सातु से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं प्यारी प्यारी से, दादी बाबा के संग माता पिता के संग, वो गुजरा हुआ जो दौर होता है, तो उसकी कुछ यादें आप ताजा कीजिए
1: हाँ,
0: हमारे।
1: याद आती तो है, लेकिन सब तो गुजर गया।
0: जी
1: दादा दादी मामी पापा सास ससुर जी सब गुजर गया।
0: तो ये बताइए कि आपको अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ कुछ खाना याद है? वो क्या अच्छा बनाती थी?
1: हाँ, जैसे पीछा का टाइम पीछा बनाता था,
0: जी
1: सब्जी बनाता था,
0: जी
1: इस सभी में माँ का

0: याद आता है।
1: आप बनाते भी होंगे फिर उनका सिखाया
0: हाँ
1: हुआ।
0: हाँ माँ माँ का पास, मेरा सासू माँ का पास हम बहुत तरीका तरीका खाना बनाने सीखे, और
1: अच्छा
0: हमको नया नया खाना बनाने बहुत अच्छा लगती है। जितना अपने से खा के खुश नहीं मिलता है, हम
1: जी,
0: दूसरे को खिला के हमको खुशी मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जिनको खाना बनाने का शौक होता है तो वो मन से बनाती हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से दिल से खिलाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, कुछ यादें उनकी?
0: पापा हमको बहुत कुछ समझाता था, कोई
1: जी
0: चीज का काम तुम करोगी
1: जी
0: तो 10 बार तुमको सोचना होगा, और एक बार कोई काम तुम कर लेगी तो वह दोबारा नहीं घूमेगा।
1: सही बात है। और ये बताइए, हमारा विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के प्रोग्राम आप कितने सारे सुनती हैं?
0: हाँ हाँ सुनते हैं जी, क्या बोलेंगे, 2 महीना हो जाता है तो मेरा पूरा मन छटपटाने लगती है। आज
1: जी
0: जो रात को जो विविध भारती का गाना होता है ना,
1: जी
0: वो भी
1: जी
0: हम सुनते हैं। शुक्रवार को जो गीत होता है वो भी सुनते हैं हम।
1: अच्छा, क्या बात है। यानी आप बहुत पुरानी श्रोता हैं विविध भारती की।
0: हाँ हाँ हाँ
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए, आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगी?
0: फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियां,
1: जी
0: और गाना वैसे ही भी है, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां। मेरे एक वो कुत्ता था,
1: जी
0: ये वही कुत्ता जब चल गया ना,
1: जी
0: एक हफ्ता हम लोग कुछ नहीं खाए,
1: हाँ,
0: और ये गाना मेरा दिल में बैठ गया।
1: ओहो, सही बात
0: मेरा
1: है।
0: बच्ची भी अभी तक तो कुत्ता का बारे में रोती है, हमको बोलती है कि माँ जब आप विविध भारती में आप फोन लगाइएगा तो
1: जी
0: माँ ये गाना को भी जरूर दीजिएगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हमारा उनसे बहुत जुड़ाव हो जाता है,
0: जी जी
1: उसकी यादें तो दिल से
0: मैम,
1: कभी जा नहीं सकती हैं। तो हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रेखा जी, और फोन कॉल करने के लिए आपको हेलो सहेली में बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर इचलकरंजी से जयश्री पाटिल बोल रही हूँ।
0: जयश्री जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी जो बचपन की यादें होती हैं, जो आपने दादी बाबा के संग गुजारी हैं या मम्मी पापा के संग गुजारी हैं, उन यादों को हम चाहते हैं कि आप आज हमसे साझा करें।
1: दादी तो नहीं थे हमारे बचपन में, हमारे दादी गुजर गई,
0: जी
1: लेकिन बाबा के साथ एक याद है कि सुबह हमारे बाबा कभी हमें उठाते नहीं थे। सुबह 5:30 बजे आकाशवाणी सांगली केंद्र लगता था ना,
0: जी
1: तब वो रेडियो ऑन करते तो हम सब जाग जाते थे।
0: अच्छा,
1: और तब से लेकर आज तक रेडियो इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
0: क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप रेडियो कितने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं। ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपने
1: इतना अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है अभी।
0: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
1: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना,
0: जी
1: सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सखा नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सखा भी मेरा रेडियो है।
0: क्या बात
1: इसलिए
0: है
1: मैं
0: जी,
1: दिल से यही कहूंगी, जब तक सूरज चांद रहे ना तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है। और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
1: मैं तो गेहूं और नाचनी का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने।
0: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका कुछ?
1: बिजनेस भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
0: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
1: दिल
0: जी,
1: खोल के आपके लिए धन्यवाद।
0: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए, है ना? जी तो चलिए जयश्री जी, आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी, शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे।
0: जी
1: वैसे मैं गाँव से हूँ।
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे हम
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम,
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं और मैडम नरमा की कपास होती है,
0: अच्छा,
1: गेहूँ भी होती है मैडम।
0: जी दाल गेहूं वगैरह होता है।
1: जी मैडम,
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियाँ, कुछ सीख, वो अगर आपको याद है तो आप हमें बताइए।
1: जी दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं,
0: जी
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे।
0: जी
1: पापा भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल।
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: खाना बनाने में जो डिश होती है मैडम वो
0: जी
1: सीखी मैडम, जैसे आलू के परांठे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम आलू के परांठे।
0: ये क्या बात है। और सोनिका जी, ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती हैं क्या आप?
1: नहीं मैडम, मैं ये नहीं करती। जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम, हरियाणा में जैसे एक स्कीम है NRLM की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम।
0: जी
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं, जैसे हर महीने वो 100 रुपए जमा करे या 200 रुपए जमा करे, उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम के, तो उसका अकाउंट बैंक में खुलवा देते हैं। और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम।
0: क्या
1: मैं भी
0: बात
1: काम करती मैडम,
0: जी।
1: कढ़ाई बुनाई का नहीं करती।
0: जी बस सोनिका जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ। और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना,
0: जी जी जी
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ
0: क्या
1: और
0: बात,
1: उसमें कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती है। और सोनिका

0: भी आपको कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: जी गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि येलो सैली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, यही गीत सुना दीजिए।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: जी, आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनार है।
0: तो उमिंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं।
0: जी
1: सालेकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
0: जी
1: और
0: और
1: हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
1: हमने खेत में धान बोया है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
1: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
0: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में सास है, 2 बेटे हैं और हम पति पत्नी 2 जन हैं।
0: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
1: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसान का काम सीखे है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
1: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं,
0: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
1: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
0: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैम मेरे को हर लो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली,
0: जी, क्या बात
1: मन
0: है।
1: चाहे गीत,
0: अच्छा,
1: और सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
1: मुकद्दर का सिकद्दर का, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ हमें।
1: बस अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है,
0: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: कपड़ों की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना,
0: जी जी
1: तो
0: जी यानी कि आप शॉप पे काम करती हैं, तो बहुत अच्छी
1: हाँ जी
0: बात।
1: हाँ जी हाँ जी वीर भारती के
0: जी
1: सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
0: एक
1: मुझे,
0: मिनट।
1: इतना पसंद है तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है
0: बीए और बीएड भी कर रखा है।
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने ही नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात
1: जी बिल्कुल।
0: है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: हाँ, तस्वीर बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम,
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम 5 बहनें एक भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हूँ कुछ ऐसा?
1: हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना,
0: जी
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
0: जी जी जी
1: चूड़ियों के साथ,
0: लाख
1: वो
0: के कड़े होते
1: लगाती
0: जो,
1: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करते हैं हम।
0: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप नग
1: हाँ,
0: वगैरह लगाती हैं।
1: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम,
0: जी जी
1: कमीज होती है ना जो पहनने
0: जी जी
1: की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उस पर बटन लगाती हूँ मैं, निशान लगा के।
0: क्या बात है, तो एक दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
1: जैसे मैंने 1000 फराकों में निशान लगाए तो मेरे
0: जी
1: 800 रुपए हो गए।
0: क्या बात है। और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा,
1: खाना ग्रीन स्टू बनाती हूँ,
0: मीठे में क्या बनाती हैं?
1: मीठे में खीर,
0: अच्छा खीर, यानी किस चीज की खीर बनाती हैं आप?
1: तान की, दूध की, और उसमें चावल डालते हैं मैडम।
0: अच्छा चावल वाली खीर बनाती हैं, यानी कि
1: हाँ
0: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता होगा
1: हाँ
0: उसमें तो।
1: हाँ चाहे आप उसमें सवैया डाल लो।
0: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
1: आप आइए, खिलाएंगे आपको पका के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, अपनी पसंद बताइए।
1: मैं किरानती फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मैं दुर्गा नाम है मेरा।
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये
1: जी मैम,
0: बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं।
0: जी
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं?
1: हाँ, रेडियो चलते रहता मेरा, अभी बंद कर दिया मैंने।
0: अच्छा, यानी कि आप हमसे बात कर रही हैं इसलिए बंद किया है?
1: जी मैडम।
0: अच्छा, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं, उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली आता वो सुनती हूँ मैं, और रोज सखी सहेली आता वो भी सुनती हूँ,
0: जी
1: मंचाय जीत आता वो शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा लगा।
1: कभी सुबह 6 बजे चालू करती है
0: जी
1: तो अपना काम भी हो जाता है, तो रेडियो भी सुनती हूँ।
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद का फिल्म का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके। जी
0: जी सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं ग्रहणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत खेल कूदना ये सब करते थे। मतलब वो खेलते थे वो जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना,
0: जी,
1: खो कबड्डी ये सब खेला करते थे।
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के
1: हाँ,
0: खेल।
1: रस्सी कूद है, हाँ, छिपन छिपाई ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेला खेलती हूँ।
0: जी
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी में देखना, आप छिप जाओ मैं आपको ढूंढती हूँ, ऐसा
0: बिल्कुल,
1: दीदी।
0: अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी, वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग ये खेलो खेल। तो उससे क्या होगा, एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा
1: हाँ
0: बनेगा।
1: दीदी,
0: और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी, इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ दीदी दीदी हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं बच्चे, बस
0: जी
1: ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी, उनके साथ तो यहाँ तक कि मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे। हाँ
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना? तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे वो वाला गीत सुना था दीदी, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है।
0: जी सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ।
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी मैं अच्छी हूँ।
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: अहमदाबाद का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
0: अच्छा, और अपने बारे में और कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल में लाती हूँ मुंबई से और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो नवरात्र आने वाला है ना, उसका सीजन चल रहा है, उसमें मैं बैंगल्स है, फिर नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना?
1: जी जी जी आप मंजरी जी बात कर रही है ना?
0: हाँ, मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ
1: जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
0: चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, मैं अम्बे जगदम्बे, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना।
0: जी जी जी जी
1: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
0: जरीना जी, बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी बढ़िया है। आप सुनाओ, आपकी मुंबई की क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं। जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ पे,
0: जी
1: तो दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा बज जाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जिनी की।
0: क्या बात है, फिर देखिए जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहाँ की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है उसका स्वाद भी अलग होता है ना?
1: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को वो रहती है यहाँ पे हर खेतों में लगती है दीदी।
0: जी जी जी
1: यहाँ के दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फरे हैं, यहाँ पे फरने वाले हैं बस।
0: बेर जो उबाल के खाते हैं, छोटे वाले बेर होते हैं ना, लाल लाल।
1: हाँ वो उबाल के वो दीदी जब वो फरते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छे लगते हैं वो बेर।
0: जी जी जी और बबीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी बेटी के ऊपर से।
0: सुनाइए।
1: बिटिया को अगर बच्चे होने तो बहू का सेना हो, नारी नर की खान कहावे, बिटिया घर को नाम चलावे। आज की बिटिया बहु काल की, परसो माँ बन जे हो। यहाँ पे दीदी ऐसे गाना गाए जाते हैं लोगों
0: ने? नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
1: जी दीदी, दीदी सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
1: दीदी सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली।
0: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, फोन नंबर है 4002466 2, यानी 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867 0288, यानी 2867 0288। तो बस हेलो सहेली में लगाइए ये नंबर्स और कीजिए अपनी दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर समृद्धि नायक, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।

0: और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों

0: रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं।
1: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे। जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या, छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं, अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के

महासागर में मनमाफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। 3 भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला? हाँ, आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला? अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही है। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या, सौम्या, सौम्या। मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने? तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं? मां, वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हा, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहां लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थी, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं। मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को माल्शेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते

झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगनछूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों की झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो ताकि

बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले, उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं? विनोद भैया! दिव्या को जलती आंखों से लिलोरते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिला कर रहे

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निस्संग पाया, डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीट हार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो सही, कौन है? पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है? प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चल ना, चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है। आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? आखिर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है? आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी।
लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर आंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी। लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन

एशियन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? अब किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन रायमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ रायमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम
3: विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी हम कर रहे थे। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, वक्त हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: राज साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अरचोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये गणेशपुर गुड़गावा मदन नगर टुकुडांड सिलफिली कनकनगर बंसीपुर बगड़ा कोरंधा सोनगरा दुर्ती मायापुर रामेश्वरपुर झींगापारा खड़गवा पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रघुनाथ नगर धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये भगवानपुर नवापारा तनवारी कोटराही पेंडारी सोनहद धौर चमरसरई चिनिया महावीरगंज इंदरपुर रामपुर अन्नपारा नेऊरगंज बसेरा खुर्द मरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये रामनगर पथरापारा झिरमिटी जजगी मोहनपुर रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी तपकरा पत्थलगांव बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये लोटापानी मयूरचुंदी जामचुआ लोढ़ा आंबा डोडा पानी हारी बहार कोरंगामल सागजोर खड़ामाचा राजा आमा महेशपुर झिक्की खंताडांड परसाडांड पेटा कुर्डे के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ लैलूंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 85 है। ये रूपुंगा कुड़ेकेला बोजिया बेहरामार हाटी आमापाली पंडोपारा सोनपुर सागरपाली बैगिन झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये पीड़िया नोन बिर्रा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 56 है। ये मड़ई कोदवारी भूडूपानी कठमोरगा बांधापारा लालडी झुंडकीडी मुकुआ जुनवानी कुकरी कादर मोहनपुर बालमपुर बोकरामुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के तमनार और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 65 है। ये झिंगोल कशडोल अमलीडी छर्रा टांगर पूंजी पथरा बटुरा कछार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये तालदादर अचानकपुर नवागांव जोगी डीपा तेंदुचुआ धमलपुरा पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये डडईपानी खोलापारा जिडार सिंहार छिंदौला धोबीपारा फरसरा बुड़ार बोडा पाला के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM बैंड पर 5:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण। भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे 5:10 पर, 5:30 और 6:20 पर हमारे केंद्र से आप सुन सकेंगे। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का पहला और दूसरा भाग। जनसेवा से देश सेवा अभियान अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे 7:00 से लेकर 7:15 तक। चौपाल आप सुनेंगे 7:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्रीकरण अपनाएं। नसीहत में आप सुनेंगे भविष्य के लिए जल बचाएं, सब्जियों के लिए टपक सिंचाई अपनाएं। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:30 पर। फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा 10:30 पर आपको सुनवाएंगे। विविध संगीत सुनेंगे रात 10:00। 9:00 का वक्त रहेगा विविध भारती के कार्यक्रमों का, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: संदेश से पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 MHz पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भजन संध्या कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मी शंकर की आवाज में इस भजन को। संगीत है मुरली मनोहर स्वरूप की। भजन को लिखा है कबीर ने।

0: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गरिमा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: मंगल भवन मंगल
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
7: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट

वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
4: संदेश पहले आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर और संगीत निर्देशन में भजन को। आइए अब सुनते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी और राधा विश्वनाथन की आवाजों में इस भजन को, जिसे लिखा है कबीर ने, संगीत मुरली मनोहर स्वरूप के हैं।

श्रोताओं, भजन संध्या के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे लक्ष्मी शंकर, जगजीत सिंह और एमएस सुब्बलक्ष्मी की मधुर आवाजों में कबीर के लिखे भजनों को। संगीतकार थे मुरली मनोहर स्वरूप

और जगजीत सिंह। इस भजन के साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से बोल रहे हैं। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का पहला भाग।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी रमाशंकर शुक्ला। सभी साथियों का स्वागत है आज के कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में। हेलो।
1: हेलो
0: जी हाँ, कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: दुर्गा चौक से बोल रहा हूँ सर, गेंदलाल श्रीवास।
0: गेंदलाल,
1: मुझे लग रहा है सर कि आप रमाशंकर शुक्ला जी बोल रहे हैं।
0: जी जी गेंदलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और मैं रमाशंकर शुक्ला बोल रहा हूँ।
1: जी सर, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं है।
0: जी हमको भी बहुत खुशी हो रही है गेंदलाल जी, और वास्तव में बहुत दिन हो गया आपसे बात हुए। कैसे हैं और क्या काम चल रहा है अभी?
1: सर बहुत अच्छा है सर, हम लोग आप सभी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: हम लोग का काम जो है अब सैलून का काम है सर, तो सैलून का काम अभी पिता पक्ष चल रहा था, थोड़ा संबंधा है, तो कार्यक्रम सुनने का बहुत अच्छा समय मिल जा रहा है सर, तो अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो सबसे ज्यादा कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं?
1: सबसे ज्यादा कार्यक्रम सर लीजिए फिर सुनिए हो गया सर, आपकी फरमाइश हो गया। और एक दो तो जैसे शासकीय योजना का जो बताते हैं सर, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो सब कार्यक्रम सुनते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है
0: जी। फरमाइशी प्रोग्राम ज्यादातर सुनते हैं, और
1: जी।
0: शासकीय योजना की जानकारी तो हमारे कई प्रोग्राम में आती है गेंदलाल जी। चौपाल में भी हम शासकीय योजनाओं के बारे में बताते हैं। उसके अलावा युवाणी है, महिला प्रोग्राम है, उसमें भी शासकीय योजनाओं की जानकारी रहती है। तो
1: सुनते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है, हमें मनोरंजन भी हो जाता है, सूचना भी मिल जाता है
0: जी,
1: और बहुत सारे जानकारी मिलते हैं सर
0: जी। चलिए,
1: बहुत अच्छा, समय का भी बचत होता है, अपना काम चलते रहता है और रेडियो सुनते रहते हैं
0: जी।
1: और
0: जी
1: सर, शिक्षा सूचना सभी प्राप्त होता है सर रेडियो से
0: जी,
1: रेडियो सुनने से बहुत अच्छा लगता है सर।
0: और खुद के अपने साथ साथ आप अपने ग्राहकों को भी रेडियो सुनाते हैं, उनका भी मनोरंजन करते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ सर, बहुत सारे श्रोता है सर जो हमारे रेडियो सुनते हैं, तो नारे हम लोग भी बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन इतना दिन से समय नहीं मिल पा रहा था, आज आपके दुकान में सुने, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे करके बोलते हैं सर
0: जी।
1: और
0: जी।
1: कई आदमी ऐसे हैं कि ना थोड़ा सा आवाज बढ़ाने के लिए भी बोलते हैं सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आवाज बढ़ा दो भैया करके।
0: जी जी तो बताइए, आज आपने फोन किया है गेंदलाल जी, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: सर अनुरोध फिल्म का कोई भी गाना सुना दीजिए सर। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, ऐसा कुछ है सर गाना, उसी को सुनना चाहूंगा
0: जी।
1: और हमारे दो चार मित्र हैं सर, जैसे लक्ष्मी कुमार बोरेट हो गया और बंटी महाराज जी हो गए, गणेश पटेल जी हो गए कबीर चौक से जी, असंतोष श्रीवास हो गए सर, और कृष्ण कुमार यादव जी हो गए, ये सभी मित्र हम लोग सुनते रहते हैं सर, और मिलना जुलना होता है, आपस में बातचीत होता है आकाशवाणी के बारे में
0: जी जी।
1: और हाँ, मीडिया से नारायण साहु जी हैं सर, वो बहुत रेडियो सुनते हैं सर
0: जी।
1: और हाँ, हमारे गुप्ता भाई हैं, तो पान दुकान है उनका यहाँ ना रेडियो चलता रहता है सर, जब से दुकान खुला हमारा रेडियो चलता है, रात 11 बजे तक चलता है सर
0: जी। चलिए, तो आपके लिए और आपके सभी दोस्तों के लिए हम सुनाते हैं आपको अनुरोध फिल्म का ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: हाँ सर जी नमस्कार,
0: नमस्कार,
1: मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूँ सर जी। जी
0: श्रवण कुमार साहू जी, मदनपुर कवर्धा जी। क्या
1: जी
0: करते हैं श्रवण जी?
1: अब खेती बाड़ी का काम भी है सर।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो अभी तो फसल काटने का समय होगा
1: हाँ धान का फसल है और गन्ने का फसल है।
0: जी, तो कैसी हुई फसल आपकी?
1: इस बार तो ठीक है सर, बारिश अच्छी हुई है। हाँ गन्ने की भी फसल ठीक ठाक है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो
1: और
0: कटाई कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं?
1: हाथ से भी कर लेते हैं सर, और लेबर मजदूर नहीं मिल पाता है ना, तो हार्वेस्टर वगैरह से उस पर कटाई किया जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: और
1: लेकिन जो है अपने हाथ से कटाई जो प्राकृतिक रूप से किया जाता है वो बेहतर रहता है सर, मशीनों से उतना अच्छा नहीं रहता।
0: जी,
1: जमीन में जो है जमीन पत्थर पड़ जाता है,
0: अच्छा
1: और हाथ से काटने से उसमें हमारे खेतों में फसल भी अच्छा होता है, और जो हार्वेस्टर चलता है ना जमीन में जो खेत की फसल है उसमें पत्थर पड़ जाता है तो दूसरा फसल लेने में तकलीफ होता है।
0: जी, मशीन का उपयोग समय की बचत के लिए भी करना कभी कभी जरूरी हो जाता है श्रवण कुमार जी।
1: जी, सब समय अनुसार से कार्य करना पड़ता है कि मजदूर नहीं मिल पा रहा है तो उसमें मशीन का उपयोग किया जाता है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में मजदूर मिल जाता है तो उनका उपयोग नहीं करते हैं।
0: जी, तो श्रवण कुमार जी बताइए, आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म धर्मात्मा को सुना जी सर, तेरे चेहरे पे वो क्या जादू है।
0: तेरे चेहरे पे जादू है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और हम सुनाते हैं आपको ये गीत
1: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: जी।
2: रेशम।

0: हेलो, कार्यक्रम है, लीजिए फिर सुनिए।
1: नमस्ते
0: जी नमस्कार, आपका नाम बताइए।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं।
0: मोहम्मद हारून जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
0: अकबरपुर मध्य प्रदेश।
1: MP से।
0: जी तो आप बहुत दूर से फोन किए हैं अकबर जी। कब से सुन रहे हैं रेडियो आकाशवाणी के रायगढ़ के कार्यक्रम?
1: रायगढ़ से हम तो कम से कम साल भर या 2 साल से या 5 साल से जुड़े हुए हैं। हमारी कम से कम पांचवी छठी बार बात हो रही है आपसे।
0: जी तो कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिल्म प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ी में भी प्रोग्राम जाते हैं, प्रसारण होते हैं हारून जी। तो छत्तीसगढ़ी आपको समझ में आती है?
1: हमें तो नहीं आती, लेकिन हिंदी मराठी हिंदी बोलते हैं, हमारे हिंदी आ जाती है समझ में।
0: हिंदी प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: जी।
0: जी चलिए, बहुत अच्छा अच्छी बात है। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं और समीक्षा भी हमें अवश्य भेजिए या पत्र।
1: मौसम कैसा है? बारिश हो रही है कि नहीं हो रही?
0: जी बारिश तो अभी नहीं है, मौसम खुल गया है। कल हल्की बारिश हुई है शाम को, अभी तो मौसम खुला है।
1: हमारे घर भी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो गई थी। मौसम खराब हो गया था कल।
0: जी तो इस साल कैसी रही बारिश आपके यहाँ?
1: हमारे घर में बारिश तो बहुत कम से कम हुई है। हमारे घर बारिश
0: अच्छा कम हुई है।
1: जी। वो जैसी बारिश होनी थी वैसी बारिश नहीं हुई।
0: अच्छा, इसकी वजह भी हम ही हैं हारून जी। हम जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा हमको। तो हमको प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन बना के रखना होगा, तभी हम अच्छी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। तो बताइए, आज लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनाएं आपको?
1: जी
0: कुमार सानू के। तो कुमार सानू के कोई भी गीत आपको सुनवा दें?
1: जी हाँ जी हाँ।

0: समाचार की आवाज निकली है सुना देना, और कब आएगा?
1: इसका प्रसारण होगा शुक्रवार को 5:30 बजे।
0: अच्छा, 5:30 बजे से?
1: जी 5:30 से 6।
0: जी जी
1: ठीक है, और उसके बाद में 6:20 से 6:45।
0: जी जी ठीक है, ओके
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: जी हाँ, कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए कौन बोल रहे हैं।
1: जी सर, मैं ग्राम तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोल रहा हूँ सर।
0: मधुसूदन प्रजापति जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सर, एक ग्राम तारकेश्वरपुर विकासखंड प्रेम नगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सर।
0: सूरजपुर से बोल रहे हैं, क्या करते हैं?
1: सर मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ सर, बाकी कहीं मैं अपना खेती बाड़ी के काम सर उसी में लगे रहता हूँ। और आपके केंद्र का तो सर सभी

0: प्रोग्राम को नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन जो किसान वाणी होता है ना उसको सुन पाता हूँ।
1: जी, किसान वाणी कार्यक्रम से आपको फायदा भी होता होगा खेती किसानी के काम में।
0: अच्छी अच्छी खेती से संबंधित जानकारी बताते हैं सर।
1: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक अवश्य भेजिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: बताइए आज कौन सा गीत सुनाएं आपको।
0: जी सर, आप मुझे साजन फिल्म कोई भी अच्छा गाना सुनवा दीजिएगा सर।
1: साजन का कोई भी।
0: जी सर।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: जी धन्यवाद सर।

0: हेलो,
1: नासा के मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम इंद्रभान सर बोल रहे हैं।
0: इंद्रभान जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर, और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ, मुख्यमंत्री साहब आपको पसंद की चीज बताता हूँ। मेरे बना में सूचित किलो है और उसको गाना है माना हो तुम बेहद हसीन का, ये सुनकर ये
0: जी माना हो तुम बेहद हसीन। फिल्म का नाम बताइए। टूटे खिलौने। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

0: फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुने का पहला भाग अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है।

0: इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित हैं। डॉ जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबोन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में TVK ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंतकम सीट पर TVK आगे चल रही है। पुदुचेरी की तटान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हंड्रेड पॉइंट सेवन मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं, सुने कार्यक्रम विवरण। लीजिए फिर सुनिए फोन इन कार्यक्रम का दूसरा भाग। आप सुनेंगे 6:20 पर 7 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे जनसेवा से देश सेवा अभियान अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। गैर फिल्म गीत 7:20 पर सुनेंगे। चौपाल आपको सुनवाएंगे 7:30 पर, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्रीकरण अपनाएं। भविष्य के लिए जल बचाएं, सब्जियों के लिए टपक सिंचाई अपनाएं, नसीहत में सुनेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे विविध संगीत, रजनीगंधा लेकर आएंगे 10:30 पर। कल सुबह 6:05 पर

0: देश गान सुन सकेंगी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा 6:10 पर। 6:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम नारायण गवेल की कृषि रेडियो पाठशाला। रामचरितमानस की संगीत में प्रस्तुति 6:40 पर होगी। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा 6:50 का। चित्रपट संगीत लेकर आएंगे 7:05 पर। 7:35 का वक्त रहेगा झरोखा का। कार्यक्रम झरोखा में चर्चा का विषय रहेगा स्वस्थ मन खुशहाल जीवन का आधार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर 7:45 पर सुनिएगा। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत 10:10 पर सुन सकेंगे। 10:30 पर आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे। कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनेंगे। पॉप टाइम का समय रहेगा 5:10 का। 5:30 पर शहरी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार होगा, जिसमें आपस की बात का विषय रहेगा मानसिक स्वास्थ्य का रखे ध्यान विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। चर्चा में भारतीय डाक विश्वास और संपर्क की मिसाल राष्ट्रीय डाक दिवस। और सुनेंगे आपके पत्र आपके गीत। फिल्म संगीत 6:20 7:30 आप सुन सकेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी 7:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:00 विविध संगीत पेश करेंगे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी 10:30 पर प्रस्तुत करेंगे।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: संदेश पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। FM बैंड पर 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से छत्तीसगढ़ में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं, अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिक और पहली घाव मतदान करैया युवा मन के पंजीकरण पर विशेष अभियान चलाए जाते। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद पर होवैया परीक्षा ऊपर रोक लगा दे है और महासमुंद जिला में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स करीबन 2,80,00,000 रुपया कीमत के 5 क्विंटल ले ज्यादा गांजा जब्ती करे है। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिक और पहली घाव मतदान करे

0: या युवा मन के पंजीकरण पर विशेष अभियान चलाए जाते। अभियान के तहत हरेक हफ्ता बुधवार और गुरुवार के मतदान केंद्र मन में विशेष शिविर लगाए जाते। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ह आज रायपुर में पत्रकार मन ले चर्चा करत बताइन कि शुक्रवार और शनिवार के स्कूल आईटीआई पॉलिटेक्निक और दूसर शैक्षणिक संस्थान मन में युवा मतदाता मन के पंजीकरण पर शिविर लगाए जाते। शैक्षणिक संस्था मन में शिविर लगा के 17 बच्चर ले ज्यादा उम्र के युवा मन के पंजीकरण करे जाते। मतदाता सूची में नाम जुड़वाए बर पात्र नागरिक फार्म 6 भर के आवेदन कर सकत हैं। एखरबा निर्वाचन आयोग के मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम ले ऑनलाइन आवेदन करे जा सकत है। ऑफलाइन आवेदन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ करा जमा करे जा सकत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 और 23 अक्टूबर के छत्तीसगढ़ प्रवास में आहें। ए दौरान ओमन रायपुर में लोकभवन और बूढ़ापारा स्थित बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ली। संग्रह श्रीमती मुर्मू जगदलपुर के लालबाग मैदान में होवैया मुरिया दरबार और बस्तर दशहरा के मौका में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरा के तैयारी लले के मुख्य सचिव विकासशील के अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव है अधिकारी मल्ला सुरक्षा प्रोटोकॉल आवास स्वास्थ्य और परिवहन के व्यवस्था निर्धारित मापदंड के अनुसार सुनिश्चित करे के निर्देश दिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बस्तर सांसद महेश कश्यप के अगुवाई में बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल है सौजन्य भेंट करी। जगदलपुर ले आए प्रतिनिधिमंडल है मुख्यमंत्री ला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होए बर न्योता दिन। ये मौका में मुख्यमंत्री है कहिन कि बस्तर दशहरा केवल एक पर्व नहीं है बल्कि बस्तर के सदियों पुराना आस्था समृद्ध जनजातीय संस्कृति परंपरा और सामूहिक सहभागिता के अनुपम विरासत है। बता दें कि 75 दिन तक चलैया बस्तर दशहरा पर्व के शुभारंभ 12 अगस्त के पाट यात्रा पूजा विधान के संग हुईस। काली 10 अक्टूबर के काछनगादी पूजा 18 अक्टूबर के बेल पूजा और 23 अक्टूबर के मुरिया दरबार के आयोजन करे जाही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद पर होवैया परीक्षा ऊपर रोक लगा दे है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र के डिवीजन बेंच है इस संबंध में राज्य शासन ला नोटिस जारी करके जवाब पेश करे बर कहीन है। याचिकाकर्ता में शिक्षक और सहायक शिक्षक पद पर राज्य शासन को तिले जारी विज्ञापन में दे गए शर्त और आरक्षण रोस्टर ऊपर आपत्ति दर्ज करा हाईकोर्ट में याचिका लगाए है। याचिकाकर्ता मन को तिले कहे गए है कि राज्य शासन डहर ले जारी विज्ञापन में दिव्यांग मन पर जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक हुए है और एमा पूरा तरह ले दृष्टिबाधित लोकन मन के आरक्षण के व्यवस्था नहीं कर गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन के युवा मन के सक्रिय भागीदारी ले विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण होही। ओमन आज रायपुर में मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के दूसर बैच के 36 जिन युवा प्रतिभागी मन ले गोट बात करिन। दो बच्चर के फेलोशिप में युवा आईआईएम रायपुर में प्रशिक्षण ली और जिला मन में योजना के क्रियान्वयन के अनुभव ली। आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले जन सेवा से देश सेवा के तहत विशेष कार्यक्रम के श्रृंखला प्रसारित करे जा थे। यही कड़ी में आज संध्या 7 बजे सेमी कंडक्टर मिशन में उद्योग संचालनालय के उपसंचालक अमय त्रिपाठी ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जा। कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले कर ही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो माचे समाचार कोती। सुकमा जिला में काली विस्फोटक मल्ला निष्क्रिय करे के दौरान हुए हादसा में CRPF के 4 जिन जवान घायल हो गए हैं। मिले जानकारी के अनुसार काली सुकमा जिला के भेज्जी थाना क्षेत्र के अलार्म डगू कैंप करा बोधराज पदर नाला तीर एम्यूनेशन टेक्नीशियन टीम और CRPF जवान बारूदी सुरंगला सुरक्षित तरीका ले निष्क्रिय करे के प्रक्रिया में लगे रहीं।

0: इही दौरान हादसा हो गए जेमां चार झीन जवान घायल हो गए। एमा ले एक के हालत गंभीर है। जम्मू घायल जवान मन ल हैदराबाद रेफर करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ए घटना ऊपर गहरा दुख जताइन है। ओमन घायल जवान मन के जल्दी स्वस्थ होए के कामना करिन है। राज्यपाल रमेंडे कहा आज बिलासपुर में 26वां राज्य स्तरीय सब जूनियर और कैडेट जूडो चैंपियनशिप के शुभारंभ करिन। ओमन कहिन के जूडो साहस आत्मसंयम और अनुशासन विकसित करे के माध्यम है। प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 जिला के 240 खिलाड़ी और प्रशिक्षक हिस्सा लेवत हैं। आज विश्व डाक दिवस है। ए मौका में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया डाक सेवक मन शुभकामना दिन है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया कहिन के डाक सेवा जनसेवा है। ओमन कहिन के डिजिटल संचार के ए युग में भारतीय डाक सेवा लोगन मन के आकांक्षा ला पूरा करे बर बदलाव के प्रयास करत है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल में आज ले राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाए जाते। ए बछर के थीम है वन पोस्टल नेटवर्क इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ए दौरान डाक विभाग डहाले जन जागरूकता रैली, रक्तदान शिविर, विद्यार्थी मन पर डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करे जाते। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर हरेक विश्वविद्यालय में एनईपी सेल के गठन करे जाही। संग्रह संभाग और जिला स्तर में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यशाला आयोजित करे जाही। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा मंत्रालय में रखे गए समीक्षा बैठक में अधिकारी मन ला ए निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ के फुटबॉलर किरण पिस्दा के भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में चयन हुए है। किरण बालोद जिला के आदिवासी परिवार ले हवें। उमन 11 अक्टूबर के कोलकाता के किशोर भारती क्रीडांगन में रूस के खिलाफ होवैया अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैच के सीरीज में भारतीय टीम के हिस्सा होही। इमाले एक थीन मैच 8 अक्टूबर के खेले गए है। महासमुंद जिला में पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स 5 कुंटल ले ज्यादा गांजा जब्ती करे है। जब्ती गांजा के कीमत लगभग 2,80,00,000 रूपया बताए गए है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में ग्राम रेहटी खोलकर एक ठीन ट्रक के तलाशी के दौरान कैरेट के नीचे लुकागे रखे गए 16 ठीन बोरा ले गांजा जब्ती करेगी। पुलिस के अनुसार गांजा ओडिशा ले छत्तीसगढ़ के रद्दा ले महाराष्ट्र ले जाया जात रहीस। मामला में महाराष्ट्र के 2 आरोपी ल गिरफ्तार करे है। सुनैया मल्ल बता दन के समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इधरी नक्सलवाद खत्म होए के बाद बस्तर संभाग में आत्मसमर्पित माओवादी मन के पुनर्वास पर करे जात काम ऊपर केंद्रित रही। एक कार्यक्रम में नारायणपुर जिला में आत्मसमर्पित माओवादी मन ला दे जात कला और रंगमंच के प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करे जाही। कार्यक्रम के प्रसारण काली 10 अक्टूबर के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहरले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घौं फेर। प्रदेश में मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिक और पहली घौं मतदान करैया युवा मन के पंजीकरण पर विशेष अभियान चलाए जाते। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद पर होवैया परीक्षा ऊपर रोक लगा दे है और महासमुंद जिला में पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स करीबन 2,80,00,000 रूपया कीमत के 5 कुंटल ले ज्यादा गांजा जब्ती करे है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का शेष भाग।
2: हेलो
3: जी सर नमस्कार।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: ग्राम सहसपुरी से चंपत लाल पटेल जी बोल रहे हैं सर।
2: चंपत लाल पटेल जी सहसपुरी से, क्या करते हैं?
3: छोटा सा किसान हूँ।
2: तो अभी क्या लगा है आपके खेत में?
3: पूरा फसल धान लगा है।
2: तो अभी फसल कैसी है?
3: जा रहा हूँ सर।
2: अच्छा, पानी डालने जा रहे हैं? फसल अच्छी हुई इस बार?
3: बहुत अच्छा पछताने के लायक हुआ है, लेकिन क्या करें, बारिश कमी
2: है। अच्छा,
3: दवा सब खर्चा उचा को खाद वाद डाल के रेडी कर दिया, लेकिन पानी भी ना क्या करें,
2: पानी कम हो गया। अच्छा, चलिए उम्मीद करते हैं कि अभी और बारिश हो एक आध बार, आपको आपके लिए पर्याप्त पानी मिल जाए।
3: दुर्गा जी अब स्थापना करेंगे तो बीच में डाल दे तो अच्छा होता।
2: जी जी, अब उम्मीद ही कर सकते हैं चंपत लाल जी।
3: उन्हीं के हाथ में है सबका जी।
2: जी, आज की फरमाइश क्या है आपकी?
3: जी,

0: कौन सा प्यार भरा दिल तोड़ दिया वाला
1: जी, मुकेश जी की आवाज में ये गीत है।
0: मुकेश जी की आवाज में
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए, हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो
1: हाँ सर नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: परमेश्वर बोल रहा हूँ सर, संगीत राय से।
0: परमेश्वर?
1: हाँ सर
0: पूरा नाम बताइए।
1: परमेश्वर सिद्धार्थ,
0: परमेश्वर सिदार, डोंगी तराई।
1: संगीत राय से,
0: कहाँ पर है आपका गांव? ये डोंगी तराई
1: मुक्तेपुर के पास में,
0: बुबदेवपुर के पास है। और क्या करते हैं आप परमेश्वर जी?
1: रोजी मजदूरी करते।
0: और रेडियो के कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं, आकाशवाणी रायगढ़?
1: बहुत समय से सर, 10-15-20 साल हो गए।
0: अच्छा, 15-20 साल से सुन रहे हैं। और परिवार में कौन कौन है आपके यहाँ? अच्छा, सभी लोग सुनते हैं कार्यक्रम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रायगढ़ से। आज कौन सा गीत सुनाएं आपको? मुस्कान का जाने मन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनाते हैं आपको ये गीत।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: हेलो
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: जी, नमस्कार।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर
0: लोकेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए। मैं
1: जी, सर जी, आपके प्रोग्राम की सारी अपडेट सर मुझे फेसबुक पेज के माध्यम से मिलती है,
0: जी
1: क्योंकि अब तो आकाशवाणी के जितने भी केंद्र हैं सभी अपनी अपडेट कार्यक्रमों की फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो आज मुझे आपके कार्यक्रम की जानकारी लगी। पहले आज से 1 साल या 6 महीने पहले मेरा फोन लगा था, आज फिर कनेक्ट हुआ है सर।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे दोबारा बात हो रही है और हम ये चाहेंगे कि आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। और
1: बिल्कुल
0: लोकेंद्र जी, समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम हमारे सारे प्रोग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करते हैं।
1: जी, बिल्कुल सर जी। समय समय जैसे आजकल आपने देखा होगा, डिजिटल भारत है, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। जैसे आप मोबाइल के माध्यम से पैसे यूपीआई से किधर भी पहुंचा सकते हो, आपका कोई आधार कार्ड का अपडेट कराना हो या कोई, सब डिजिटल आजकल, मतलब डिजिटल भारत अब आधुनिक युग इतना आ गया है, तो उसके साथ में तो इंसान को अपडेट होना बहुत ही जरूरी है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए, आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी सर, ये जूली फिल्म का गाना सुना है सर, टाइटल सॉन्ग मुझे।
0: जूली का टाइटल।
1: हाँ जी, वो ना कुछ तेरे बस में जूली गाना
0: जी
1: है
0: जी
1: ना सर।
0: दिल क्या करे जब किसी से।
1: हाँ, दिल क्या करे सर जी।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए,
1: जी
0: और
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो, कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी क्या करते हैं?
1: सर खेती किसानी का काम है मेरा।
0: अच्छा
1: जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अच्छा, भजन गाते भी हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, हमारा 8 लोगों का ग्रुप है
0: जी,
1: उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बारी बारी से बजाते हैं, और एक ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है प्रेम सिंह जी, गीत संगीत से जुड़े हैं आप और गाते भी हैं, सुनते भी हैं, बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है।
1: अच्छा, तो मैं 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले रेडियो पर सुनता था 2019 तक, और फिर कोरोना टाइम के बाद में कुछ समय के लिए कार्यक्रम को रोक दिए गए थे आकाशवाणी केंद्र के,
0: जी,
1: और उसके बाद में फिर 2026 में मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: तो अब आपसे आपकी फरमाइश जानना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनवाए?
1: जी, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे, और गाने के बोले तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है प्रेम सिंह जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। हम सुनाते हैं आपको ये गीत।
1: जी धन्यवाद, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम, लीजिए फिर सुनिए। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राम विलास पटेल का, तकनीकी सहयोग टेकराम गोड़ का, कार्यक्रम का संचालन किया मैंने यानी आपके दोस्त रमाशंकर शुक्ला ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद। तो अब मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनने का शेष भाग अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 होने वाले हैं, कुछ पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: से हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रायोजित अभी आप सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
3: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा

0: करना, बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एनईपी सेल का गठन किया जाएगा और महासमुंद पुलिस ने करीब 2,80,00,000 रुपए कीमत का 5 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक सप्ताह बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि शुक्रवार और शनिवार को स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में शिविर लगाकर 17 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं का पंजीकरण किया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र नागरिक फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग के मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगी। इस दौरान वे रायपुर में लोकभवन और बूढ़ापारा स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। साथ ही श्रीमती मुर्मू जगदलपुर के लालबाग मैदान में होने वाले मुरिया दरबार और बस्तर दशहरा के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के इस प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल, आवास, स्वास्थ्य और परिवहन की व्यवस्थाएं निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश

0: निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बस्तर सांसद महेश कश्यप के नेतृत्व में बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। जगदलपुर से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि बस्तर की सदियों पुरानी आस्था, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और सामूहिक सहभागिता की अनुपम विरासत है। गौरतलब है कि 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा पर्व का शुभारंभ 12 अगस्त को पाट जात्रा पूजा विधान के साथ हुआ। कल 10 अक्टूबर को काछनगादी पूजा, 18 अक्टूबर को बेल पूजा तथा 23 अक्टूबर को मुरिया दरबार का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। उन्होंने आज रायपुर में मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के दूसरे बैच के 36 युवा प्रतिभागियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को निष्ठा और ईमानदारी से काम करने तथा जन कल्याण को प्राथमिकता देने की सलाह दी। 2 वर्षीय फेलोशिप के तहत युवा IIM रायपुर में प्रशिक्षण लेंगे और जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने इस संबंध में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक और सहायक शिक्षक पद के लिए राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक हुई है और इसमें पूरी तरह से दृष्टिबाधित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में NEP सेल का गठन किया जाएगा। साथ ही संभाग और जिला स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। आज विश्व डाक दिवस है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल में आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है वन पोस्टल नेटवर्क इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इस दौरान डाक विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली, रक्तदान शिविर, विद्यार्थियों के लिए डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं डाक चौपाल के माध्यम से बचत योजनाओं, डाक जीवन बीमा और आधार सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से परिभाषित होती है जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम ऐसी ही एक पहल के बारे में बता रहे हैं जिसमें इस सोच को अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से धरातल पर उतारा गया है।
1: देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का अटल इनोवेशन मिशन महत्वपूर्ण पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत संचालित इस मिशन का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना है। इसके तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही है, जहां विद्यार्थी विज्ञान, रोबोटिक्स और नई तकनीकों के माध्यम से अपने विचारों को प्रयोगों और नए मॉडलों में बदल सकते हैं। जून 2026 तक देश भर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा चुकी है। इनसे 1,10,00,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 10 स्थित स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, त्रिआयामी प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सीखने का अवसर दे रही है। ये प्रयास विद्यार्थियों और युवाओं को नए विचारों को उपयोगी तकनीक और उद्यम में बदलने के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर।
0: आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा जनसेवा से देश सेवा के तहत विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसी कड़ी में आज शाम 7 बजे सेमीकंडक्टर मिशन पर उद्योग संचालनालय के उपसंचालक अमय त्रिपाठी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राज्यपाल रमन डेका ने आज बिलासपुर में 26वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और कैडेट जूडो चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जूडो साहस, आत्मसंयम और अनुशासन विकसित करने का माध्यम है।

0: प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 जिलों के 240 खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने खिलाड़ियों को मेहनत करने और हार से सीख लेकर आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ की फुटबॉलर किरण पिस्ता का भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। किरण बालोद जिले के आदिवासी परिवार से आती हैं। वे 11 अक्टूबर को कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में रूस के खिलाफ होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैचों की सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। इनमें से एक मैच 8 अक्टूबर को खेला गया है। महासमुंद जिले में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 5 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 2,80,00,000 रुपए आंकी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर ग्राम रहटी खोल के पास एक ट्रक की तलाशी के दौरान कैरेटों के नीचे छिपा कर रखी गई 16 बोरियों से गांजा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार गांजा ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। मामले में महाराष्ट्र के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर संभाग में आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे कार्यों पर केंद्रित रहेगा। इस कार्यक्रम में नारायणपुर जिले में आत्मसमर्पित माओवादियों को दिए जा रहे कला तथा रंगमंच के प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का प्रसारण कल 10 अक्टूबर को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन अभियान को गति देने के लिए जोश टीम का राज्य स्तरीय शुभारंभ खड़गवां में किया। सुकमा जिले के भेजी क्षेत्र में कल विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के दौरान हुए हादसे में CRPF के 4 जवान घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। और कबीरधाम जिले में भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल से किया जा रहा आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस कारण रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 72 घंटे से आवागमन प्रभावित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में NEP सेल का गठन किया जाएगा। और महासमुंद पुलिस ने करीब 2,80,00,000 रूपये कीमत का 5 क्विंटल से अधिक गांजा जब्त किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम सेमीकंडक्टर मिशन। विशेषज्ञ हैं अमय त्रिपाठी, उपसंचालक उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन। ये कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।
2: श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से परिभाषित होती है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। श्रोताओं, आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम ऐसी ही एक पहल के बारे में बता रहे हैं, जिसमें इस सोच को सेमी कंडक्टर मिशन के माध्यम से धरातल पर उतारा गया है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ शासन में उद्योग संचालनालय के उप संचालक श्री अमय त्रिपाठी। अमय जी, एक बार फिर हम आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी अमय जी, हमने इससे पहले बात की थी इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आपके साथ में, और आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर मिशन पर। तो हमारे श्रोताओं को सबसे पहले तो ये बताएं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की, तो क्यों इसकी आवश्यकता, इस मिशन को शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और इस मिशन के पीछे क्या उद्देश्य है?
0: आज के डिजिटल युग में जहां हर चीज पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर है, जो ये मोबाइल से लेकर कंप्यूटर्स या ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का आधार है सेमीकंडक्टर
1: जी।
0: तो वर्तमान में सेमीकंडक्टर के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है चाइना और फिर है ताइवान
1: जी।
0: तो ये सबसे बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं। परंतु कोविड पीरियड के बाद देश में यह आवश्यकता महसूस की गई कि जो भी देश की सबसे जरूरत की चीजें हैं उनमें हमें आत्मनिर्भर होना आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
0: और इसी के चलते यह महसूस किया गया कि सेमीकंडक्टर भी यदि भारत में मैन्युफैक्चर होंगे तो उससे देश की आत्मनिर्भरता काफी मजबूत होगी और देश की डिपेंडेंसी जो है बाकी कंट्रीज पे वो कम होगी। तो इसलिए जो विश्व के बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर हैं उनको भारत में आकर्षित करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई
1: जी। अमय जी, आसान शब्दों में थोड़ा सा ये भी हमारे श्रोताओं को बताने की कोशिश कीजिएगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक जो हम वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो इनकी क्या भूमिका होती है सेमीकंडक्टर्स की?
0: यदि हम बेसिक विज्ञान की बात करें तो कोई भी कंडक्टर या सुचालक क्या होते हैं जिससे बिजली आसानी से पास हो जाए
1: जी,
0: और इंसुलेटर या कुचालक ये होते हैं जिससे बिजली पास ना हो।
1: बिल्कुल।
0: सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच के होते हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल करना आसान होता है और ये जो करंट का फ्लो है उसका कंट्रोल करना यही पूरे इलेक्ट्रॉनिक जगत का आधार है। तो जो सेमीकंडक्टर्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के, और जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती है उसमें सेमीकंडक्टर की यही प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो कंट्रोल करके ये चिप निर्माण का आधार होता है, और वो चिप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जिससे हमारे जो मोबाइल है वो चलते हैं, कंप्यूटर्स चलते हैं, जितने कंट्रोल रूम्स हैं वो चलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती हैं, तो इन सभी का आधार सेमीकंडक्टर है।
1: अमय जी, एक देश के रूप में यदि हम बात करें तो भारत के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देखें या रणनीतिक रूप से, कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, इसमें दो कंपोनेंट लेते हैं। यदि आप आर्थिक की बात करें
1: जी,
0: तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी भी प्रोडक्ट का हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके जगह हम यहाँ बनाते हैं उसको, तो उसकी कॉस्ट काफी कम होती है। उसकी कॉस्ट कम होगी तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहे हैं उनकी कॉस्ट कम होगी
1: जी,
0: और वो हमारे उपभोक्ताओं को भी कम दाम पर मिल सकते हैं, प्लस हम उसको दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिससे देश के फॉरेक्स में वृद्धि होगी। तो ये एक आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने की बात है यदि हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर करते हैं। रणनीतिक रूप से अभी तक मैंने बात की सेमीकंडक्टर मोबाइल फोन कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं, आज मॉडर्न वॉरफेयर में जितने आपके हथियार हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, मिसाइल्स हो,
1: ड्रोन्स
0: या ड्रोन्स हो, सब में आपको चिप लगेगी और उसका आधार है सेमीकंडक्टर। सो यदि उसकी सप्लाईज आप इंश्योर कर रहे हैं देश के अंदर तो स्ट्रेटेजिक रूप से भी आप आत्मनिर्भर होते हैं। हम जैसे ऑयल की बात करें तो मिडिल ईस्ट में यदि वॉर हुआ और हमारे पास ऑयल की डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट से है तो ऑयल क्राइसिस यहाँ पे आ रही थी या एलपीजी क्राइसिस आ रही थी, ऐसे ही यदि मान लीजिए कभी सेमीकंडक्टर सप्लाई बंद हो और सेमीकंडक्टर क्राइसिस आए तो हमारा पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो मोबाइल फोन से वो महंगे हो जाएंगे, जो ईवीज है वो महंगी हो जाएंगी। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे हम इसमें आत्मनिर्भर बने रहे, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देश को रहे
1: जी। और मुझे लगता है कि एक आयाम ये भी है कि जो आजकल हम जियोपॉलिटिकल स्थिति देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो आपने ये तो बात की कि सप्लाई बाधित होती है, कहीं पर यदि कोई तनाव होता है या युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, उसके अलावा एक बात और भी दिखने में आ रही है, यदि किसी देश के पास में किसी उत्पाद की मोनोपोली है या उसकी तकनीक है और किसी दूसरे देशों की उस पर निर्भरता है तो वो अपने उस उत्पाद या तकनीक को भी अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने लगा।
0: जी बिल्कुल
1: जी, तो हमें उससे भी बचने के लिए आत्मनिर्भर,
0: जब हम आत्मनिर्भर है तो हमारी डिपेंडेंस दूसरों पर कम होगी
1: जी,
0: और फिर वो जैसा कि आपने बोला उसको हथियार के रूप में उपयोग नहीं कर पाएंगे
1: जी जी जी। अमित जी, हमें ये बताएं कि यदि हम भारत देश की बात करें तो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत हमारे देश में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण और इसके अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रमुख पहल की गई हैं या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं?
0: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सेमीकंडक्टर विनिर्माण के सभी कंपोनेंट्स को लिया गया है, यानी उसकी डिजाइनिंग, उसका फैब्रिकेशन, उसकी पैकेजिंग, टेस्टिंग और उसके रिसर्च, यानी पूरा एक इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के जितने स्टेजेस हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सभी को

0: कवर करता है, और इसमें जो स्किलिंग कंपोनेंट है और रिसर्च कंपोनेंट है उसको भी कवर करता है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत यदि कोई इंडस्ट्री इसके अंतर्गत अप्लाई करती है और एलिजिबल होती है तो उसको 50% तक जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रही है इंसेंटिव के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है।
1: जी, एक बात और बताएं कि सेमीकंडक्टर यदि हम उद्योग की बात करें, आपने तो बताया कि किस तरह के मिशन के अंतर्गत क्या पहल की गई है, इसमें रोजगार के कितने अवसर पैदा होने की उम्मीद है? क्योंकि जो हमारे युवा वर्ग है वो ये देखता है कि यदि कोई उद्योग लग रहा है तो उसके लिए उसमें क्या संभावनाएं हैं। तो यदि हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमारे, क्योंकि देश में जो है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बहुत सारे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बहुत अच्छी प्रतिभाएं हमारे देश में मौजूद हैं, तो उनके लिए क्या अवसर पैदा हो सकते हैं इस मिशन के तहत?
0: जैसा कि हमारे देश में काफी इंजीनियर युवा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में अपना योगदान दे सकते हैं, तो इसमें जो सेमीकंडक्टर मिशन है या भारत में सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना है वो इन युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो एक डिजाइनिंग पार्ट है जिसमें ये डिजाइनिंग की जाती है कि आपकी चिप कैसे रहेगी, उस चिप की डिजाइनिंग होगी, फिर वो जो डिजाइनिंग है उसको आपको इम्प्रिंट करना है चिप के ऊपर, उसके अलावा जो सेमीकंडक्टर है उसका फैब्रिकेशन है, बन के तैयार हो गया उसकी टेस्टिंग है, और इन सब के ऊपर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि आपको कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहना है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बना सके। तो इन सभी में जो देश के युवा है उनके लिए काफी ज्यादा अवसर है रोजगार के, और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो हाई पेइंग जॉब्स से लेके जो रेगुलर जॉब्स है सभी ऑफर करती है, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लाइक एनी अदर इंडस्ट्री आपको टॉप एंड पे भी लोग चाहिए जो रिसर्च और डिजाइनिंग वाला पार्ट हैंडल करे, और आपको ऐसे स्किल्ड लोग भी चाहिए जो उसको इम्प्लीमेंट करे और जो फैब्रिकेशन के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको प्रॉपर बैठा के एक पैकेजिंग के स्टेज तक ले जा सके। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सभी तरह के स्किल्ड जो युवा है भले वो इंजीनियर हो या उन्होंने पॉलिटेक्निक के थ्रू सीखा हो, उन सभी के लिए काफी रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
1: जी, ये तो आपने बात की अमय जी राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत में क्या हो रहा है। यदि हम अपने राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य में सेमीकंडक्टर और इससे जुड़े, जैसा आपने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल के दिनों में क्या कदम उठाए हैं?
0: जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से लागू की है।
1: जी,
0: इस नीति में जो नए सेक्टर्स हैं उनके लिए विशेष पैकेज जारी किए गए हैं, तो इसी तरह एक विशेष पैकेज जारी किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए जिसके अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज भी आती है।
1: जी,
0: तो इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को छत्तीसगढ़ सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अलावा, यानी वहां जो इंसेंटिव मिल रहे हैं वो तो उनको मिलेंगे ही, उसके अलावा राज्य में कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है तो उनको 35% कैपिटल सब्सिडी दिया जा रहा है, और फिर जितना वो एम्प्लॉयमेंट देंगे उस आधार पर उनकी सब्सिडी बढ़ती जाएगी।
1: जी,
0: फॉर एग्जाम्पल यदि वो 100 लोग को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो ये 35 की जगह 38.5 हो जाएगी, से यदि वो 1000 लोग को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो 35% की जगह उनको 52.5% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, इसके अलावा उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत ही नवीन पहल की है जो कि बाकी राज्यों में नहीं है अभी, कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री राज्य की युवाओं को जो रोजगार देंगी,
1: जी,
0: तो राज्य सरकार उनको जो वेतन मिल रहा है उसका 20% 5 साल तक इंडस्ट्री को रीइंबर्स करेंगे।
1: जी,
0: तो इससे ये होगा कि जो हाई स्किल जॉब है वो भी छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को मिलेंगे और उनको सीखने का नया अवसर मिलेगा।
1: अमय जी बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य के यदि हम बात करें तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से जो है वो स्टील उद्योग, कोयला, मिनरल, इसके लिए ही जाना जाता रहा है। सेमीकंडक्टर एक बहुत नई चीज है, बड़ा एक नया उद्योग है, इसकी छत्तीसगढ़ में कितनी संभावना है इस तरह के उद्योग की, और क्यों कोई व्यक्ति आके सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे निवेश करेगा ये बताएं।
0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक इन्वेस्टर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल,
0: उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो।
1: जी,
0: हम एक पावर सरप्लस स्टेट है, हम दूसरे राज्यों को पावर देते हैं, तो हम यहाँ पे उनको कमिट कर पा रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देंगे।
1: जी,
0: दूसरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि वो जिस क्षेत्र में लग रही है वहां नेचुरल कैलेमिटीज ना हो।
1: जी,
0: छत्तीसगढ़ बहुत ही लो सिस्मिक जोन में है, यहाँ अर्थक्वेक्स नहीं आते, यहाँ फ्लड्स नहीं होती, हम सी के किनारे नहीं है, यानी सुनामी या किसी भी तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं छत्तीसगढ़ उनसे काफी इम्यून है।
1: जी,
0: ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है। तीसरा, यहाँ पे यदि कोई इंडस्ट्री स्थापित हो रही है तो हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हम चारों दिशाओं में सप्लाई कर सकते हैं।
1: जी,
0: तो ये तीनों चीजें निवेशक को पूरा भरोसा देती है कि उसको पावर अनइंटरप्टेड मिलेगा।
1: जी,
0: उसको किसी प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा,

0: और वो कहीं भी सप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ सालों से यहाँ जो भी इंडस्ट्री रही, एक उदाहरण के रूप में आया है कि यहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं है
1: जी,
0: तो कोई भी निवेशक यहाँ आके बहुत ही आराम से अपनी इंडस्ट्री चला सकता है। तो ये एडवांटेजेस हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ऑफर कर रहे हैं। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर के लिए एक SEZ डिक्लेयर हुआ है नया रायपुर में
1: जी,
0: जिसमें लगभग 11,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं। तो यह दिखाता है कि छत्तीसगढ़ एक भरोसेमंद जगह है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए।
1: बहुत अच्छी तरह से आपने इसका बताया है, वर्णन किया है इसका। अंत में अमय जी हम ये पूछना चाहेंगे, आपने ये तो बताया कि कोई भी ऐसा निवेशक या उद्योग जो छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर पर आधारित उद्योग लगाना चाहता है, उसका विनिर्माण करना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? जैसे आपने बताया भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, यहाँ पर संसाधन हैं, निर्बाध बिजली की आपूर्ति है। एक चीज़ और होती है, वो है मानव संसाधन। किसी भी उद्योग के लिए एक स्किल्ड या दक्ष मानव संसाधन की बात होती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा जब उद्योग आएगा तो उसको मानव संसाधन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो हमारे युवा हैं या जो यहाँ पर तकनीकी संस्थान हैं, उनको ऐसे मानव संसाधन तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कोई विशेष प्रशिक्षण या कौशल विकास का कोई कार्यक्रम, इसके बारे में बताएं।
0: इसमें जैसे कि दो अलग लेवल पे इसको समझे, एक है जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं
1: जी,
0: तो हमारे यहाँ IIT है, NIT है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां से युवा पास आउट हो रहे हैं
1: जी,
0: और उनको यहाँ पे ट्रेनिंग और जॉब की आवश्यकता पड़ेगी
1: जी।
0: दूसरा है जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं बट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को उनकी भी जरूरत है और वो भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अनुरूप कौशल प्राप्त करके उसमें नौकरी कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं। एक, हाल ही में सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन लागू किया है। निपुण मिशन के अंतर्गत जो युवा है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको कंपनियों में नौकरी लगवाई जाएगी
1: जी,
0: और उसके लिए जो एम्प्लॉयर है उनको रीइंबर्समेंट किया जाएगा। तो इससे यहाँ के जो युवा है उनकी संभावना बढ़ेगी कि ऑन जॉब वो काम सीख सकें। इसके अलावा जो राज्य की औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है जो हमारे नवीन सेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई संस्था यहाँ पे स्किल सेंटर स्थापित करती है तो उसको एक सेवा इकाई के रूप में हम इंसेंटिवाइज करेंगे, कैपिटल सब्सिडी एंड अदर सब्सिडीज देंगे। तो इससे जो स्किल डेवलपमेंट में स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट में यदि इन्वेस्टमेंट आता है तो उससे राज्य के युवाओं को काफी फायदा होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमय त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही आसान तरीके से जटिल विषय को हमारे श्रोताओं को बताया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक बड़ी तकनीकी चीज़ है, लेकिन आपने न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी दी बल्कि बहुत ही समग्रता के साथ में पूरे 360 डिग्री से हमारे श्रोताओं को इस पूरे सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बताया। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे सेमीकंडक्टर मिशन पर छत्तीसगढ़ शासन में उद्योग संचालनालय के उप संचालक श्री अमय त्रिपाठी जी के साथ में हमारी ये बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।

0: जनसेवा से देश सेवा अभियान अंतर्गत विशेष कार्यक्रम सेमीकंडक्टर मिशन आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अभी हम रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनिए कार्यक्रम विवरण 7:30 पर चौपाल लेकर आएंगे, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्रीकरण अपनाएं। नसीहत में सुनेंगे भविष्य के लिए जल बचाएं, सब्जियों के लिए टपक सिंचाई अपनाएं। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 10 का समय रहेगा विविध संगीत का, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे। 9 विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी

0: डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
8: श्रोता हूँ, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, 7:30 पर चौपाल लेकर आएंगे, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए यंत्रीकरण अपनाएं। नसीहत में आप सुनेंगे भविष्य के लिए जल बचाएं, सब्जियों के लिए टपक सिंचाई अपनाएं। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत, राजन बत्रा के स्वर संगीत और रचना में सुनिए इस गाने को।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गरिमा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
3: कुबोटा ट्रैक्टर दे रहा है 8 साल का सुपर वारंटी, जिसमें 42 HP से 55 HP तक के 4-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव उपलब्ध है। चेन हार्वेस्टर में 3 साल की सुपर वारंटी मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पता माँ अंबिका ट्रैक्टर्स, जोरापाली रोड, रायगढ़। फोन कीजिए 9977056369 पर।

0: स्टेबिन की आवाज़ में आप सुन रहे थे इस गाने को, जिसे लिखा था मीर ने, धुन बनाई थी हरीश सगाने ने। इसके साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
2: प्योर एंड सेफ गर्मा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 10.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है संगवारी हो। और आज हवे हमर लोकगीत ई क्रम में मोर हाथ में हवे ईमेल जो हमर श्रोता संगवारी मन लिख के भेजीन है। ए मन हवे महामाया चौक मेघा पारले रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल टेक लाल पटेल। आउ संगवारी हो देखा आउ संगवारी मन लिख के भेजी ने ईमेल भेजी ने मन हावे चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र

डॉक्टर रौनक खुशी सेन और मेघापारा लोरमी ले हवे टेक लाल पटेल, मोहर राम पटेल, कुमैतीन बाई पटेल, जगबाई पटेल, सीमा पटेल, रीना पटेल। जिला मुंगेली ग्राम सहसपुर ले हवे छुटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, राम किशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू, सत्यम और पद्मा टागिच नेपा नगर मध्य प्रदेश, सुदर्शन साह, पल्लवी साह, प्रखर साह, कुशल साह, नीति साह, सुरभि साह, अश्वनी साह, मंगला बेन साह, राजेन जी साह और कुर्मा जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ ले लिख के ईमेल करी ने हमारे संगवारी मन ते मन हावे दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मिरी, बागबाहरा बदरसी ले हावे पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन औ संगवारी हो औच हमर संगवारी मन ईमेल करी ने ते मन हावे आर्य नगर कोहका भेलाई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी धमधा ग्राम सुखरी कला ले हावे अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषी ओशिका, आरवी जंघेल, अंजलि जंघेल और संगवारी हो एमन ईमेल के माध्यम ले अपन के मन पसंद हमर लोग गीत के फरमाइश करीन है और गीत के बोल हावे दिन के सूरज देवता तो संगवारी हो देखा आप मन सुग्घर अकन गीत के फरमाइश करे है तो आवाज सुनी आप मन के ईमेल फरमाइश ये लोक गीत ला।

रानी गांव नगरी जिला धमतरी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू और मनकी लोरमी ले हावे नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे, समीर खांडे, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ले हावे महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, नानघाट कातल बोर्ड ले हावे भागसी राजपूत, भाग्यशरी टिकेश्वर रितु राजपूत, पलारी छत्तीसगढ़ ले हावे नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद ले हावे जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवस दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी। असंगवारी हो देखा है मन गीत के फरमाइश करीन है कदेवा ओकर का कथे बोल हावे कैसे करो मया के बखान।

आउ संगवारी देखो इस क्रम में आउ हमर संगवारी मन ईमेल करके हमन ला भेजिन हे। ए मन हावे माँ बमलेश्वरी धाम रेडियो श्रोता संघ साकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले हावे नारायण लाल साहू कुलवंतिन देवी साहू दिवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी साहू आउ मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार साहू रुद्रांश प्रताप साहू आउ भेजिन हे मन आमा खोड़रा रेंगा खार जिला कबीर धाम ले हावे देवी सिंह नेताम राजन सिंह नेताम दक्ष प्रिया गीता सरगम नेताम हटौद बाजार लाहौद ले हावे कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर पटेल राजकुमारी पटेल आउ संगवारी हो देखा आउ संगवारी मन हमन के चिट्ठी घलो भेजिन है लिख के ए मन हावे छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेन्द्र कुमार वर्मा आउ संगवारी मन है जो मन चिट्ठी लिख के भेजिन है कदेवा ए मन हावे पटेल नगर मलोट पंजाब ले रमेश कुमार जाजोरिया गीतारानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया बेबी आरजू जाजोरिया एक ठी चिट्ठी आउ चाहिए है संगवारी हो ए मन लिखने जेल पारा रायगढ़ ले विनोद कुमार गुप्ता नेहा यशु अंशु गुप्ता तो संगवारी हो आवाज सुनिए मन के फरमाइसी हमर लोकगीत ला।

था संगवारी हो देखा आओ हमारे संगवारी मन ईमेल करी थे आओ ए मन हावे बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ ले हावे शिव प्रसाद देवदास मोहित कुमार देवदास ओमिन उत्तरा प्रमिला यमुना जमुना कुमारी अंजू मंजू और कुमारी युवति देवदास और इच गीत के पसंद करविया हमार आउ संगवारी मन हावे ते मन लिख के भेजीन है गोमड्डा पोस्ट सुरे गांव तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ ले ए मन हावे देव प्रसाद देवदास राम अवतार देवदास सोनू मोनू और कुमारी अललेश्वरी देवदास और संगवारी मन लिख के भेजी ने खमरिया बिलासपुर ले साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार हटरी चौक बिलाईगढ़ ले हावे खीक राम देवांगन रजनी देवांगन प्रियंका देवांगन रेणु देवांगन धमनी राजीम ले हावे समेलाल धीवर मुन्नी धीवर गोविंद धीवर ममता धीवर कुणाल धीवर युवांश धीवर नेहरू वार्ड भाटापारा ले हावे प्रेमलाल साहू भूपेंद्र साहू दुष्यंत साहू राघवेंद्र साहू और अनूपपुर मध्य प्रदेश ले हावे जयमंत्री कृष्णा केवट राम भाटा रायगढ़ ले हावे रोहित जय लक्ष्मी और चिट्ठी दिन है संगवारी हो हमारा आउ संगवारी मन लिख के भेजी ने अमरपुर पेंड्रा ले हावे दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव और इच गीत के फरमाइश करीन है झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ ले लक्ष्मण वाधवानी श्रीमती विमला वाधवानी मास्टर हर्ष खुशी और शुभम वाधवानी तो संगवारी हो देखा एमन बैताल राम साहू के स्वर मा गीत के फरमाइश करीन है और गीत के बोल हावे संगवारी हो तय मोर संग रहबे तो खाबे नून चटनी तो संगवारी हो आवाज सुनिए मन के फरमाइशी हमार लोक गीत ला।

ता संगवारी हो देखा आउच हमर संगवारी मन ईमेल भेजी ने का देवा ए हर हावे श्रोता संगवारी रोहांसी पलारी जिला बालौद बाजार ले हावे श्याम साहू युवराज साहू और चिट्ठी लिख के भेजी ने श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव मिथलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन बेमेतरा ले हावे सुरेश सारथी पूर्णिमा सारथी मयंग रेडियो श्रोता संघ ले हावे नवागढ़ कटाई ले हावे नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा असंगवारी हो देखा एहर हावे खट्टी महासमुंद सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदनी शर्मा ओंकार शर्मा कमलेश साहू डिगेश्वरी साहू और एहर हावे संगवारी धरसीमा ले है छेदूलाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा यादव अनुराधा अल्पना यादव दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले हावे छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाऊ यादव और हावे कुमारी रानू खुशी प्रवीण साहू सी एल यादव एक और चिट्ठी भेज के भेजी ने हमारे श्रोता संगवारी मन हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस दास राहुल वैष्णव रिचा गायत्री वैष्णव भीम दास मानिकपुरी और ग्राम पंचायत बठेना पाटन ले हावे बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौत सारा गाँव ले हावे सुजान वर्मा सोहद्रा वर्मा आयुषी कृत वर्मा अमलेश्वर लेहे डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथलेश ठाकुर तारिणी ठाकुर सूरज ज्योति रेयांश ठाकुर और श्रोता संगवारी मन चिट्ठी लिख के भेजी है इंदिरानगर रायगढ़ ले शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन बानो अब्दुल जमीर मोहम्मद अलीम आसिफ नईम राजा महामाया पारा ग्राम दरचूरा ले हावे फिरंता साहू दुलेरिन साहू कामेश्वरी कुमारी प्रीतम कुमार साहू देवरी भाटा पारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री दरचुआ ले हावे ददवा साहू भूरी साहू रेखा मोतीलाल साहू और गीत के बोल हावे कदवा गोरी नारी ए काया के माया तो आवाज संगवारी हो सुनिए मन के मन पसंद हमर लोक गीत ला

0: केयर यानी गरिमा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
1: प्योर एंड सेफ गरिमा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।
2: ता संगवारी हो देखा अभी हमन सुनत रहे हमर फरमाइशी हमर लोकगीत का देवा और चौपाल कार्यक्रम में फिर हमन भेंट पर गहन का देवा। तब भैया हो देखा आज की जोन हमर बात है तेन हर हावे फसल अवशेष प्रबंधन बर यंत्रीकरण अपनावा। त भैया हो फसल के जो अवशेष है ओकर प्रबंधन बर हमन ला यंत्रीकरण अपनाना है। त फसल के जो अवशेष प्रबंधन बर हमन आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग पराली या अवशेष ला जलाए के रोके खातिर और माटी के उर्वरता ला बढ़ाए के सबले प्रभावी वैज्ञानिक तरीका हावे। त संगी आवाज जानबो हमन कि कृषि यंत्र और ओकर लाभ ला। तो भैया हो हैप्पी सीडर, तो ए है ना संगवारी हो हैप्पी सीडर हर धान के अवशेष ला बिना हटाए सीधा गेहूं या फिर दूसर फसल के बुआई करे में मदद करते। ओकर बाद है संगवारी हो सुपर सीडर, त भैया हो ए है ना अवशेष मन ला काट के माटी में अच्छा ले बढ़िया तरह ले मिला देते कदेवा और संगे संग बुआई घलोक कर देते। फिर हवे मल्चर श्रेडर, तो ये हर ना खेत में बाँचे जो बड़खा अवशेष रथे ओकर जो ठूंट रथे तेला छोटे छोटे टुकड़ा करके ओहर बढ़िया ले मलच मतलब बिछावन के रूप में ओला बदल देते कदेवा। फिर है स्ट्रोबेलर, ये हर फसल के अवशेष ला बड़खा बड़खा मनला बनाते जोन ला पशु चारा या फिर उद्योग में ईंधन के रूप में घलो एला हमन बेच सकथन। और संगवारी हो रोटावेटर हर MB एहर माटी ला पहले अवशेष जमीन के भीतर सड़ा के जैविक

बनाए के हर काम करते। तो संगवारी हो, आप मन फसल अवशेष प्रबंधन बर यंत्रीकरण ल जरूर अपनावा करेवा आउ अपन के खेती किसानी मा बढ़िया लाभ पावा। संगे संग संगवारी हो, ये तो रहीस आज के बात का देवा। आउ आज के जो नसीहत है ते हर हावे भविष्य बर जल बचावा आउ सब्जी बर टपक सिंचाई अपनावा। तो संगवारी हो, देखा आप मन जाना था कि जल है तो जीवन है, मतलब कि पानी हर कत की दरकार पड़ते मनखे मन बर, जीव जंतु मन बर और हमार खेती किसानी के बूता काम बर भी। तो यार हमन के सबके जवाबदारी है कि हमन पानी ल बचा के चली। तो भैया हो, भविष्य बर हमला जल ल बचाना है तो खेती किसानी के बूता करथन कि सब्जी लगाथन तो हमला एमा टपक सिंचाई ल अपनाए बर पड़ही। तो संगवारी हो, सब्जी खेती में अगर हमन ड्रिप सिंचाई टपक सिंचाई ल अपनाथन तो एमा हमन न कम से कम 50-70% तक पानी ल हमन बचा सकथन और पौधा के जड़ तक सीधा बूंद बूंद पानी पहुँचे के बढ़िया यह उपाय है संगवारी हो का देवा। और बढ़िया बूंद बूंद करके यह पूरा हमार जड़ तक हमार उपज तक पहुंच जाते। तो संगी हो, जानबो कि टपक सिंचाई के का का लाभ मिलते हमार ला। तो सबले पहली तैमा पानी के बचत होते। पारंपरिक सिंचाई में पूरा खेत ला भरे के बदला में पानी ला सीधा जड़ में जाना चाहिए का देवा, जेकर ले वाष्पीकरण और पानी के बर्बादी ला रोके जा सकते भैया हो। और खरपतवार और रोग ले सुरक्षा, यानी कि पौधा के माझा के माटी सूखा रहले खरपतवार कम जाम थे का देवा और का कहते पानी नहीं पड़े ले फंगस या फफूंद जनित रोग नहीं होए हमार खेती किसानी के बूता काम में का जो हमन सब्जी लगाए हैं कह देवा है ना। और का कहते खाद के सही खपत, एकर जरिया पानी के संग ही घुलनशील खाद फर्टिगेशन सीधा जड़ तक पहुँचाया जा सकत है, जेकर ले खाद के कार्य करे के क्षमता हर बढ़ जाते और उत्पादन में घलो बढ़ोतरी होते। पौधा ला संतुलित नमी मिले ले ओकर विकास तेजी ले होते और सब्जी के गुणवत्ता और पैदावार में घलो बढ़ोतरी होते। संगवारी हो, टपक सिंचाई सबले ज्यादा उपयोगी कौन सब्जी बढ़ावे? तो भैया वो देखा यह तो का है कि ई प्रणाली है लगभग जम्मो जो हमन के मुख्य सब्जी हावे तेकर बर वरदान हावे, लेकिन सबले ज्यादा उपयोगी नार वाला जो सब्जी रहते हमन के, जैसे कि लौकी तरोई करेला खीरा, तो यह नगदी सब्जी कहले पताल मिर्चा भाटा शिमला मिर्ची गोभी वर्गी कहले फूलगोभी पत्ता गोभी ब्रोकली, एकर अलावा आलू प्याज लहसुन भिंडी ये सब मा सबले ज़्यादा फायदेमंद वरदान साबित होते टपक सिंचाई हर संगवारी हो। और संगे संग भैया हो देखा, भारत सरकार और विभिन्न जो राज्य के सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत टपक सिंचाई अपनाए बर किसान मन ला 50% ले लेके 90% तक के सब्सिडी वित्तीय सहायता प्रदान करे जाते। लेकिन संगवारी हो, सब्सिडी के राशि किसान के श्रेणी यानी कि वह लघु किसान है कि सीमांत है ना, ओकर श्रेणी और राज्य के नियम के ऊपर निर्भर करते। तो भैया हो, आप मन भी जरूर पानी ला बचावा और सब्जी या खेती किसानी बर टपक सिंचाई ला अपनावा। तो भैया हो देखा, ये तो रही आज के नसीहत का देवा। संगे संग आज के जो कृषक प्रश्न मंच के अंतर्गत जो प्रश्न है तेहू लघलो में आप मन ला पूछ देता हूँ भैया हो। तो कृषक प्रश्न मंच के अंतर्गत आज के हमारे जो प्रश्न है तेहर हावे, ड्रिप सिंचाई अपना के आप मन कतका प्रतिशत पानी ला बचा सकत है? संगवारी हो, प्रश्न ला एघू कहत हूँ, ड्रिप सिंचाई अपना के आप मन कतका प्रतिशत पानी ला बचा सकत है? तो संगवारी हो, एकर उत्तर लिख के भेजिया हमला आप मन के चिट्ठी पत्री के अगोरा रही। तो देखा भैया हो, नसीहत तो होगी इसका देवा। और भैया हो, अभी हमन सुनबो आज के किसान के अंतर

0: भेंटवार्ता अनिल कुमार साव ग्राम बिरनी पाली विकासखंड सारंगढ़ बिलाईगढ़ के किसान ले उद्यानिकी फसलों की लाभदायक खेती विषय में मोर गोट बात है संगवारी हो तो आवा सुनी आज के किसान ला।
1: तो संगवारी हो देखा अभी हम भेट पा रहे हैं बिरनी पाली ए प्रगतिशील कृषक ले जोन मन भाटा मिर्चा के खेती करीन है ड्रिप पद्धति ले। तो संगवारी हो सबले पहली आप मन ला मोर कति ले राम राम जय जोहार।
2: राम राम मैम।
1: तो संगवारी सबले पहली तो आप मन अपन के परिचय दी है।
2: मोर नाम अनिल कुमार साहू है, मैं बिरनी पाली के हाँ और विकास खंड वरम के लाए जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आते मोर गांव है।
1: संगवारी देखा तो आप मन खेती करे है मिर्चा भाटा के है ना आओ। तो सबसे पहले भैया आप मन ये बतावा कि जो मिर्चा भाटा के आप मन खेती करे है तेकर बीजा कहाँ ले लाने हैं?
2: अमन ओकर पौधा मंगवाए रायपुर फार्म ले।
1: अच्छा,
2: क्राप क्राप कटिंग वाला पौधा।
1: हाँ हाँ, कतकी एकड़ जगह में आप मन लगाए हैं?
2: वो 3 एकड़ भाटा और 1.5 एकड़ मिर्चा लगाए हैं हम।
1: अच्छा, तो एकर जैसे कि आप मन भाटा और मिर्चा लगाए हैं तो एकर भुइयां ला कैसे तैयार करता?
2: पहले तो जून महीना में जो पानी गिरते हो मैं ओला अच्छा से जुताई वोताई करके ओकर जो पौधा वोधा जो रहते ओकर कचरा सबला हटा के ओला मेड़ बनाता हूँ पहले।
1: हाँ।
2: बाद में पूरा मेड़ बनाए के बाद में ओला गोबर गोबर के खातू जितक ज्यादा हो सके वो मैं देता। फिर ओला पूरा बड़ा बड़ा वाला मेड़ बना के ओकर ऊपर में वो पन्नी ढकथन।
1: अच्छा।
2: पन्नी ढके के बाद में ओला 3 से 4 फुट फीट में ओकर पौधा वो पन्नी ला फोड़थन में लगाए बार।
1: अच्छा, तो जैसे कि भैया आप मान जो तो जैसे कि आप मान लगाए हैं मिर्चा और भाटा है ना, तो ये पौधा के मतलब जो लाने हैं बीजा पौधा लाए हैं तेकर का खासियत है भैया?
2: वो पौधा के खासियत है वो एक पौधा ज्यादा फल देते हो क्राफ्ट कटिंग वाला है कलम वाला है बीज में ओला काट के अलग से। हाँ। वो पौधा के तना अलग वाला है और ऊपर वाक अलग वाला है।
1: अच्छा,
2: वो में ज्यादा फल आते और।
1: हाँ। लगभग कतकी फल आ जाते भैया एमा?
2: वो हफ्ता में 6 से 7 किलो आते भाटा में मिर्चा में 2 से 3 किलो आते 2.5-3 किलो एक तो पौधा में।
1: अच्छा, तो जैसे कि भैया आप मन कतकी आ जाते कदे वह है ना, एक लागत कतकी लागते आप मन ला?
2: वो 3.5-4 एकड़ खेती करे नु वो में 1,30,000-35,000 हमार खर्चा हुई से।
1: अच्छा।
2: और ड्रिप वाला जो करे उन्होंने सब्सिडी मिली से हमारा।
1: अच्छा,
2: सरकार की तरफ से।
1: हाँ हाँ हाँ, जैसे कि आप मन के लागत 1-1.5 लाख लग गई से करे वहाँ ना, तो एक फायदा कद की होते भैया आप मन ला?
2: वो पूरा सीजन के फायदा हो में 14-15 लाख ले कम नहीं हो अच्छा मौसम आए ले अच्छा बिक्री रहे ले।
1: अच्छा अच्छा,
2: बिक्री के ऊपर डिपेंड है।
1: बहुत बढ़िया भैया कि आप मन 14-15 लाख के फायदा हो जाते है ना। तो जैसे भैया आप मन ड्रिप पद्धति ले पानी के व्यवस्था करके रखे है तो एक का कारण हवे?
2: वो में बिजली कम खपत होते पानी भी कम खपत होते।
1: अच्छा,
2: ड्रिप चालू करे ले।
1: हाँ,
2: वो में
1: हाँ।
2: खरपतवार जो घास फूस होते वो भी कम होते पन्नी ढके हैं तो ज्यादा खर्चा नहीं आते हमारे में।
1: हाँ हाँ, जैसे कि भैया आप मन जो लगा के रखे है पौधा है ना, पौधा मन में भी रोग व्याधि लगते तेकर बार आपन का उपाय करता?
2: हमारे जो कृषि सलाहकार मन है वो मन ला परामर्श लेके उचित दवाइयों में छिड़काव करता हम।
1: हाँ,
2: और खातू भी थोड़ा ज्यादा देता ना मन जो गोबर नहीं आते का गाय बैल के वो खातू 3-4 बार में देता लास्ट में पीछू जो नहीं दिसंबर महीना में वो मैं कच्चा वाला खातू गुलथन भी पानी दे ले।
1: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ,
2: गोबर खातू मैंने वो मैं ज्यादा वाला ग्रोथ करते वो हर।
1: हाँ, और रासायनिक खाद में का देता भैया?
2: रासायनिक खाद में पहले तो हमन DAP और यूरिया मिला के देतन पहली बार। सेकंड बार में वो मैं पोटाश देतन वो पौधा के ग्रोथ बार। फिर बाद में फिर थर्ड टाइम में वो DAP देता है सल्फर ऐसे कैल्शियम मिला के वह स्प्रे करता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, जैसे भैया आप मन के उपज हो जाते तो उकर व्यवस्था कैसे करता? बेचे पर जाता कि मंडी में जाके दे देता?
2: बेचे पर तो मंडी वाला मन घर में आके लेते हैं सीधा घर थोक।
1: अच्छा,
2: 15 किलो वाला पन्ने में पैकिंग कर देता ओला लेके जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: रायगढ़ मंडी जाते उड़ीसा के मंडी भी जाते इकराले।
1: अच्छा, बढ़िया बात है भैया कि घर आके ले जाते तो आप मन ला कोई परेशानी नहीं हुए है ना।
2: लेते पर कोई परेशानी नहीं होती।
1: हाँ, तो भैया आप मन हमारे रेडियो सुनैया संगवारी मन ला आप मन अपन कति ले का संदेश देना चाहिए?
2: तो रेडियो सुनैया साथी मन ला मैं कहना चाहता हूँ कि कम जगह में ज्यादा कमाई करना है तो फसल में जैसे मिर्ची भाटा साग भाजी का खेती कर ही तो ज्यादा कमाई कर पाए। मैं वो मन ला कहा कि उन साग

0: की कमाई करे, मिर्ची भाटा धान के बजाय ज्यादा कमाई देते थे, ये कम जगह में ज्यादा फायदा मिले थे हमन ला ये कर ले।
1: भैया देखा तो आप मन कत की सुगर जानकारी दिया, एकर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, राम राम मैम जी।
2: तो संगवारी हो देखा, अभी हमन आज के किसान के अंतर्गत भेंटवार्ता सुनत रहन अनिल कुमार साव, ग्राम बिरनी पाली, विकासखंड सारंगढ़ बिलाईगढ़ के किसान रहिन। और उद्यान की फसल ले लाभदायक खेती विषय में मोर गुड बात चलत रही संगवारी हो। और भैया हो देखा, आज के टिप जोन हावे तेन हर हावे कदेवा धान में सतत निगरानी अपनावा और फसल ल बचावा। तो संगवारी हो, हमन ला धान के खेती में सतत निगरानी ला अपनाए बर है और फसल हमन के फसल ला बचाए बर है। तो धान के फसल ला कीट रोग और जल भराव ले बचाए खातिर बर खेती के लगातार निगरानी करे बर है और समय में उचित उपाय अपनाना है, बहुते जरूरी है। और संगवारी हो, सबले पहली हमन जानबो कि जल प्रबंधन के बारे में। तब भैया हो, हमन ला धान के खेती करे हन तो रोपाई के बाद, रोपाई के शुरुआती बखत बेला में हमन ला 2 ले 3 दिन तक खेत में हमन के 2 ले 3 इंच तक पानी हमला राखे बर है, कदम मतलब भरे रहे में पानी 2 ले 3 इंच तक। और जब फसल में कल्ला फूटे बर धरते फूलते तेहर ते समय में हमन ला 30 ले 40 दिन के माझा में खेत में 1 ले 2 इंच पानी लगातार हमला बना के रखे बर है कि हमार खेत में 30 ले 40 दिन तक लगातार पानी है 2 ले 3 इंच तक रहे। एकर अलावा संगवारी हो, अतिरिक्त पानी के निकासी यानी कि ज़्यादा वर्षा या फिर जल भराव के स्थिति में हमन ला तुरते पानी बाहर निकले के हमला व्यवस्था करना है कि हमार खेत में पानी झर रहे ओहर बाहर निकल जाए, इसने हमला व्यवस्था बना के चलना है कदेवा। ताकि संगवारी हो का हो ही कि जो हमार जड़ है तेहर सड़े झन कदेवा और फसल के बर्बादी घलोक झन होए, तो ये चीज़ के हमला सुरता रखना है, निगरानी करना है कदेवा। और कीट और रोग नियंत्रण पर हमला का करना है संगवारी हो, तना छेदक कीट, तो ई कीट ला हम एकर ई कीट के रोकथाम पर हमला कृषि विशेषज्ञ मन के सलाह लेना उचित रही कदेवा। कीटनाशक के उपयोग करा और पत्ता जो रथे पत्ता लपेटक कीट, एकर पर हमला का करे पर है, एकर नियंत्रण पर हमला पर्यावरण अनुकूल और जैविक उपाय जैसे कि फोरमेंट ट्रेप, लाइट ट्रेप या ट्राइकोडर्मा के उपयोग हमला करे बर पड़ी। संगवारी हो, मौसम के बचाव या आपदा प्रबंधन पर हमला फसल के फसल गिरे मा अगर तेज हवा चला थे कदेवा या पानी ले पाके फसल हर गिर जाते कदे, कभू कभू मौसम के तो उतार चढ़ाव ला आप मन जाना था संगवारी हो, कभू बनेच पानी गिर जाते तो कभू कभू बनेच आंधी तूफान आ जाते, तो एकर ले जो हमार फसल लगे रहते तेहर गिर घलोक जाते। तो एकर ले का होते संगवारी हो, खेत ले पानी निकाले के बाली सुरक्षित सूखा जगह में रखा है ना, पानी ले निकाल के जोकर हमार जो बाली होगी से कदेव जो हम धान के खेती करे हैं तो वाला सुरक्षित सूखा जगह में रख सका था आप मन। और संगे संग संगवारी हो, सरकारी मुआवजा कहिया तो ज़्यादा भारी बारिश या आपदा ले जो फसल हमन के नुकसान हो रहे एकर बार बीमा होए रहे ले का होते हमन ला 72 घंटा के भीतरी में एमा एक सूचना देले या बीमा अगर हमन करे हन तो स्थानीय कृषि विभाग लेखापाल ला लिखित जानकारी हमन देबो, तो बीमा अगर हमन रही तो जो हमन नुकसान रही ओहर हमन ला मिल सकत है कदेवा। तो संगवारी हो, आप मन अपन जो खेती किसानी के बूता काम करा था और कृषि ले जुड़े है तो आप मन जरूर अपन के खेती किसानी के बीमा करा के रखा ताकि ऐसने बखत बेला आए तो हमन ला सरकारी मुआवजा मिल जाए। तो सरकारी मुआवजा मिल जाए ले एक प्रकार से हमार किसान संगवारी मन ला राहत मिल जाते।

0: યો તો આપમાં એલા સુરતા રાખ્યા સંગે સંગ સંગવારી હો દેખા ગુડ બાત આવ કરબો લેકિન ઓકર પહેલી સુની એ સંદેશ લા
1: દસ લાખ કી લોટરી
2: મુજે વાવ
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: तो भैया हो देखा अभी हमन सुने संदेश गोड बात के औच विषय है भैया हो तो आज खास दिन हावे संगवारी हो खास दिन कहले हमर सामाजिक कार्यकर्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोप बंधु दास जयंती तब भैया हो देखा आज हावे 9 अक्टूबर और आज के दिन ला प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोप बंधु के जयंती के रूप में मनाया जाते गोप बंधु दास के जन्म 9 अक्टूबर 1877 में पूरी उड़ीसा के सुवांडू गांव में होए रहिस के देवा ओमन ला उत्कल मड़ी जोन हर उड़ीसा के रत्न हावे औ दरिद्र सखा के नाम ले भी जाने जाते भैया हो गोप बंधु उमन उड़ीसा मा राष्ट्रीयता औ शिक्षा औ समाज सेवा बर अपन के जीवन ला पूरा समर्पित कर दे रही गोप बंधु जी सत्यवादी वन विद्यालय के स्थापना करीन जोन हर खुला आसमान के तरीमा नीचे मा शिक्षा देहे के एक ठन अनूठा केंद्र रहिस का देवा यानी कि ओ समय लोग लेका मल्ला हमन खुला आसमान में ले जाके बैठा के जो मल्ला शिक्षा दे जाते रहिस और एक ठी अनूठा केंद्र रहिस का देवा बछर 1919 मा ओमन दैनिक समाचार पत्र समाज के स्थापना करीन ओमन के पूरा नाम पंडित गोप बंधु दास हावे उमन के माता के नाम स्वर्णमय देवी और दैतारी दास पिता के नाम रहीस उमन के निधन 17 जून 1928 में 50 बच्चर के उम्र में होए रहीस उड़ीसा में राष्ट्रीयता और स्वाधीनता संग्राम के बाद चले ले मनखे मन में गोप बंधु के नाम सबले पहली ले थे तसंगवारी हो आज हमार जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जोन हमर देश भर काम करीन और उमन के काम ला हम आज सुरता करथन उमन के जन्मदिन आज का देवा सुरता करथन संगे संग हमन उमला सत सत नमन करथन श्रद्धा सुमन अर्पित करथन तो संगवारी हो ए तो रहीस हमर सामाजिक कार्यकर्ता गोप बंधु दास जी के जयंती का देवा संगे संग संगवारी हो आज हावे विश्व डाक दिवस तो संगवारी हो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर के मनाए जाते और 9 अक्टूबर 1874 के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन बर बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देश मन एक संधि में हस्ताक्षर करीन एकर बर विश्व डाक दिवस मनाए ई दिन ला चुने गए रहिस का देवा भैया हो आधुनिक भारतीय डाक सेवा ले डाक सेवा के संस्थापक के जनक लॉर्ड डलहौजी ला माने जाते जोन मन 1854 मा देश मा व्यवस्थित डाक व्यवस्था के शुरुआत करे रहिन का देवा और ऐतिहासिक रूप में डाक प्रणाली के न्यू शेर शाह सूरी हर 1540 में राखे रहीन जेन मन सड़क ए आजम और सराय बना के घोड़ा डाक व्यवस्था के शुरुआत करे रहीन भैया हो भारत में पहली आधिकारिक डाक घर 31 मार्च के कलकत्ता में स्थापित करे गए रहीस और भारत में पहली बार बछर 1766 में डाक व्यवस्था के शुरुआत करे गए रहीस भारतीय डाक विभाग 9 ले 14 अक्टूबर के बीच में विश्व डाक सप्ताह

मनाए जाते। अउ भारत सन 1852 म पहली बार चिट्ठी म डाक टिकट लगाए के शुरुआत होए रहिस कदे बा। महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 के जारी करे गए रहिस। और भारत में अब तक सबले बड़खा डाक टिकट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 20 अगस्त सन 1991 में जारी कर गए रहिस। संगवारी हो देखा, आज हवे विश्व डाक दिवस। तो भैया हो, हम आपन मन घलो जाना था कि डाक के कतकी महत्व हवे। संगवारी हो, भले आधुनिकीकरण आगे से कई सुविधा हो गई से, मोबाइल आगे से कह देवा, आजकल तो चिट्ठी पत्री तो नहीं भेजन हमन, लेकिन मोबाइल में काम चल जाते। लेकिन फिर भी संगवारी हो, डाक के जो महत्व है आज भी उत्कित छे। ओकर महत्व हर बराबर बने हुए है, भले ओकर रूप हर बदल गए है, लेकिन डाक के व्यवस्था अभी आज भी है, आज भी ओकर मांग है, आज भी ओकर महत्व है। भले कतको जिनिस आगे से कह देवा। संगवारी हो, आप मन जाने हो, जानत हो यह कि डाक में हमन देखिया कि कई हमन चिट्ठी पत्री तो लिखत रहें, लेकिन अभी के बखत बेला में त्योहार बाहर आते तो हमला कछु जिनिस भेजवाना रहते, तो हमन डाक के माध्यम ले ही भेजवाथन। तो एक तरह ले देखिया संगवारी हो, तो अभी भी ओकर महत्व हर हमर जीवन में बने हुए है कह देवा। संगे संग संगवारी हो, औच गोट बात के विषय है कह देवा, है ना। आज तो डाक दिवस मनाथन, औच हमार गोट बात करे के विषय है अटल पेंशन योजना। तो भैया हो, अटल पेंशन योजना हर भारत सरकार के एक ठन सामाजिक सुरक्षा योजना हवे, जोन हर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक मन ला 18 बछर के उम्र के बाद 1,000 रुपया ले 5,000 रुपया तक के गारंटीड मासिक पेंशन देते। एकर पात्रता कौन कौन रही संगवारी हो, 18 ले 40 बछर के उम्र के कोई भी भारतीय नागरिक जेकर बैंक में खाता या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता हवे, और ये योजना पर पात्र हवे। और 1 अक्टूबर 2022 के नवा नियम के तहत आयकर दाता ई योजना के पात्र नहीं हवे। 60 बछर के उम्र पूरा होए के बाद सदस्य ला ओकर पसंद के आधार में हर महीना 1,000 या 2 या 3 4,000 या 5,000 तक निश्चित पेंशन मिलते। एमा अंशदान के अवधि, योगदान के राशि, सदस्य के उम्र और चुने गए पेंशन स्लैब में निर्भर करते। जेकर भुगतान मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप में ऑटो डेबिट के माध्यम ले करे जाते। परिवार ला लाभ मिलते संगवारी हो, जैसे कि अभिदाता के मृत्यु के बाद ओकर जीवन साथी ला समान पेंशन मिले के प्रावधान हवे। और दोनों के मृत्यु हो जाए ले 60 बछर के उम्र तक जमा हुए कुल पेंशन फंड नामनी ला वापस कर दिए जाते। तो ये तो होगी संगवारी हो, अटल पेंशन योजना का देवा, है ना। संगे संग भैया हो, आओ छे गुड़ बात करे बार चर्चा करे के विषय। जुग जुग जियो अभियान। तब भैया हो देखा, जुग जुग जियो अभियान भारत सरकार के द्वारा अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाए और मनखे ला अंगदान के संकल्प लेहे बर प्रेरित करे बर शुरू करे गए रहिस। यह एक ठन देशव्यापी अभियान हवे और एकर शुरुआत 3 अगस्त 2025 16वां भारतीय अंगदान दिवस के अवसर में शुरू करे गए रहिस कदवा। भैया हो देखा, एक बछर तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हवे। एकर मुख्य संदेश है कि अंगदान के जीवन ओकर द्वारा दान करे गए अंग
अउ उत्तक के माध्यम ले सदैव जीवित रथे। एकर शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय द्वारा घोषणा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हरकरे रही एकर उद्देश्य रही कि ग्रामीण और कस्बाई इलाका सहित हर समुदाय तक अंगदान के संदेश पहुंचाना और एला एक जन आंदोलन बनाना ताकि ज्यादा ले ज्यादा मनखे मृत्यु के बाद अंगदान करे के प्रतिज्ञा ले सके। संग संग संगवारी हो गुड़ बात के औ विषय है UPI डिजिटल भुगतान ले बदल रहा भारत। तो संगवारी हो यूनिफाइड पेमेंट्स यानी कि UPI भारत के लेन देन और वित्तीय परिदृश्य ले पूरा तरह ले बदल दिस आवे। भैया हो पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू करे गए रही एहर स्वदेशी प्लेटफॉर्म हावे और आज देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था के रीढ़ बन चुके हैं। तो आवा संगी हमन जानबो कि UPI ले हमन का प्रमुख बदलाव होई सावे। तो संगवारी देख आसान और त्वरित लेन देन यानी कि UPI ले छोटे दुकानदार ले के बड़खा लेन देन तक पैसा के ट्रांसफर सेकंड में हो जाते हैं। बखत बेला नहीं लागे तुरते हो जाते कह देवा। नकदी में निर्भरता में कमी होगी से एकर ले कहा होगी से मनखे मन में नकदी जो कैश राखन पैसा का देवा तेला ओकर निर्भरता हर कम होगी से और पारदर्शिता हर बाढ़गी से। वित्तीय समावेश देश के दूरदराज के ग्रामीण इलाका में ले लेके शहरी इलाका तक करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था ले सीधा जुड़ चुकी से। अब भारत की यह रियल टाइम पेमेंट सिस्टम अब पूरा देश में पहुंच गई से कह देगा। तो संगवारी हो देखा घड़ी के काटा ही सारा करते मुरझाए के बखत बेला होते। तो जम्मो संगी संगवारी मल्ला मोर कतिले राम राम जय जोहार।

किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे। FM 104.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। बाजी फिल्म के इस गाने को सुनिए। उदित नारायण, साधना सरगम की युगल आवाजों में संगीत दिया है अनु मलिक ने। गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में

0: ना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: दिव्य शक्ति फिल्म के गाने को आप सुन रहे थे। कुमार सानोवाल का याग्निक की मधुर आवाजों में नदीम शवन ने संगीत दिया था, शब्द रचना समीर के थे। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 101.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ पलों में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है, जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइन

0: है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि परम कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परम H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। परम आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. Vance की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties.

0: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
3: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
4: सेमीकंडक्टर जर्नी,
5: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
4: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
2: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
6: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विश्व में जो नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव

0: नीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। संगठन की नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में हरियाली और रास्ता फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण के बोल और तर्ज, चित्रगुप्त की फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी।

श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है भाभी फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, बोल है राजेंद्र कृष्ण के और चित्रगुप्त ने धुन बनाई है इस गाने की।

अगला गाना हमने लिया है नीला आकाश फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, राजा मेहदी अली खां ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है।

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक।

0: होती।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गाना। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं ओपी नैयर।
4: हुए हैं तुम पे आशिक हम।

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का। वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद ले पाते हैं।

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में।

और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुई। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

रविंद्र जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए भी।

रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में करहाते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला।

रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार गीत।

0: आज से पहले।
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और रामायण।

कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्यमालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविन्द्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविन्द्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविन्द्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के लिए।

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को।

0: तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: FM 14.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में सुनिए इस गाने को, जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा।

0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
2: रियल विंटर केयर यानी गर्मा ग्लिसरीन, जिसके बूंद बूंद में है सॉफ्ट शाइनी स्किन का विश्वास।
3: प्योर एंड सेफ गरिमा ग्लिसरीन सभी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर्स पर उपलब्ध।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका 2 स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उस

0: रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है, यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में ये तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है, जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है, और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है, उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे, तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है, जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: श्रोताओं, संदेश से पहले आप सुन रहे थे उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में गीत को एल नारायण ने, जिसे लिखा था लक्ष्मी वसंत ने, संगीत दिया था। कार्यक्रम में अब सुनिए बाली ब्रह्म भट्ट की आवाज में इस गाने को। बाली ब्रह्म भट्ट आसान अहमद ने संगीत दिया है, सुरेंद्र मिहार के शब्द हैं।

बाली ब्रह्म भट्ट को आप सुन रहे थे इस गाने में। इसके साथ ही विविध संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। अनुराधा पौडवाल कुमार सानू को सुनिए इतिहास फिल्म के इस गाने में, जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है दिलीप सेन समीर सेन ने।

गीत के बोल समीर के थे। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे गाने को संगीत ने प्रिया है आनंद मिलिंद ने, आवाजें अलका याग्निक कुमार सानू की फिल्म छुपा रुस्तम से।

तेरी चाहत में द डॉन फिल्म के नगमे को आप सुन रहे थे कुमार सानू साधना सरगम की युगल आवाजों में। संगीतकार थे दिलीप सेन, समीर सेन, शब्द रचना अनवर सागर के थे। कार्यक्रम में आप सुनिए तमन्ना फिल्म के इस गाने को, कुमार सानू की आवाज़ में, संगीत अनु मलिक का है, इंदिवर ने गीत लिखा है।

अमित कुमार, श्रेया घोषाल को आप सुन रहे थे। हिम्मत वाला फिल्म के गाने में साजिद वाजिद ने संगीत दिया था, समीर ने गीत लिखा था। इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त तो होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 107.7 MHz पर। 11 बजने वाले हैं कुछ पल में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले करेंगे।

0: محمد زبیر. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है. तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं. पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही. असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है. उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी. आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे. दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है. संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है.
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग. इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है. जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था.
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था. पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है. सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है. इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है. इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है. न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए. न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं. भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं. उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया. हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा. ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी. प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी. डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा. देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी. इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा. इसके

0: Bulletin.
1: FM बैंड पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज का हमारा प्रसारण अब संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:51 पर हम फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।